ओम शांति। बाबा ने हमें संपूर्ण पवित्र बनने की राह दिखाई है और संपूर्ण पवित्रता की मंजिल पर चढ़ते हुए हमें कर्मेंद्रियों को शीतल करना परम आवश्यक है, ताकि विकारों की अग्नि जो जन्म जन्म की अंतर मन में समाई हुई है वो समाप्त हो जाए। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को शीतल किया जा सकता है। हमारी कर्मेंद्रियां संगम युग पर इतनी शीतल हो जाती हैं कि सतयुग में अंग अंग सुगंधित रहते हैं। तो हम सभी अपने योग बल पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दें। हमें विशेष ध्यान देना है कि दिनचर्या में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए हमारा योग का सुंदर अभ्यास चलता रहे। केवल बैठकर ही हम योग अभ्यास करें ऐसी ही हमें आदत ना हो, चलते फिरते भी हम कुछ विशेष चीज़ों का अभ्यास करें। जैसे मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, ये अभ्यास बढ़ाते रहेंगे तो इसका असर हमारी शक्तियों को बढ़ाता चलेगा। केवल ये अभ्यास हमें चालू रखना है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस देह रूपी प्रकृति का मालिक हूँ, तो कर्मेंद्रियों का भी मैं मालिक हूँ। ऐसे ही अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस चलती रहे कर्मों में, दो स्वमान हमने ये बताए। ऐसे ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ, इस धरा के लिए श्रृंगार हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, ये स्वमान भी हमारे बहुत चलते रहें। इससे क्या फायदा होगा कि आत्मा स्वयं को डिटैच अनुभव करती जाएगी, और जितना जितना आत्मा देह से डिटैच होती है उतना ही कर्म इंद्रियां शीतल होती रहती हैं। जन्म जन्म का देहभान आत्माओं को इस देह के प्रति आसक्त बना चुका है, उससे कर्म इंद्रियों के रसों के कारण मनुष्य पवित्र बनता नहीं, बनना नहीं चाहता। और अगर वो बनता भी है तो कर्म इंद्रियों का रस, विशेष रूप से काम वासना का रस, उसे अपनी ओर बार बार आकर्षित करता है। देह के आकर्षण के ऐसा मनुष्य सदा ही अधीन हो जाता है और वो पवित्रता के सच्चे सुख से वंचित रहने लगता है। तो हमें योग बल बढ़ाते चलना है। योग बल बहुत बड़ी चीज है। स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया और संपूर्ण ज्ञान दिया कि तुम सर्वशक्तिवान से कनेक्ट कैसे रहो, उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहें। एक बहुत सुंदर और चीज जो अपने को बार बार याद दिलानी है, हम भी आपको बार बार याद दिलाएंगे कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, वो मेरे साथ है। ये स्मृति भी हमारे आंतरिक बल को बहुत ज़्यादा बढ़ाती चलेगी। और ये सब भी योग युक्त स्थिति में ही गिना जाएगा। केवल बैठकर योग लगाना, केवल एकाग्रता करना, इतना ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप होने से हमारी आंतरिक पवित्रता बहुत बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ स्वयं को चेंज करने के लिए हमें महसूसता की शक्ति की आवश्यकता होती है। हमें किस कमजोरी को चेंज करना है उसकी महसूसता। कई लोग अपने कमजोरियों के इतने वश होते हैं कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहता कि मेरी कमजोरी दूसरों के कष्टों का कारण बन रही है या मेरी ये कमी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को जानता है, महसूस करता है, उन्हें स्वीकार करता है, वो अपने को जल्दी ही परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि उसे बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलने लगती है। दूसरी चीज, हमें अपनी महानताओं को भी जान लेना चाहिए, रियलाइज कर लेना चाहिए। दोनों रियलाइजेशन की आवश्यकता है, कमियों की रियलाइजेशन और महानताओं की रियलाइजेशन। महानताओं की स्मृति में यदि हम रहेंगे तो महानताओं का बल कमियों को निर्मूल कर देगा।
ये बहुत सुख संगति है। इसलिए अपनी महानता को जानने के लिए स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते रहें। तो आज के ये सब स्वमान जो हमने वर्णन किए उसके साथ साथ हम अभ्यास करेंगे सारा दिन, बाबा मेरा साथी है, बस ये नशा हो जाए, स्वयं भगवान मेरा साथी है, मुझसे कंबाइंड है और इस कंबाइंड स्वरूप का आनंद लेंगे। ओम शांति।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत। रेडियो मधुबन पर एक लड़की सुबह सुबह बहती जलधारा की तरह उत्साह से भरी हुई थी। जब वह अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में, अपने भविष्य की योजनाओं व लक्ष्यों के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही थी, इस बारे में वह बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपने समय व क्षमता का सदुपयोग वह किस तरह करना चाहती है। लेकिन अगली सुबह वह बस उन नई नई फिल्मों की बातें कर रही थी जो उसने अभी तक नहीं देखी है। वह उन पेस्ट्रियों के नाम गिना रही थी जो उसने बहुत दिनों से नहीं खाई थी, और यह कि वह अपनी विंडो शॉपिंग को कितना मिस कर रही है। बात यह नहीं है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि यह है कि 24 घंटे में यह बदलाव कैसे आ गया। जिन लोगों के साथ वह उस दिन थी और जिन लोगों के साथ वह अगले दिन थी, उसी से यह सारा अंतर आया था। लोगों की संगत में रहना दोधारी तलवार जैसा होता है। उसमें यह शक्ति भी होती है कि वह आपका विकास कर दे, और यह शक्ति भी होती है कि आपका विनाश कर दे। हम जिन लोगों की संगत से घिरे रहते हैं, उसका इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, दूसरों को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं और अपने वर्तमान व भविष्य को कैसे बनाते हैं। यह सच है कि ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपने परिवेश के बावजूद ऊपर उठे हैं, लेकिन हम यहाँ अपवादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के मन मस्तिष्क का स्वरूप उनके परिवेश के कारण ही तो बनता है। आपके मन मस्तिष्क का मौजूदा स्वरूप केवल बीते कल द्वारा ही नहीं रचा गया है, बल्कि वह उन लोगों द्वारा भी तरह तरह से रचा गया है जिनकी संगत में आप कल तक रहते आए हैं, और आपके आने वाले कल का स्वरूप उन लोगों द्वारा रचा जाएगा जिनकी संगत को आप अपना आज सौंपते हैं।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।

नियमित रूप से गिरजाघर जाने वाले एक सदस्य ने वहां जाना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो पादरी ने उसके घर जाने का सोचा। उस शाम बहुत सर्दी थी। पादरी को वह आदमी दहकती अंगीठी के सामने बैठा मिला। वह घर में अकेला था। उस व्यक्ति ने पादरी का स्वागत किया, अंगीठी के सामने रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उसके कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। पादरी कुर्सी पर आराम से बैठ तो गया पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद पादरी ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया लेकिन बोला कुछ नहीं। वह व्यक्ति यह सब बस देखता रहा। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा और ठंडा सा हो गया। पादरी के आने के समय हुए अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। चलने से पहले पादरी ने वह ठंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकने लगा। पादरी चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अंगारे वाले उपदेश के लिए। मैं अगले रविवार से दोबारा गिरजाघर आया करूंगा। जो बुद्धिमान लोगों की संगत में रहता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों की संगत में रहने वाला हानि ही झेलेगा। कहा जाता है कि गोद लिया गया बालक एक समय के बाद लगभग उस परिवार के सदस्यों के समान ही बन जाता है जिस परिवार ने उसे गोद लिया है। सच है, हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हम अपनी गति को जितना बढ़ा सकते हैं यदि वह उतनी नहीं बढ़ रही है, और जितने शील, शोभा, शिष्टता, गौरव और गरिमा के साथ हम रह सकते हैं हम उतना नहीं रह रहे हैं, तो हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। चाहे वह कोई संगठन हो जिसमें हम काम करते हैं, चाहे उन लोगों का साथ हो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, या वह परिवार हो जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं। यदि वह हमारा सृजन नहीं कर रहा है तो हमें वहां से किसी ऐसे स्थान पर चले जाना होगा जहां हमारा विकास हो सके। यह एक कठिन कदम है लेकिन जरूरी है। कबाड़ के ढेर में किसी बीज को बर्बाद कर देने की क्या

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

असाधारण लोग वे साधारण लोग होते हैं जो हर साधारण कार्य को असाधारण जोश के साथ करते हैं। महान जीवन का अर्थ है किसी प्रयोजन के साथ स्वयं को एकाकार कर देना, एक ऐसा प्रयोजन जो आपके जीवन से बड़ा हो और जिस पर आप अपनी अंतिम सांस तक अपनी हर सांस को न्योछावर करते रहना चाहते हो। आप इतिहास तब रचते हैं जब आपके पास कोई ऐसा प्रयोजन हो जो आपको हर सुबह थोड़ा जल्दी उठने को और हर रात थोड़ा देर तक जागे रहने को प्रेरित करता हो और इसके बीच के हर पल को जोश की प्रबलता से भरता हो। अपने हर कार्य में अतिरिक्त योगदान दें ताकि आपका जीवन असाधारण हो जाए। आपकी सारी उपलब्धियों में महानतम है अपने जीवन को उपलब्धियों से परिपूर्ण करना और फिर यह कह सकने योग्य होना, मैंने जो भी हासिल किया है उसने मेरे अस्तित्व को मलिन व दूषित नहीं किया है, मैं वैसा ही हूँ जैसा हमेशा से था। जीवन का सबसे बड़ा आनंद है इंसानों के बीच रहते हुए इंसानियत से थोड़ा ऊंचा उठकर जीना, लेकिन फिर भी इंसानों के बीच इंसानों की तरह चलना। आप अपने हृदय को किसी भी बाहरी चीज से अछूता रहने दें। साइकिल चलाना आ जाने के बाद जो एक बड़ा रोमांच होता है वह है हैंडल से हाथ छोड़कर उसे चलाना। इस तरह से साइकिल चलाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह देखना कि ऐसा करते हुए लोग हमें देख रहे हैं। किशोरावस्था में किसी बस या ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना साहस का एक बढ़िया प्रदर्शन समझा जाता है। दरअसल लोगों में यह ललक उस काम को करने की नहीं होती बल्कि दूसरों की नजर में आने की होती है। जीवन में हर कोई उस अवस्था से गुजरता ही है जिसमें दूसरों की नजर में आने और अपनी एक पहचान बनाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यह वह समय होता है जब कोई भी अच्छाई केवल इसीलिए अच्छाई लगती है क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, और तो और कोई बुराई भी तब इसीलिए अच्छाई लगने लगती है कि वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही होती है। विडंबना तो तब होती है जब कोई अच्छाई भी बस इसीलिए अच्छाई नहीं रह जाती क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहती है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरों की नजर में आना, यह अहम की खुराक है, लेकिन आखिरकार हमें उस अवस्था से ऊपर

0: रुक, रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए? ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है, धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने स्वभाव के अनुसार अहम को पोषण चाहिए और इसीलिए वह सदा इसका भिखारी बना रहता है। अहम के साथ समस्या यह है कि जब तक आपके अहम का पोषण होता है तो आप श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन जब आपके अहम का पोषण नहीं किया जाता तो आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में यह आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है। जब अहम आता है तो बाकी सब चला जाता है, और जब अहम चला जाता है तो सब आ जाता है। अपने अहम को संतुष्ट करने के चक्कर में आप कितने मूल्यवान संबंध खो चुके हैं। आपको जब अपने अहम को दूर करके संबंध को बचाना था, तब आपने संबंध को दूर जाने दिया और अहम को बचा लिया। अहम कभी इस योग्य नहीं होता कि उसके लिए इतनी भारी क्षति सही जाए। जब आप अपने अहम की सेवा करने में लगे होते हैं, तब कितने ही सुनहरे अवसर गंवा देते हैं। तब हर पल भारी होता है, हर स्थिति दिमाग की नसें हिला देने वाली होती है, हर बातचीत तनावपूर्ण होती है। अहम से भरा हृदय हमेशा आग पर चल रहा होता है, जल रहा होता है। अहम और सहजता का मिलन कभी नहीं हो पाता। अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा ले जा रहे एक कौवे ने पाया कि कई चिड़ियां उसके पीछे पड़ गई हैं। उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। तब सारी चिड़ियां कौवे को छोड़कर उस टुकड़े के पीछे झपट पड़ी। तब आकाश में अकेले उड़ते कौवे ने कहा, उस मांस के टुकड़े को छोड़कर मैंने आकाश की आजादी पा ली। अपने अहम को छोड़ देने से आपको भरपूर आजादी मिल जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन के आंगन में बच्चों का आना, उन्हें खुशियों से भरपूर करना दादियों की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात भी यहां की बगिया की खुशबू अगर बनी हुई है तो उसमें यज्ञ रत्न दादियों का बड़ा योगदान रहा है। उनसे मनुष्य आत्माओं को आज भी प्यार की वैसी ही भासना मिलती है जैसे कभी बाबा मम्मा से मिला करती थी। दादी रत्न मोहनी जी खुद आगे बढ़ते हुए सभी को बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही हैं। व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने पर हर किसी को ये भासना मिलती है कि जैसे कि वो दादी से पहले भी मिले हों। मैंने मधुबन ने यहां तक देखा है कि हर एक बच्चा जो मधुबन आता है उनसे मिलना, उनके हर व्यवस्था का ध्यान रखना और आत्मा के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ वरदान देना दादी जी की मुख्य विशेषता रही है। रमणीकता के साथ ज्ञान योग में कैसे आगे बढ़ें, दादी जी हमेशा से ही इसका ध्यान रखती रही हैं। किसी आत्मा के अवगुणों को ना देखना और गुण ग्राहक आत्मा बनकर रहने की शिक्षा वे देती रही हैं। छोटों को सम्मान देना दादी जी की मुख्य विशेषता रही है। शक्ति वंदन की आज की श्रृंखला में हम आदरणीय दादी रत्न मोहनी जी के जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण अनुभवों को दीदी सुप्रभा से सुनेंगे।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी सुप्रभा बेन। मेरा लौकिक जन्म सन 1972 में उड़ीसा में एक धार्मिक परिवार में हुआ और सन 1996 में मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई जब मैं एमए की पढ़ाई पढ़ रही थी। और उसके पश्चात ये जो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसके बाद में हमारे सभी जो भी केंद्र है उन केंद्र के तरफ से हम कन्याओं का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम था माउंट आबू में। और उस ट्रेनिंग में हमें एक ऐसे आध्यात्मिक लीडर मिली, उनसे परिचय हुआ और मेरे इस समर्पित जीवन का मुख्य प्रेरणा स्रोत रही आदरणीय डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी। किस प्रकार कदम कदम पर उन्होंने हमें साथ दिया, हमारे उमंग उत्साह बढ़ाया, एक दोस्त के रूप में हमारे हर समस्याओं का समाधान हमारे सामने सहज रूप में रखा, हर समस्या को सहज रूप में कैसे पार कर सकते हैं एक सच्चे दोस्त बन करके हमें साथ देती रही। जब हम ट्रेनिंग में आए थे हमें इतना अच्छा यहाँ के भाषा भी नहीं आती थी, परंतु हमारी आदरणीय दादी जी हमें हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि हाँ ये बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। हमारे उस समय के दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका थे, उनके सामने ले जाती थी और यही बताती थी कि ये बहुत अच्छा भाषण करती है और बहुत अच्छा इस जीवन में आगे बढ़ सकती है। उनके जो बोल थे वो बोल ही हमें आगे बढ़ाता गया और हमारे हिम्मत बढ़ाता गया, देता रहा और उमंग उत्साह बढ़ता गया। और बार बार हम उनके संग में आने के अंदर से उत्साहित होते थे, अपने आप मोटिवेट हो जाते थे उनके हर बोल के प्रति, उनके जीवन को देखकर। इतना एक्टिव हमारे दादी जी थे। दादी जी बड़े उमंग उत्साह वाले थे, सिर्फ वो खुद नहीं थे लेकिन हमारे जीवन में भी वो उमंग उत्साह भर देते थे। इतनी बड़ी आयु होने के बावजूद भी हम सभी उस समय यूथ थे, लेकिन हमें भी वो पीछे रख देते थे। एक बार की बात है, झूले से मुझे बहुत डर लगता था। मैं कभी झूले में बैठती नहीं थी, लेकिन दादी जी ने झूले में बैठ करके हमें अपने बाहों में लिया और झूले में जबरदस्त बिठाया। बोले, तुम डरती क्यों हो, हम है ना साथ में। जब दादी जी के मुख से मैंने ये शब्द सुना, मुझे ऐसा लगा स्वयं भगवान दादी जी को निमित्त बनाकर हमें अपने बाहों में लेकर झूला रहे हैं और हमें वो जो डर अंदर में था वो डर निकाल रहे हैं। सचमुच ऐसा ही हुआ। उसके बाद में झूला में बैठना शुरू किया। दादी जी के साथ में रह करके हमें उनका संग का रंग बहुत गहरा पड़ा। साथ साथ में जब हम समर्पित जीवन शुरू किए, केंद्र पे गए, तो केंद्र पे भी दादी जी के सामने तो बहुत सारे बहने होती है, दीदियां होते हैं, दादियां होते हैं, परंतु दादी जी का एक स्पेशल अलग सा अट्रैक्शन हमारे प्रति होता था और हमारा भी अंदर से होता था। स्पेशल केयर हमने प्राप्त किया। सेंटर में रह करके हम दादी जी का पत्र जब मिलता था, पढ़ते थे, उसको ऐसा लगता था जैसे हम माउंट आबू में ही दादी जी के करीब है। दादी जी का स्पेशल फोन भी जाता था त्योहारों में। अभी तक भी, पिछले 5 साल के पहले तक भी हमारे पास में दीपावली जैसे त्योहारों में फोन करते थे कि सुप्रभा कैसी हो, ठीक हो ना, आप पत्र नहीं लिखते हो, आप फोन नहीं करते हो। तो इस सभी से इतना सिद्ध होता है कि देखो, इतने सारे हमारे बहने हैं, इतने सारे दीदियां हैं, लेकिन हर एक के प्रति उनका एक स्पेशल अनकंडीशनल लव जो है, एक केयरिंग नेचर जो है, वो बहुत ही प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि हर एक कोई से अनकंडीशनल लव दे और सभी की बहुत अच्छा केयरिंग करे। और हमारे केयरिंग वास्तव में परमात्मा की केयरिंग सामने वालों को अनुभव हो। इस प्रकार जब हम पढ़ाई, जब हमारे पीजी डिप्लोमा का कोर्स शुरू हुआ हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो दादी जी के पास हम गए थे। दादी जी कभी भी इस प्रकार पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करते थे। वे ही चाहते हैं कि सभी बहनें हमारे एजुकेटेड बने और आगे बढ़े। दुनिया के हर जो भी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाओं को प्राप्त करे, कहीं किसी भी दृष्टि से वो पीछे ना रह जाए, खुद भी आगे बढ़ते हुए साथ में हम सभी बहनों को भी आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है हमें दादी जी से। दादी जी की तो महिमा हम कितना भी कहें कम ही होगा। हमने तो बहुत ही ऐसे नजदीक से पालना ली। कई बार हम रात्रि को गुड नाइट करने जाते थे दादी जी के पास में पांडव भवन में, तो दादी जी भोजन करते हुए मिलती थी और जब दरवाजे के पास देख करके हम संकोचवश पीछे हट जाते थे, तो दादी जी आवाज देके बुलाती थी, आओ सुप्रभा, आओ हमारे साथ में, आओ बैठो।

0: तो साथ में बिठाते थे, कभी तो हम आइसक्रीम खाते थे दादी जी के साथ बैठकर, कभी आमरस खाते थे। तो ये सभी जो पालना है, ये जैसे जैसे परिवार के एक बुजुर्ग होते हैं और बच्चों को अपनापन का एहसास दिलाते हैं, तो दादी जी से ऐसे पालना हमें मिली। तो ये सभी जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही हम खुशनसीब हैं जो ऐसे महान विभूति के अंग संग पालना लेना। तो ये भगवान ने शायद बड़ी फुर्सत से हमारी किस्मत की पन्नों में ये सारे लाइन लिखी हैं। तो बहुत बहुत आभारी है हम दादी जी के। ऐसे ही हमारे जो भाग्य मिला है, हम चाहते हैं ऐसे ही भाग्य हमें हर कल्प में मिलते रहे, हर पल हम ये महसूस करते रहे और इस आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते रहे। जब मैं पहली बार 1997 में पर्सनल दादी जी से मिली, तो दादी जी हमें ऐसे देखते थे जैसे कि बहुत समय से परिचित है। जबकि मैं पहली बार पर्सनल मिली थी, ऐसे तो संगठन में हम मिलते ही रहते थे दादी जी के साथ में, और बहुत करीब मिल करके जब दादी जी के साथ में हम आपस में जो भी अपने जीवन का जो अनुभव है लेन देन किए, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जैसे मैं कहीं दूर से नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ और माउंट आबू आई, और इतना करीब लगता था जैसे कि मैं घर में बैठी हूँ। और दादी जी ने पहले पहले मुझे इतने विश्वास के साथ में मुझे गुजरात भेजा, क्योंकि उड़ीसा और गुजरात भारत के दो कोने में आता है, पूर्व और पश्चिम में आता है, और उतना दूर सेवा में जो भेजा, फिर भी मुझे दादी जी के संग का अनुभव होता था। और दादी जी के संग का अनुभव अर्थात हमें परमात्मा के संग का अनुभव होता था, क्योंकि साकार में कोई तो चाहिए होता है जिनके पास हम हर समस्या को बता सके, जीवन के हर बातों को हम शेयर कर सके। तो दादी जी के साथ में मुझे बहुत ही अच्छा ये मौका मिला। और हर पल जब भी हम माउंट आबू आते थे उस समय, तो दादी जी पर्सनल जब तक हम दिन में 2 बार नहीं मिले, दादी जी का यही कहना था कि सवेरे गुड मॉर्निंग भी करो और रात को गुड नाइट भी करो। तो इससे क्या होता है, दादी जी उसके बेनिफिट बताते हैं कि सवेरे जब ऐसे संतों से हमारे मुलाकात होती है, दिन की शुरुआत होती है, एक तो ईश्वर के साथ में हम दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, साथ में फिर हम ऐसे महान विभूतियों के साथ में जब दिन की शुरुआत करते हैं तो उनसे हमें कुछ ब्लेसिंग मिलती है और वो सारे दिन हमारे साथ रहता है। तो मैं दादी जी के पास में सवेरे गुड मॉर्निंग करने आती थी, 4:45 बजे जब पूरा हो जाता था हमारे मेडिटेशन सेशन, और उसके बाद दिन में भी जो भी मौका मिलता था हम दादी जी से मिलते थे, और रात्रि को भी गुड नाइट करना कभी नहीं भूलते थे। बाय द वे, कभी हमें लेट हो भी जाता था, दादी जी हमारे इंतजार करते थे कि सुप्रभा आई है मधुबन में, जरूर वो गुड नाइट करने आएगी। और जब भी आना, आते ही हम केंद्रों पे सेवा पे रहते हैं, जब भी हम यहाँ आते थे दादी जी का यही कहना था कि सबसे पहले हाजिरी लगाओ हमारे पास में। तो इन्हीं बातों से ये सिद्ध होता है कि कितना अपना हमें मानते हैं वो, कितना उनका अधिकार हमारे पे होता है। और अधिकार होना माना सोचो कि बहुत ही अपना मानना। तो जब जाते थे यहाँ से माउंट आबू से हम अपने सेवा स्थान पर, तो जाते समय भी दादी जी का यही कहना था छुट्टी लेकर जाओ। तो ये छुट्टी लेकर जाना माना ब्लेसिंग लेकर जाना। तो कदम कदम पर दादी जी का ऐसा साथ, ऐसा हाथ हमें बहुत ही हिम्मत देता है, हमें बहुत ही शक्ति देती है, हमारी उम्र उत्साह बढ़ता जाता है। कई बार हम ऐसे व्यस्तता के बीच में दादी जी को देखते हैं, परंतु हम जैसे आते हैं उन्हें व्यस्तता के बीच में कभी दादी जी को ये कहते हुए नहीं सुना, अभी हम बिजी है, आप उन्हें मना कर दो, हम नहीं मिल सकते, नहीं, यही कहते थे आओ थोड़े समय, आओ थोड़े समय आओ। तो पास में बिठा कर हाथ मिलाते थे, ये हाथ मिलाना सोचो कि कितना हमें अपना वो समझते होंगे जिसके कारण से हाथ मिलाना, और साथ में हमें कुछ ना कुछ अवश्य देना, ब्लेसिंग। दादी जी के अंदर में कूट कूट कर ये संस्कार भरी हुई है कि हरेक को हर पल कुछ ना कुछ देते रहना, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। कई बार दादी जी के पास हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ लिटरेचर भी पास में रखे होते हैं, ब्लेसिंग कार्ड, प्रसाद, ये तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट भी स्थूल रूप में होता है। तो ये देते हुए दादी जी यही कहते हैं कि ये अपना घर है और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से लेते जाओ। तो लेते जाओगे तो तुम अनेक आत्माओं को इन सारे ब्लेसिंग से भरपूर कर सकोगे। दादी जी को आगे बढ़ाने की औरों को इतने अच्छे संस्कार थे, तो उन्हीं के ये संस्कार, उनके ये पालना जो है, आज हम छोटे से कन्या से लेकर के आज ये लंबे सफर पूरा कर रहे हैं। करीब 27 साल हो रहे हैं इस अलौकिक जीवन में, तो हमें बहुत ही हिम्मत देती है, प्रेरणाएं मिलती है दादी जी से। दादी जी हमेशा एवर यूथ के रूप में हमें दिखाई दिए, कभी भी अभी भी हम देखते हैं उनके चेहरे पे हमेशा हर्षित मुखता का चेहरा, खुशी का चेहरा। दादी जी जिसको भी देखते थे यही कहते थे कि चेहरा खुशनुमा बनाओ। जब भी हम दादी जी से एक संगठित रूप में मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले दादी जी हमें एक पाठ जरूर पढ़ाते थे कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले परमात्मा स्मृति जरूरी है। चाहे बहुत बिजी होंगे तो भी कहेंगे एक मिनट तो कम से कम परमात्मा स्मृति जरूरी है, और उस मीटिंग के बाद भी एक मिनट वो हमें परमात्मा स्मृति में बिठाते थे। और साथ में ये जो परमात्मा स्मृति हमें ये बताते थे कि एक मिनट को एक मिनट नहीं समझो, एक मिनट अगर फुल अटेंशन के साथ ईश्वर की याद करोगे तो देखो ये एक मिनट भी बहुत लंबा हो जाता है। प्रैक्टिकली कि जब हम एक मिनट ईश्वर की याद में बैठते हैं, एक एक सेकंड को चेक करते हैं, विथ अटेंशन बैठते हैं, तो वो एक मिनट भी काफी लंबा महसूस होता है। तो दादी जी कर्मों से दूसरों को सिखाते थे, कभी भी सिर्फ सुनाते नहीं थे। तो जब भी हम उनके सामने जाते थे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हुए आते थे। तो ये है हमारे आदरणीय दादी जी का, हम सभी के साथ का ये अलौकिक जीवन।
1: दादी के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता आपको बहुत प्रेरणा देती है या बहुत अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि ये चीज मुझे जरूर धारण करनी है और आपने उसको अपने अंदर लेके भी आया है?
0: दादी जी कभी भी किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसको फोकस नहीं करते थे। दादी जी यही कहते थे कि उसको भूल जाओ, उसको क्षमा कर दो, और उसकी जो विशेषताएं उसके सामने बार बार रखते थे कि तुम फलाने हो, तुम्हारे अंदर में ये विशेषताएं हैं, और अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसको माफी ले ले, और किसी से अगर गलती हो जाती है उसको माफ कर दो। क्योंकि जब हम बिंदु लगाते हैं, कोई भी बात को बिंदु लगाते हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मुझे भी यही होता था, क्योंकि हमारे पास भी छोटे रहते हैं तो हमारे से भी कुछ गलती होती है तो हम दादी जी को पत्र लिख कर देते थे। दादी जी यही कहते थे कि बाबा को पत्र लिखो, बाबा के साथ में सच्चाई सफाई रहो, जितना सच्चाई सफाई ईश्वर के साथ में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। और हमें ये सारे बातों को सुन करके हिम्मत बढ़ जाता है कि ऐसे नहीं कि हमारे से कुछ गलती हो गई शायद हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, तो ये हमें हिम्मत देती है कि जो भी कुछ गलती हो बता दो सच्चे दिल से, और जीवन में सच्चाई सफाई धारण करो, और हमेशा खुश रहना है। क्योंकि दादी जी को हमें हमेशा खुश रहते हुए देखा है, किसी के अवगुण को हमें नहीं देखना है, क्योंकि अवगुण तो हरेक के अंदर में कुछ ना कुछ रहती है और हरेक छोड़ना भी चाहता है। अगर हम हरेक के अवगुण को देखेंगे तो हमारे जीवन तो डस्टबिन बन जाएगा। और जो छिपी हुई विशेषताएं हैं, क्योंकि ईश्वर की संतान होने के कारण हरेक के अंदर में वो विशेषताएं जो छिपी हुई उसके ऊपर जो फोकस करेंगे तो हमारे जीवन गुलदस्तों जैसा हो जाएगा। तो दादी जी यही कहती थी, किसी को भी देखना है, अगर देखने की संस्कार है तो गुण को देखना है, अवगुण को नहीं। तो जब गुण देखेंगे तो खुद हम गुणवान बन जाएंगे। तो ऐसे थी हमारे दादी जी की विशेषताएं जो हमें बहुत प्रेरणा देती है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि हरेक की छिपी हुई जो गुण है, विशेषताएं है, तो उनको फोकस करके हम उनकी विशेषताओं को और आगे बल दे करके आगे बढ़ाए उनको, और उन विशेषताओं को भी हम अपने जीवन में धारण करें।
2: दादियों की पालना किसी माँ से कम नहीं रही है। बच्चों को प्यार की पालना देना और यज्ञ में उनके त्याग तपस्या को सफल करने के लिए दादी जी प्रयासरत रहती हैं। मधुबन ने देखा है कि वे किस तरह आत्माओं को बाबा से जोड़ने और उनके उत्थान का ध्यान रखती हैं। बाबा ने मुरली में जो भी श्रीमत दी है उस श्रीमत को सिर आंखों पर कैसे रखना है, मुरली को प्राणों से भी ज्यादा कैसे प्यार करना है, ये रत्न मोहिनी दादी जी ने बखूबी समझाया एवं सिखाया है। उनके खुद के जीवन का अभिन्न अंग है मुरली। दादी जी के हर कार्य में एक चुंबकीय आकर्षण रहा है। उन्होंने सेवाओं को सर्वोपरि रख व्यक्तिगत आराम को भी नहीं देखा। किसी भी आत्मा से किसी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी है। योग की अवस्था में मग्न रहते हुए हर आत्मा को भरपूर कर भेजना दादी जी का वास्तविक स्वभाव रहा है। आज मेरा हृदय इस बात पर गर्व करता है कि मैं भी महान आत्माओं के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बना, जहां हर आत्मा आकर आज तक यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा के होने की भासना ले सकती है।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। ये जो पूरी बातचीत हमारी चल रही है, इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो डिप्रेशन है, क्या वो कहीं इनहेरेंट है? क्यों हो जाता है हमें डिप्रेशन? क्यों हम या हमारे अपने कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ जिसके साथ हम कुछ शेयर कर सकें? इंटरनलाइज करके क्या हम इस डिप्रेशन से खुद ही बाहर आ सकते हैं? ये पूरी जर्नी हमने तय की है, इसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं, बहुत सी मिथ ब्रेक हुई हैं। तो एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। आपका हार्दिक स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी हार्दिक स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं।
2: ये जो 6 स्टेजेस है, सबसे पहली सबसे उत्तम स्टेज है, वह रेयर हो सकती है कि भी जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, देयर इज अ स्पार्क इन योर लाइफ। सेकेंड स्टेज है कि भी अभी भी आप सुखी है, अच्छे है, आपको जीवन में आनंद, अधिकतर समय जो है वो आपका सुख में ही बीत रहा है, नो यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। फिर थर्ड स्टेज अब जो यहाँ शुरुआत होती है कि भी कभी खुशी कभी गम, भाई थोड़ा समय खुशी है, ज़्यादा ही समय दुख है, और उसी को हमने जीवन को अपना एक हिस्सा बना लिया, कि भी यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फिर जो फोर्थ स्टेज है कि खुशी थोड़ी सी है 2-4 घंटे, और दुख बहुत ज़्यादा, 80% 75% बस तनाव में, दुख में, निराशा में बीतते हैं। फिर स्टेज है कि भी जब सचमुच डिप्रेशन है, व्यक्ति को लगता है कि भी यहाँ पर ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी, व्यक्ति डिप्रेस, और लास्ट है कि भी ही विल इवन कमिट सुसाइड,
1: तरीके ढूंढने लगते हैं।
2: इवन ही विल कमिट सुसाइड। फिफ्थ स्टेज में भी तरीके ढूंढ सकते हैं, वो
1: डिप्रेस में तो उन्हें इंप्लीमेंट
2: में तो इंप्लीमेंट कर लेगा, और दैट इज द वर्स्ट थिंग।
1: और थॉट को लेके एक जर्नी अगर हम देखें तो थॉट को लेके भी एक बात कही गई थी कि थॉट ही जो जनरेट हो रहे हैं वो हमें डिप्रेशन में लेकर जाते हैं, और थॉट ही हमें बाहर भी ला सकते हैं।
2: हाँ जी हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बताता हूँ कि लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, समस्या समझते हैं, ये हो गया इसके कारण मैं डिप्रेस, परंतु वह सत्य नहीं है। वास्तव में विचार ही फीलिंग्स निर्माण करते हैं। आमतौर पर मैं एक सिंपल इक्वेशन बताता हूँ कि दो चीज़ें, और दो चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी। पहला इक्वेशन है कि जो कुछ भी हम फील करते हैं, अच्छा या बुरा, उन सभी फीलिंग्स का जो फाउंडेशन है वह है हमारे विचार। जब तक आपको सुख के विचार नहीं है, सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक निराशा के विचार नहीं है, डिप्रेशन का अनुभव नहीं होगा। हो सकता है कि अनकॉन्शियस लेवल पर वो डिप्रेशन के विचार चल रहे, परंतु है जरूर। और सेकेंड इक्वेशन है कि थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूँ तो 1 घंटा भी हाथ को ऊपर रखूँ, भले दर्द होगा, मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, परंतु यह संभव है। ऐसे ही विचारों को भी मोड़ना आपके कंट्रोल में।
1: दो रियलिटीज हमारे सामने आती हैं कि थॉट क्रिएट्स माय फीलिंग एंड द अदर वन इज कि मैं अपने
2: थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल टू एन एक्सटेंट। अब ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे और एक तीसरा स्टेटमेंट बनाओ, तो तीसरा स्टेटमेंट बनेगा फीलिंग्स आर अंडर माय कंट्रोल, बिकॉज थॉट लीड्स टू फीलिंग एंड थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल। तो ये एक फाउंडेशन होना चाहिए कि भी जो भी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर थॉट।
1: तो वो जो इंटरनल जर्नी की बात ये आती है,
3: दिस कैन चेंज लाइफ। ये फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला हमने बार बार अलग अलग रीति से दोहराया, लेकिन ये फॉर्मूला जिस जो रियली इसको समझ ले, लाइफ इज चेंज्ड। पूरी तरह से, क्योंकि पूरी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी ना।
1: जब हमने थॉट जनरेशन की बात की थी तो कुछ चीजें हैं जो थॉट जनरेट गवर्न करती
3: है,
1: वो कहीं चेंज करना भी जरूरी है कि मैं थॉट जनरेट कैसे कर रही हूँ या कैसे कर रहा हूँ, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
3: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग एंड इट्स नेचुरल, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपकी बिलीफ सिस्टम आपके थॉट प्रोसेस पर बहुत पावरफुल।
1: और बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर पटेल ने भी कहा कि जो सिक्स्थ स्टेज है, जो कि हर पल खुशी है हमारे पास, हर पल सुख है, वो ही सत्य है। अगर हम ये माने तो फिर हम कभी खुशी कभी गम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, वी हैव टू रीच देयर। डॉक्टर पटेल, एंगर की बात करते हैं, वी टॉक व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डिप्रेशन, जब हमने डिप्रेशन की बात की थी, दुख की बात की थी, तब हमने कहा था कि खुद के ऊपर जब हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा जो है वो केंद्रित है खुद पे, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन यही गुस्सा हमने जब बाहर भी देखा तब भी डिप्रेशन का कारण निकला हमारे सामने, जो हमने ढूंढे थे कि कई बार कहीं ना तो वो डिप्रेशन बाहर भी गुस्सा था। तो गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट के सामने की तरह सामने आता है जब भी। और गुस्सा और असर्टिवनेस, ये दो एस्पेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़ी थिन लाइन है, कहीं मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एंगर एंड व्हाट इज असर्टिवनेस?
2: अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे बिहेवियर का स्पेक्ट्रम क्या है। अगर देखिए, हम जो भी अपना व्यवहार करते हैं औरों के साथ, तो उसके एक एंड में तो है सप्रेशन, कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, और दूसरा एंड है एंगर। आप देखेंगे दोनों हार्मफुल है। सप्रेशन से कैंसर हो सकता है, सप्रेशन से भी डिप्रेशन हो सकता है, और एंगर भी उतना ही हार्मफुल है।
1: अच्छा, जब हमने इंटरनलाइज कर दिया, सप्रेस कर दिया, तब
2: दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, कैंसर ऑल्सो। और एंगर से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर आज जो इतना बढ़ रहा है उसका कॉज गुस्सा है, ब्रेन

0: में जो हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों बुरे हैं। जैसे कहा भी गया है कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ,
1: मध्य मार्ग।
0: तो ये जो मध्यम मार्ग इस बिहेवियर में क्या है, वो मध्यम मार्ग है असर्टिव बिहेवियर। मतलब क्या कि आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स कि कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो जरूर बताइए, परंतु स्टेबिलिटी को मेंटेन करिए। क्रोध क्यों हार्मफुल है? क्योंकि जब आपको क्रोध आता है तब जो आपका लॉजिक है वो लॉजिक खत्म हो जाता है ना। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि भी गुस्से में बुद्धि के आगे पर्दा आ जाता है।
1: नाश हो जाता है
0: हाँ,
1: बुद्धि के।
0: बुद्धि का नाश होता है, आप ठीक से उस सिचुएशन को देख नहीं पाते और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। भले आपने माफी भी मांग ली, परंतु उस व्यक्ति को जीवन भर याद रहेगा कि इसने मेरे पर गुस्सा किया था। तो इसलिए जो मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है वह है एसर्टिव बिहेवियर, कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करके अपनी बात को एक्सप्रेस करो। भले उसमें ट्रेनिंग आवश्यक है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, परंतु ये जो मध्यम मार्ग है वह सबसे अच्छा है। आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स।
1: जी
0: जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत कुछ सीखना है। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ माई पेशेंट, कि वो डॉक्टर थे वास्तव में, और एक बार उनकी जो सेक्रेटरी थी वो 25,000 रुपये लेके भाग गई, कि उस दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, एकदम स्टेबल रहे। उनको तो ऐसा लगा कि भी मेरा लॉस कम हुआ, हो सकता था कि वो 2 लाख भी लेके भाग जाती, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था। और अब दूसरे ही दिन उनके घर पुश बटन टेलीफोन को रिपेयर करने की जरूरत थी, तो लाइनमैन को बुलाया। लाइनमैन ने कहा इसके 500 रुपये लगेंगे, तो वो बार्गेन करने लगा, अरे 500 रुपया तो बहुत होता है, नहीं तो 100 रुपये का भी काम नहीं है। तो बस ये बार्गेन कर रहे थे, उतने में उसके बूढ़े पिता अंदर से बेडरूम से बाहर आए और कहा दे देना, क्यों इसके साथ इतना झगड़ा करता है? तो एकदम गुस्से में आ जाएगा, तुम चुप बैठो, क्यों ऐसा मेरे में दखल कर रहे हो, तुमको अक्ल नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया। तो देखो अब ये जो सिचुएशन को अगर हम देखें तो एसर्टिव बिहेवियर क्या होती है? पहले तो इसमें यह समझना है कि भाई पिछले दिन गुस्सा नहीं आया था, बल लॉस बड़ा था।
1: क्योंकि सप्रेस भी किया होगा ना कहीं।
0: सप्रेस या तो ये बात थी कि भी लॉस वॉज लेस, 25 के बदले 2 लाख भी वो लेके भाग जाते, परंतु यहां पर उनको यह हुआ कि भी वो जो है ना 200-300 रुपये की बचत हो सकती है, थोड़ा बार्गेन किया जाए। और गुस्से का कारण यह था कि भी फादर मुझे इंटरफियर क्यों कर रहे, नो दैट जो ईगो को ठेस पहुंची उसके कारण गुस्सा आया। और अब यहां एसर्टिव बिहेवियर क्या होती? अगर तब वो अच्छे से ट्रेन होते तो वो यह कह सकते थे कि पिताजी आप प्लीज बैठो, ये इस मामले को मुझे डील करने दो। बोले थोड़ा स्ट्रांगली भी कह सकते हैं कि भी आपको इसका पता नहीं, आप प्लीज अपने कमरे में जाओ। दैट वॉज नॉट एन एंगर। लेकिन जो उल्टा सीधा बोल दिया वो पिता को कितनी उसकी फीलिंग हुई होगी,
1: हाँ।
0: और अपने पर भी हुई, जो गुस्से में
1: वो बाद
0: कहा
1: में गिल्ट,
0: तो हाँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुई, गिल्ट की भी इफेक्ट हुई।
1: वो जो आपने कहा कि लर्निंग है, यू नो वी हैव टू लर्न टू बी असर्टिव एंड नॉट गेट एंग्री, हाउ कैन वी डू दैट?
0: वो ना कुछ एग्जाम्पल्स से, थोड़े डिटेल में अगर हम जाए और कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले तो ये बात स्पष्ट हो सकती है। और एक उदाहरण देता हूं कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आए और उन्होंने अपने वैलेट से कुछ पैसे वहां पर रख दिए और स्नान करने चले गए। तो एक छोटा सा बच्चा था, करीब 2.5-3 साल का, खेलता खेलता वहां आया, 500 रुपये की नोट थी, उसे खेलता रहा खेलता रहा, उसने फाड़ दी। जब पिता ने यह देखा तो इतना गुस्से में आया कि उसकी पिटाई कर दी, कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल हुआ 3,500 रुपये। तो देखो गुस्से का क्या रिजल्ट है, एक तो
1: ओहो,
0: इसे
1: और वो 3,500 तो छोड़िए, वो बेचारे
0: जो
1: वो,
0: बच्चे
1: हाँ,
0: को
1: वो
0: आ,
1: गिल्ट में जो रहे होंगे
0: हाँ,
1: वो पूरा टाइम,
0: और जो बच्चे को इफेक्ट हुई, हेल्थ पर भी
1: बच्चे
0: उसकी
1: से
0: इफेक्ट हुई, जो ट्रॉमा हुआ वह ट्रॉमा भी बहुत बड़ा था। तो अब यहाँ एसर्टिव बिहेवियर क्या होती? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि परिस्थिति क्रोध पैदा नहीं करती है, हमारे विचार क्रोध पैदा करते हैं, जो आगे भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर भी वो परिस्थिति नहीं कर रही है, परंतु विचार कि भाई ये 500 रुपए का लॉस हुआ, पिछले एग्जाम्पल में एक भी फादर क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, तो अगर उनके विचारों में परिवर्तन लाए कि सबसे पहले तो मेरी गलती है कि जब छोटा बच्चा घर में है तो 500 रुपए के नोट ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, कल आपने जहर की बॉटल छोड़ दी होती थी वो पी लेगा ना, तो दिस इज योर मिस्टेक, नाउ मे बी यू हैव लॉस्ट 500 रुपीज, परंतु एक बहुत बड़ा सबक है।
1: लेकिन वो जो एंगर उन्होंने बच्चे पे निकाला या फादर पे निकाला, वो भी कहीं ना कहीं और से भी एक्यूमुलेट हुआ होगा एक्चुअली सिस्टर शिवानी। ये जो एक्यूमुलेशन है, हम अगेन सेपरेशन, सेपरेशन और एंगर के दो आपने कहा धुरियां हैं, दो यू नो बीच का मार्ग जो है असर्टिवनेस है, ये सेपरेशन ही जो हमने कहीं सप्रेस करके वो एंगर कहीं एक एक आई थिंक इट्स अ साइकिल
0: दैट इज आल्सो पॉसिबल।
2: आई डोंट नो बट थोड़ा सा फ़र्क शायद वट एवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, अगर यहाँ के एंड पे सप्रेशन है, यहाँ इस एंड पे एंगर है, तो असर्टिवनेस शायद बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सप्रेशन आई डोंट नो बिकॉज क्योंकि सप्रेशन अगर कर दिया इसका मतलब वो एंगर वाली फीलिंग तो अंदर जेनरेट हो ही गई ना, तो वो तो फिर असर्टिवनेस वुड बी प्रोबेबली जहाँ एंगर की कोई फीलिंग ही नहीं जेनरेट हो रही है, क्योंकि कहाँ अगर एंगर की फीलिंग, मतलब आपने वो एनर्जी तो अक्यूमुलेट कर ही ली है अंदर, अब वो है आपके अंदर, अब आप कितना भी पोलाइटली या कितना भी पॉलिश्ड वे में दूसरे को बोलने की कोशिश करें, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएं, लेकिन वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही रही है, और आप एक या दो बार असर्टिव होते हैं लेकिन जैसा ही सामने वाला नहीं मानता है तो वो एंगर अक्यूमुलेटेड है, तो वो स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ चला जाएगा कि वो एंगर बाहर निकल आएगा,
1: निकलेगा ही। एक्चुअली वही, अगर हम दोनों इंसिडेंसेस लें कि फादर ने जब कहा तो ये जो मेरी ईगो हर्ट हुई, वो ईगो हर्ट होने वाला एस्पेक्ट आना ही नहीं चाहिए, बट क्योंकि मैं एक डील कर रहा हूँ, फादर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, सो यू हैव टू मेक द फादर अंडरस्टैंड, फादर होल्ड ऑन, ये एक डीलिंग है, इट्स अ कमर्शियल डील, आई विल डील यू जस्ट, बट इट्स नॉट लाइक इफ ही फेल्ट हर्ट
2: फिर वो नहीं कर पाओगे आप,
1: फिर वो असर्टिवनेस आई थिंक समवेयर, आई थिंक इट शुड बी अगेन अवे एंगर के दोनों एस्पेक्ट्स, ये जो दोनों धुरियों के एस्पेक्ट से दूर होके, चाहे मध्य मार्ग ही कहें हम उसको, कि वो एक मध्य मार्ग है, या ओनली आई थिंक सोल्यूशन शुड बी ओनली वे इज असर्टिवनेस, क्योंकि काम तो हमें करवाने हैं फिर,
2: लेकिन असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इनर स्टेबिलिटी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव, तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, मतलब कोई भी सामने वाले को डिसिप्लिन करना है, तो ऐसे लुक नॉट लाइक दिस फिनिश्ड, यू नो, एंड असर्टिव जब हम होते हैं हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं, एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप होने वाला है।
0: शिवानी बेन जो कहते हैं उसमें एक दूसरा एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोच रहा था, वह है सजगता या तो अवेयरनेस, अगर वो सजगता आ जाए पहले ही कि भी गुस्सा आ रहा है या सप्रेशन हो रहा है, एंड देन यू प्रॉपरली से देन यू असर्ट, तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट कम होगी,
1: वही नेगेटिव एनर्जी का
0: यू डोंट फील एट ऑल,
2: बिकॉज़ राइज अबाउ इज बेस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने एंगर को असर्टिवनेस का नाम दे देते हैं एंड फिर अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि काम करने के लिए असर्टिव है, वो सारा क्रोध, यू नो, वो सारा कुछ क्रोध ही है,
1: और अगेन उसको जानने का कि क्या मैं एंग्री थी या मैं असर्टिव थी, अपने अंदर इंटरनलाइज करके एक बार फिर से ये बात करना कि क्या मैं सहज रही, आई फेल्ट बैड अबाउट इट बिकॉज़ द वे द मोमेंट नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई मतलब मुझे बुरा लगा, तो अगर मैं असर्टिव रहूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशन विदाउट हर्टिंग एनीवन,
2: राइट, एंड हर्टिंग योरसेल्फ,
1: यस, हां, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। यहां एक बार फिर डिटेल में जाने की कोशिश हम ये करते हैं डॉक्टर साहब, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि क्यों एंगर, एक तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव

0: नर्वस सिस्टम। लेकिन जब गुस्सा आता है तब जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेलेटर की तरह बहुत फास्ट काम करती है और उसे सारी सिस्टम पर इफेक्ट होता है। ये जो हम खुद एहसास करते हैं, आपने भी जैसे कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको दिमाग में फीलिंग होगी, सारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होने लगेगा, सो दैट इज बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम हैज इज वर्किंग, उसकी एक हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा है कि शरीर में कई हॉर्मोन्स भी है, नहीं, एक तो है कॉर्टिसोल की जो बहुत डेंजरस हार्मोन है, वो कॉर्टिसोल बड़ी मात्रा में रिलीज होता है जब गुस्सा आता है। दूसरा एक एड्रेनालिन, एड्रेनालिन भी उसकी सर्ज होती है और बहुत सारे भी, ये तो बेसिक हार्मोन्स है। कहते हैं हमारा ब्रेन है आज 800 से ज्यादा केमिकल्स रिलीज करता है, नहीं, वो सारे के सारे में डिस्टर्बेंस आते हैं और इसके कारण बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होती है।
1: डेफिनेटली।
0: और एक जो चीज समझनी चाहिए कि दिमाग में जो ब्लड वेसल्स है जिसको कैपिलरीज कहा गया है, बहुत ही पतली एकदम थिन ब्लड वेसल्स है, तो वो जो थिन ब्लड वेसल्स है उसमें जो फोर्स से ब्लड जाएगा तो फूट भी सकती
1: है। जो नर्वस ब्रेकडाउन की बात करते हैं, हेमरेज हो जाता है या
0: नर्वस ब्रेकडाउन डिफरेंट है, हेमरेज की जो बात ठीक है। हाँ,
1: इवन पैरालिसिस देखा है मैंने कि बहुत गुस्से में आते हैं तो एकदम से पैरालिसिस,
0: और अगर पैरालिसिस न भी हुआ तो भी एक सूक्ष्म में तो डैमेज हो रहा है,
1: नंबनेस हो सकता है,
0: आपको पता नहीं चलता है, नहीं, क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर,
1: सो एवरी टाइम वी गेट एंग्री व्हाट रियली हैपेंस।
0: हां, सपोज कि भी कितने कोई स्टडी नहीं हुई परंतु कुछ तो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं।
1: अच्छा, और ये न्यूरॉन्स
0: 2500 जितने भी है कुछ न्यूरॉन्स आपके डैमेज होते हैं, और न्यूरॉन्स ये कैसे, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो फिर से रिवाइव नहीं हो सकते, जैसे यहाँ पर कहीं घाव हो तो दोबारा ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो वो रीजनरेट नहीं हो सकते।
1: तो वही जैसे कहा जाता है कि गुस्से में जो हमने तीर निकाला है, एक तो ये कि अपना डैमेज तो किया ही, अगर हम देखें न्यूरॉन डैमेज किया जो कि कभी दोबारा नहीं जनरेट होगा, दोबारा नहीं बन पाएंगे, दूसरी तरफ हमने जिसको कहा है वो जो तीर निकला है वो भी कभी वापस तरकश में नहीं आता है।
2: लेकिन उसको अगर हम, वही इम्पोर्टेंट है, वो हम बहुत ज्यादा आजकल नहीं सोचते हैं कि दूसरे को हमने हर्ट किया, क्योंकि हम अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं उसने गलत किया था तो उसे डांटना ही था। सो फॉरगेट इट, अगर आप दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप अपना इतना सारा नुकसान कर रहे हो, इतने सारे केमिकल इम्बैलेंस, इतना सारा जो आपके, अपने लिए तो सोचो।
1: अच्छा, और ये जो आपने कहा कि जो केमिकल्स जनरेट हुए जो कि काफी हार्मफुल है, इनको स्टेबल होने में फिर वक्त लगता होगा,
0: बहुत टाइम लगेगा ना, इट कैन बी इवन डेज टुगेदर
1: एक्चुअली, यू नो,
0: नॉर्मल स्टेज में आए।
1: तो जब हम कहीं अपनी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम खुद से प्यार करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है ये इम्पोर्टेंट है, एक व्हीकल तो है ही, हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है उसका, तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है।
2: इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने आप से आज प्यार नहीं करते, क्योंकि हम सारा दिन बहुत ज्यादा नुकसान अपना करते हैं, तो औरों को क्या प्यार देंगे, खुद से ही प्यार करना नहीं सीखा अभी। जहाँ खुद से प्यार करना सीखेंगे तो इन सारी चीजों पर कितना अटेंशन रखेंगे, दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं, अपने को बीमार कर रहे हैं गुस्सा करके, you know, this is so fruitless, absolutely.
1: Anger is important. बिना गुस्से के काम नहीं होता है, anger is an outlet. ये इतनी सारी मिथ में हम कितना भी समझा लें नहीं निकलते हैं लोग, मतलब हम नहीं निकल पाते
0: हैं। लोग चाहते हैं, ये भी नहीं कि नहीं चाहते, वास्तव में उनके पास प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। हमारे पास ब्रह्मा कुमारी में जो कहीं माउंट आबू में कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो हमारी जो बड़ी दादियां हैं वो हमेशा ये कहती है कि भी कोई ना कोई आप दान दे के जाओ, पैसे का दान नहीं, परंतु अपने में जो बुराइयां है वो बुराइयां यहाँ छोड़ के जाओ,
1: बहुत सुंदर, एंगर का दान करके।
0: तो मेजोरिटी एंगर कहते हैं।
1: बिल्कुल, आज हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आज के इस प्रोग्राम को देखते देखते, आज की इस कड़ी में एक दान आप भी कीजिए, और वो है एंगर का। एंगर को जरूर दान दे दीजिए, और मुझे तो लगता है कि आग में जला दीजिए, स्वाह कर दीजिए।
0: लोग चाहते हैं, ये जो सारे इससे देखा गया है कि वे लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ बात है कि उनके पास टेक्निक्स नहीं है।
1: बिल्कुल
0: सही, अगर टेक्निक मिल जाए तो लोग जरूर उसको लाइफ में भी अपनाएंगे।
1: बहुत सुंदर आपने बात की, और उसी को हम पूरे इस प्रोसेस में जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते शिवानी, असर्टिवनेस, एंड एंगर. एंगर इज ऑफ कोर्स वी हैव अंडरस्टूड इज रियली बैड, खराब है, बहुत खराब है. असर्टिवनेस कितनी हद तक होनी चाहिए, कितना असर्ट करना जरूरी है?

0: तो असर्ट करने करे बिना काम हो जाएगा. तो पहली बात, बार बार अपने आप को ये मार्जिन भी देना, वो फिर असर्टिवनेस एंगर की तरफ चली जाएगी. तो मोस्टली प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एटलीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है. यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क. लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते. यू आर चीटिंग योर सेल्फ. Don't cheat yourself. Say I'm angry. No, don't say I'm not angry. I'm just being assertive. ये cheating है अपने आप से, दूसरे से भी. तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल stable है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको authority से और बहुत disciplined and assertive doesn't have to be loud.
1: Softly.
0: You know, it doesn't have to be loud. हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो that is assertive. That is a trace of anger. आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर. तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है दैट एनर्जी

0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
1: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति 1 मिनट का समय दे।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ, एक साल सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज़ होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं, आम कार्यक्रम है नई किरण। और दोस्तों, एक दोहा है बहुत ही सुंदर, और जब ये हर बार मैं सुनती हूँ तो एहसास होता है कि जीवन में कुछ बातें धारण कर लेनी चाहिए। वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। शायद आपने ये किताबों में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा। संत कबीर जी का ये दोहा जीवन का एक आयाम है, जीवन का संयम है। कैसे भाई? एग्जाम्पल ही ऐसा दिया गया है कि माली हमेशा मेहनत करता है, फल को पानी देता है, धूप दिखाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फल कब मिलता है? फल तभी आता है, तभी उगता है जब उसकी ऋतु आती है। इसी प्रकार से मन को कहा जा रहा है कि तू धीरे धीरे चल, आराम से चल, क्योंकि माली भी पूरा मेहनत करता है साल भर, लेकिन फल निकलता है जब ऋतु आती है। तो हो सकता है कर्मों का फल निकलने का अभी समय ना आया हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपकी मेहनत बेअर्थ है, उसका कोई मायने नहीं या उससे कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं। बस ऋतु नहीं आई है फल आने की, वो आने ही वाली है, आएगी ज़रूर, क्योंकि आपने पेड़ को पानी दिया है, धूप दिखाई है, उसके साथ लगन से आपने मेहनत करी है, तो ऋतु में फल ज़रूर होगा। बस थोड़ा धैर्य रखना है, मेहनत पे नहीं, संयम में, मन में। मेहनत तो पूरी करनी है, उसमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्टेशन है, जो मन अधीर हो रहा है, जो टेंशन आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, उसको थोड़ा सा कहना है कि भाई रुक जाओ, तुम्हें आने की दरकार नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऋतु आएगी और फल होगा ज़रूर। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले गीत की ओर, लौट कर आएंगे, कार्यक्रम नई किरण जारी रहेगा। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आपको
1: हमारे
0: भी
1: दीदी जी को
0: नमस्कार।
1: आरिफ दीदी जी आए हैं, उनको बहुत बहुत दिनों के सभी नमस्कार करते हैं। आपका दिन बहुत अच्छे जा,
0: जी
1: और आज का मौसम बड़ा अच्छा है,
0: अच्छा
1: चारों तरफ मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है।
0: जी जी
1: और हम लोग चल रहे हैं, और अभी 15 दिन हो गए
0: जी,
1: तो
0: मतलब है
1: संडे भी तो ऐसी शुभकामनाएं।
0: आपकी आवाज थोड़ा कट रही है क्योंकि आप सफर कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, मदन भाई बहुत शुभ हो आपका दिन, बहुत अच्छा बीते और बहुत सुंदर हो। बिल्कुल मौसम की बात करी है तो ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। बारिश की कहीं बूंदें गिर रही हैं तो कहीं संभावनाएं बनी हुई हैं। जो हमारे श्रोता मित्र भी सुन रहे होंगे कि एक बार खिड़की से नज़र उठाकर ज़रूर देखिए कि कैसा लग रहा है आकाश, कौन से रंग का है आकाश। क्या कभी कभी हम जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ठीक से ये भी नहीं पता होता कि आसपास रंग कौन से हैं। अगर बाहर की ओर देखें खिड़की से थोड़ा सा झांके तो बताइएगा मुझे कि कौन कौन से रंग का है आकाश। क्या सिर्फ नीला है, या कुछ सतरंगी सा है, कुछ नारंगी सा है, या नीला भी है तो कौन सा है। और अगर आप कहीं अंदर हैं तो भाई आप ये भी सोच सकते हैं कि मौसम कैसा महसूस हो रहा है, क्या हल्की सर्द हवाएं हैं या तेज़ ठंडी लग रही है आपको, या बारिश कैसी महसूस हो रही है। फील कीजिएगा उस मौसम को जरूर। और हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ गए फोन लाइन पर। हेलो नमस्ते।
2: नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: ओम शांति। नमस्ते, कैसे हैं फिरोज भाई?
2: बस एकदम अच्छे, बहुत दिनों से आपका आवाज सुनने को हम आतुर थे।
0: जी जी जी, कभी कभी मुझे भी मौका मिलता है तो मैं आ जाती हूँ आप सभी से मिलने जरूर।
2: और जो आपने जो कर्म के ऊपर जो कर्म के ऊपर आपने बोला, बहुत ही अच्छा बोला और अच्छा लगा हमको, और हमारे श्रोतागण को भी अच्छा लगा होगा। और ये मौसम अभी 2 दिन से थोड़ा बारिश अच्छा चालू हुआ है।
0: अच्छा जी जी जी, यहाँ तो कल रात को भी अच्छी बारिश हुई है और अभी
2: यार इधर भी रात को थोड़ी थोड़ी झमझम थोड़ा बूंदा बूंदी हुई, लेकिन कल भी अच्छा बारिश हुआ और परसों भी अच्छा बारिश हुआ। तो मौसम में थोड़ा क्या, अभी थोड़ी ठंडक थोड़ी आ गई है,
0: थोड़ी ठंडक आ गई है।
2: जी
0: जी जी जी।
2: और दूसरा के गुजराती ने नहीं बोला के जन्मियो पण जाण्यो नहीं, मनखा तणो नहीं, मर्म तेर लोट ने कारण है, कोटे बोध्या कर्म सुलई आव्या सातमा सुलई सात जना बांधी मुट्ठी आव्या ने खुले हाथ जना। जी
0: तो एक बार इसको समझा भी दीजिए आपने जो कहा।
2: इसमें के जन्मियो पण जाण्यो नहीं, मनखा तणो नहीं, आपने माने अपने माँ ने अपने को जन्म दिया, लेकिन किसी ने इसका व्यवहार ऐसा अच्छा नहीं था बड़े होके, तो जन्मों पर जाने नहीं का कि आप जन्म लिया लेकिन दुनिया के अंदर क्या क्या करने के लिए आए, आप खाली खाने पीने के लिए आए, पढ़ाई लिखाई के लिए आए, लेकिन उसके अंदर कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। तो ऐसे बुरे कर्म करोगे तो कोई बोलेगा कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा कर्म करोगे तो ये आपकी आपकी जो ये समझ है वो भी अच्छी होगी और दुनिया वालों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई ये इंसान अच्छा आदमी है।
0: कितनी सुंदर बात कही आपने, किस लिए जन्म लिया, क्या बस यही जो आप कर रहे हैं कि यही जीवन का सार है, सोचने वाली बात है सच में फिरोज भाई। बहुत
2: दूसरा के आपने को मरने के बाद में भी ये कर्म की गठड़ी लेके अपने को जाना है, और वो ही कर्म से अपने को अच्छी जगह पंच तत्वों के अंदर अपने को मिला देगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कर्म एक्चुअली हमारे वापस आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि नहीं अभी तुरंत नहीं आया तो शायद नहीं आता, हम भूल जाते हैं और फिर करने लगते हैं गलत चीजें कई बार।
2: अभी क्या है कि कमाई कर लिया लेकिन महल है अपने, तो महल है कि पैसे हैं, ये वो सब साथ में नहीं आने वाला,
0: वो नहीं आने वाला।
2: अपनी रहनी करनी अच्छी होगी तो वही साथ में आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल फिरोज भाई, बहुत बहुत सुंदर बात आपने याद दिला दी है, बहुत ही धन्यवाद आपका फिरोज भाई। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर हो आपका दिन।
2: और ये निकलते निकलते एक थोड़ा सा इससे बोला कि गिरी जो समरम से फूलते पत्तियां नम नहीं होती, जुदाई लाख होती है लेकिन

0: मोहब्बत कम नहीं होती, हमारे रेडियो मधुबन से भी
1: वाह,
0: नहीं
1: वाह,
0: होती
1: वाह,
0: और
1: वाह,
0: आप जैसे आर्य स्त्रियों से भी नहीं होती जी,
1: क्या
0: जी,
1: बात क्या जी, बात फिरोज भाई
0: जी, जी, जी, जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, याद रखूंगी मैं ये
0: जी,
1: शुक्रिया,
0: ओम शांति,
1: ओम शांति। और इतनी मधुर वाणी, इतनी मधुर शब्द और कमाल की शायरी भी लेकर आए फिरोज भाई, और आप सभी भी जो भी रेडियो मधुबन के दोस्त हैं, ये रेडियो मधुबन का परिवार है, और अगर मान लीजिए थोड़ा दिन नहीं भी सुनते हैं या फिर नहीं जुड़ पाते हैं या फिर जो भी बीच में थोड़ा सा गैप भी आ जाता है, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है और वो एक दूसरे से हमेशा जुड़ा रहता है। ऐसा ही है रेडियो मधुबन का परिवार भी, साथ साथ हर त्यौहार भी मनाते हैं, बातें भी करते हैं, कुछ कुछ एक दूसरे से सीखते जानते भी जाते हैं और सफ़र आगे बढ़ता ही जाता है, कारवां बढ़ता ही जाता है। चलिए फिलहाल आपको लिए चलते हैं एक और बहुत सुंदर से गीत की ओर, लौट कर आएंगे और फिर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आप सुनेंगे आज के समाचार भी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
1: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारे लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, रहो मुस्कुराते रहो।

0: सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है, इसके कारण ये बुराइयों बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है, उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।
1: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
3: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण

0: योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निम्बुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य माने व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है नई किरण। और दोस्तों, मौसम की जानकारी का भी आइए एक बार अंदाज़ा लगा लेते हैं। वैसे तो सब देख रहे हैं कि किस प्रकार का मौसम हो रहा है, लेकिन आज कैसा रहने वाला है आइए पता करते हैं। आज शुक्रवार है, यानी तारीख है 14 अगस्त। और आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के साथ। आज अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान आने की भी चेतावनी है। बात करते हैं झीलों की नगरी उदयपुर की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी बारिश आने और एक तूफान की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं आबू रोड की। आबू रोड में आज अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है आज। बात करें माउंट आबू की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। हल्की बौछार या तूफान की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। पाली में आज अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। यहां पे भी हल्की बौछार की संभावनाएं हैं आज। मेहसाणा में आज अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। अल्पकालीन बौछारों की संभावनाएं बनी हुई हैं। बात करें अहमदाबाद की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। हल्की बौछार की संभावनाएं हैं। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान आने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अपने को सुरक्षित रखें, अपने को स्वस्थ रखें। बारिश की संभावनाएं ज़रूर हैं, कई क्षेत्रों में हमने देखा कि तूफान की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो मौसम के अनुसार ही बाहर निकलें घर से, ज़रूरी हो जब, और उसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल ज़रूर रखें। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात आती है तो हर मौसम में उसका ख्याल रखने का कुछ तरीका ज़रूर बदल जाता है। कुछ तो सेम होता है। अगर हम बात करें प्राणायाम की, अगर हम बात करें योगाभ्यास की, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर रोज़ करते हैं तो असर ज़्यादा दिखाती हैं। कभी कभी करने से उतना फल शायद नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, कुछ अनुभूति तो तब भी होती है, कुछ फ़ायदा तो तब भी होता है। लेकिन निरंतरता यानी लगातार किसी काम को करना ही असली जवाब, असली फल होता है। और इसी प्रकार दोस्तों, हम जानते हैं कल 15 अगस्त का दिन भी है, यानी कि वो दिन है जब भारत को आज़ादी मिली थी। वो दिन है जिस दिन सर उठाकर सभी ने, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिन्होंने देश को आज़ाद होने का सपना देखा था, उन्हें सर उठा के अपने तन मन धन से सब कुछ, ऐसा लगता था कि बस तिरंगे में रंग गया है, देश के रंग में रंग गया है। वो आज़ादी की हवा जब उन्होंने सांस ली, तो उन्हें अंतर पता था कि क्या होता है गुलामी में जीना और क्या होता है आज़ादी में जीना। आज भले हमें 75 वर्षों से अधिक हो चुके हैं आज़ाद हुए हुए, लेकिन क्या हमने अपनी आज़ादी को कुछ फॉर ग्रांटेड ले लिया है? क्या हम वो आज़ादी की कीमत आज भी जानते हैं या भूल चुके हैं? क्या उन क्रांतिकारियों की, क्या उन वीरों की गाथाएं आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं? या कहीं हम आगे निकल गए हैं और हम इन्हें थोड़ा सा भूल गए हैं? अगर ऐसा होता है तो खुद से प्रश्न कीजिएगा और इसके लिए क्या करना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, इसका उत्तर आप आज या कल भी दे सकते हैं। अभी के समय की बात करें, अभी यानी कि हम 2026 में हैं, देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है? देशभक्ति क्या होती है? अगर आप और हम, ये सुनने वाला कोई भी, जानने वाला कोई भी देशभक्त है, तो वो कैसा होगा? देशभक्त क्या होता है? सोचिएगा और मुझे इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। पर फिलहाल मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत सुंदर सा नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारे मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है नई किरण और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर एक श्रोता मित्र जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, नमस्ते दीदी जी, मदन बोल रहा
0: हूं। जी मदन लाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत अच्छी भावना से आपको नमस्कार कर रहा हूँ और रेडियो मधुबन को और नई किरण को और हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं। अब श्रावण का महीना चल रहा है, माता जी का त्योहार चल रहा है, सब बहने सुबह आरती करती हैं और अपने जो कैसेट लगा के गाना सुनती है माता जी का, और माहौल अच्छा बना हुआ है और वातावरण भी बहुत अच्छा था आज का, और वैसे अच्छा ही रहता है हम अच्छा समझे तो। और बस चारों तरफ कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं क्या हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, सभी तरफ मतलब संभाल रहे हैं इतना, उनको भी चैलेंज करते हैं। और अभी राष्ट्र 15 अगस्त आ रही है, उसका भी स्वागत कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और हम सब देश वाले भी कर रहे हैं। जैसे आपको फोन किया था और आगे देख रहा हूँ तो सब बच्चे लोग झंडा लेके आ रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता गाते हुए, और सब लाइन लगी हुई थी पूरी हाईवे पे और मुझे अच्छा लगा। और चाहता हूँ कि हर एक झंडा लहराना चाहिए और अच्छी भावना से, और अपने देश को, अपनी धरती माँ को बहुत दिल से, और जो शहीद हुए उनको भी याद करना है, और वो सड़क से बैठे हैं और हम यहाँ सोए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देना, उनके परिवार को शुभकामना देना है, और जो सर्विस सेवा कर रहे हैं चाहे वो प्रधानमंत्री जी है चाहे हम हैं, उन सभी को हम चैलेंज करते हैं। और बस बहुत सारे देशभक्ति गाना है, मेरा रंग दे बसंती जोला, आपके बरसे तुझे धरती की रानी बना देंगे, और हर कर्म अपना करेगी वतन तेरे, दिल दिया है जान दीजिएगी।

0: नमस्कार दीदी।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत सुंदर।
0: जन्मदिन है, उन सभी को नमस्कार है, ओम शांति। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: बहुत सुंदर गीत भी गाया आपने बदनलाल भाई, सच में बहुत बहुत भावना के साथ गाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, ओम शांति।
1: तो दोस्तों, सच में गीत में जब भावनाएं मिक्स होती हैं तभी वो दिल तक जाता है। अब ऐसे जो गीत बने हैं, ऐसे जो लिखे हुए हैं, जो गाए हुए हैं, वो शब्द नहीं हैं, वो सत्यता है, वो भावनाएं हैं, और वो सच में हमें महसूस कराते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कौन सा देश है हमारा, हमारे देश में विशेष क्या है, और सच में देशभक्त होने का अर्थ क्या है। जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या लगता है आपको देशभक्त कौन होता है, आज के समय 2026 की बात करें, जब भारत आज़ाद है, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति भी है, भारत कई मामलों में एग्जाम्पल्स भी सेट कर चुका है, बहुत से भारतीय हैं जो आगे बढ़कर बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो आज हमने कई चीज़ें हासिल की हैं, कई चीज़ें हासिल कर रहे हैं, और कई चीज़ें बाकी भी हैं, लेकिन इस जीवन में, इस समय में देशभक्ति का अर्थ क्या है। और एक और दोस्त जुड़ गए फोन लाइन पर। हेलो, नमस्ते।
2: हाँ जी नमस्ते दीदी, अभिषेकन जी कैसे हो?
1: मैं अच्छी हूँ सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
2: बस अच्छे, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी जी जी,
2: बहुत दिन हो गए।
1: हाँ जी, जैसे मुझे मौका मिलता है, लेकिन मैं आज जरूर जाती हूँ।
2: एक साल के बाद आपसे बात हो रही है।
1: इतना तो समय नहीं हुआ होगा, लेकिन जरूर बहुत समय तो हुआ
2: है। चलो, फिर भी आज हमसे बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नजदीक से ही बात कर रहे हैं, चाहे कितने दिन में।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है।
2: तो चलो, आप आएंगे, बहुत अच्छा लगा दीदी हमको। तो
1: जी, मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों से जब भी बात करने का मौका मिलता है, बहुत खुशी अनुभव होती है।
2: चलो, बहुत अच्छी बात है दीदी, और हमारे ज़रा एक श्रोता मित्र को भी आज के दिन की शुभकामनाएं। हमारे लाल जी भी अच्छी बातें करके गए, और 15 अगस्त है को।
1: बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस,
2: देशभक्ति का तो गाना होना ही चाहिए। तो मेरा भी एक गाना है कि है मेरे वतन के लोगो बरलो पानी, जो शहीद हुए है इनकी, तो वही गाना है दीदी, याद जरूर सुना देना। और दूसरी बात बता, तो आज हमारा बेटा राजेश का जन्मदिन भी है।
1: क्या बात है, क्या बात है
2: दीदी।
1: तो कितने कितने वर्ष के हो गए वो आज?
2: 33 साल हो गए उसको।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से। वो हमेशा स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे, और खूब खुशियां आए उनके जीवन में, हम लोग दिल से दुआ करते हैं सुरेश भाई।
2: धन्यवाद दीदी, बस हम तो यही कहेंगे कि सब खुश रहे, अच्छे रहे, और हमारे मधुबन परिवार भी खुश रहे।
1: बिल्कुल। अब सुरेश भाई, जाते जाते एक बात जरूर बताएं कि आपको लगता है कि देशभक्ति आज क्या मतलब है, 2026 में देशभक्त कौन है?
2: देशभक्ति की तो दीदी बताऊँ तो हर जन लोगों के साथ आज देशभक्ति का जो एक जज्बा है और रहेगा, क्योंकि आज हमारे देखो प्रधानमंत्री भी इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश इतना आगे जाए और सभी देशों से एक अलग देश हमारा भारत देश बने, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री इतने सभी देशों से जो प्यारे और न्यारे हो गए हैं। तो देश का आज हमारा गर्व है, हमारे देश को, भारत देश को, कि आज हमारे सभी और देश वाले भी हमारी भारत की प्रशंसा करते हैं, अच्छे कहते हैं कि चलो बहुत भारत अच्छा है, हमारा मोदी जी सबसे अच्छे हैं, और मोदी जी इतना प्रयास कर रहे हैं तो देश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हमारे मोदी जी।
1: बिल्कुल, और हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, और हम सभी भी उनका साथ देते हैं। आप
2: बिल्कुल
1: है ना, देशभक्त
2: देना ही चाहिए दीदी, देना ही चाहिए, सब लोगों को साथ देना ही चाहिए कि आज हमारा
1: अपने देश का साथ,
2: देश इतना महान हो गया, जैसे कहावत थी कि हमारा भारत देश महान,
1: भारत देश महान,
2: आज महान बन ही गया है।
1: जी जी,
2: जी दीदी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गीत, आप जैसा कि आपने बताया आपके बेटे का जन्मदिन है, तो हार्दिक बधाइयां देते हुए, उन्हें डेडिकेट करते हुए ये गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं। अहम कार्यक्रम है नई किरण। और दोस्तों, नई किरण में जाते जाते आपको एक कहानी के साथ छोड़ के जाते हैं। जी हाँ, कहानियाँ वैसे तो बच्चों को सुनाई जाती हैं, लेकिन जब हम भी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ऐसी एक कहानी मैंने पढ़ी थी और उस कहानी का शीर्षक क्या है वो आप निर्णय लीजिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कई ज़्यादा थी। पूरा का पूरा जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कुकू कोयल, ब्लैकी कौआ, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी बस सब एक बढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने में लगे हुए थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो गया। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगा। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहाँ आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है,
1: अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही है कि मुझसे तो अब चाहकर भी अपना घर नहीं बनता। तो क्या चीकू खरगोश, तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी।
0: चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों ना चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूं? इतनी ठंड में उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है,
2: अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा?
0: लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है,
3: अरे मोंटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो? इतना गर्म घर देखकर मोंटी बंदर भी चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और वो दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर से बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश ब्लैकी कौवे के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है। मोंटी बंदर की तरह ब्लैकी कौवा भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्से करना लगता है। फिर चंपा लोमड़ी ब्लैकी कौवे को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौवा भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये देखकर चीकू खरगोश अब कुछ नहीं समझ पाता कि अब मैं क्या करूं। वो बड़ा हारा हुआ सा महसूस करता है। तभी उसे कच्चू हाथी का ख्याल आता है, क्योंकि पूरे जंगल में कच्चू हाथी से समझदार कोई भी नहीं था। बस यही सोचते हुए वो ठंड में कपकपाते हुए गज्जू हाथी के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर उसे डर भी लगता है, कहीं ऐसा ना हो मोंटी बंदर और ब्लैकी कौवे की तरह गज्जू हाथी भी उनके साथ रहने लगे। चीकू खरगोश गज्जू हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे चंपा लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है, अरे कच्चू दाता आओ, इन सब की तरह तुम भी अब से इस घर में रह सकते हो। और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है, चलिए अंदर अभी आपको खिलाती हूँ।
0: और फिर जैसे ही गज्जू हाथी चीकू खरगोश के घर के अंदर जाता है, उसका घर टूट जाता है। सभी टूटे हुए घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं,
3: अरे गज्जू दादा, ये क्या किया तुमने? इतनी ठंड में अब हम कहाँ रहेंगे? इतना गर्म घर क्यों तोड़ा?
0: तभी गज्जू हाथी उनसे कहता है, क्यों, ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है? चीकू खरगोश के लिए नहीं, तुम सबने एक बार भी चीकू के बारे में नहीं सोचा। चलो चीकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ चीकू खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले उसका अच्छा बुरा जरूर सोच लेना, समझे? तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी खत्म होती है और सिखाती है कि सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए और उसके बाद क्या करना है ये भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा घूम फिर कर जरूर आता है और वो बुरा ही होता है। छोटी जीत को हमेशा की जीत नहीं समझ लेना चाहिए। गलत रास्ते से आई हुई जीत उसी रास्ते से लौट भी जाती है और बहुत दुख देकर जाती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल लेते हैं इजाजत। अगला कार्यक्रम आशियाना लेकर आएंगे आरजे उषा जी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सावन आया खुशियाँ लाया, हर डाली मुस्काई, बादल बरसे झूम झूम कर धरती ने हरियाली पाई, मन के आंगन में प्रेम की फुहार बरसती जाए, सावन का ये प्यारा मौसम हर दिल को महकाए, सावन का ये प्यारा मौसम हर दिल को महकाए। सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। तिरंगे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करेंगे। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, बारिश के मौसम में पेड़ की उंगलियों के बीच में जो फंगस हो जाते हैं उसका कैसे हम उपचार करेंगे, घरेलू नुस्खों के द्वारा जरूर आप जानेंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप सभी को सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आप सुनिए आशियाना, जान जाएंगे। और आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर रहेगा, जो आपको अधिक से अधिक 3 बार बोल के सुनाना है, कम से कम 2 बार तो आपको बोलना ही है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, तिरंगे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी। स्पष्ट, एक छोटे से गांव में रौनक नाम का बच्चा रहता था। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में तिरंगा फहराया जाना था। रौनक बहुत ही उत्साहित था। रास्ते में उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज का तिरंगा दिखाई दिया। कुछ बच्चे उसके पास से गुजर गए, लेकिन रौनक ने उसे उठाया, साफ किया और सम्मान से अपने पास रख लिया। उसके शिक्षक ये सब कुछ देख रहे थे। उसके शिक्षक ने पूछा, रौनक तुमने इसे क्यों उठाया? रौनक बोला, सर ये सिर्फ कागज नहीं है, इसमें हमारे देश के वीरों की कुर्बानी, सैनिकों का साहस और करोड़ों भारतीयों का सम्मान है। शिक्षक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों से कहा, देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ना नहीं है, अपने देश, उसकी धरती, उसके झंडे और अपने कर्तव्यों का सम्मान करना भी सच्ची देशभक्ति है। उस दिन रौनक ने सबको एक छोटी सी बात सिखाई। इसीलिए कहा जाता है, तिरंगे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करेंगे।

तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, सिर्फ ये रौनक के ऊपर ही नहीं, हम सभी पर लागू होता है। ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें भी अपने तिरंगे के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए इस तरह का नेक कार्य करना ही चाहिए। तो आइए फिर से सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ। बारिश में उंगलियों के बीच खुजली गलने पर घरेलू देखभाल कैसे करेंगे? देखिए, बारिश में उंगलियों के बीच नमी फंसी रहने से त्वचा सफ़ेद पड़ना, गलना, खुजली या फंगल संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा हो ही नहीं, ज़रूरी थोड़े ना कि बीमारी होने पर ही इसका उपचार करें। अरे मैं तो कहती हूँ कि उपचार पहले ही कर लीजिए, बीमारी नहीं आएगी। उपचार क्या करना है, सावधानी बरतनी है। तो आप कैसे सावधानी बरतेंगे जान लीजिए। देखिए, पैरों हाथों की उंगलियों के बीच को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाइएगा, खास करके उंगलियों के बीच, ठीक है। फिर अगली बात है, आपको दूसरा पॉइंट आपको सुना रही हूँ, गीले मोजे या दस्ताने लंबे समय तक नहीं पहनना है। सूखे और साफ कपड़े आप पहनिएगा। गीले कपड़े हो गए हैं तो तुरंत ही चेंज करिए, क्योंकि ये भी स्किन एलर्जी कर सकता है, ठीक है। पैर की समस्या हो तो रोज साफ सूखे मोजे पहनिए और जूते भी सूखे रखिएगा। गीले हो रहे हैं, आप कहीं बाहर है तो एक वेस्ट कपड़ा अपने साथ रखिए, ताकि आप समय पर जूतों को पहुंच सको, अपने पैरों को भी पहुंच सको, ठीक है। नींबू, सिरका, बेकिंग सोडा या तेज घरेलू नुस्खे सीधे गली हुई त्वचा पर नहीं लगाए, गली हुई त्वचा पर, ठीक है, क्योंकि जलन बढ़ सकती है। अगर खुजली, लालिमा बढ़ रही हो, त्वचा फट रही हो, बदबू या पानी पी पा रही हो, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर सलाह लीजिएगा। बार बार होने पर चिकित्सीय सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सावधानी इस तरह आप रख सकते हैं, और इस तरह अगर आप सावधानी रखेंगे तो इन समस्याओं से मुक्त रहेंगे। इसीलिए कहते हैं, बारिश में नमी जितनी त्वचा की दोस्त लगती है, उतनी ही कभी कभी परेशानी की वजह भी बन जाती है। इसलिए साफ सफाई के साथ उंगलियों के बीच सूखापन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो यह हुआ घरेलू उपाय, सावधानियां, और आइए आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, आप ध्यान से सुनिएगा, और अधिक से अधिक 3 बार आपको बोलना है, कम से कम आपको 2 बार तो बोल के सुनाना ही है। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। ये आज का टंग ट्विस्टर है। जवाब देने के लिए, सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुना सकते हैं। आइए अब यहीं पर फिर से कल विराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: तिरंगे की शान में हम अपना शीश झुकाए, भारत माँ के चरणों में दिल से फूल चढ़ाए, वीरों की कुर्बानी को कभी न भूल पाए, आओ मिलकर आज़ादी का पर्व मनाए, आओ मिलकर आज़ादी का पर्व मनाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। कल स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या करने वाले हैं आप, जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, कैसे मना रहे हैं, कल का क्या आपका शेड्यूल है, प्रोग्राम है, और अपने स्टूडेंट लाइफ याद कर लीजिएगा कि कैसे आप विद्यार्थी जीवन में इस दिन को मनाते थे। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे, जानना चाहेंगे, ताकि कहते हैं ना कि सभी को एक दूसरे का हम क्या करते आए, कैसे इस त्यौहार को, त्यौहारी है ना 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इस त्यौहार को आप कैसे मनाते आए, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर है, जिसको भी मैं फिर से दोहरा दूंगी, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप जुड़िए और अपनी बात को रखिएगा। आज का टंग ट्विस्टर है, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। यह आज का टंग ट्विस्टर है, जिसको 3 से अधिक बार नहीं बोल के सुनाना है, सिर्फ 3 बार बोल के सुनाना है, और कम से कम आपको 2 बार तो बोलना ही है। तो क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कल की तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, करिए करिए। लेकिन अगर आज समय है तो बता दीजिए, आपके पास समय है तो बता दीजिए, कल की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। कल खास दिन है, कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम, 79 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और ये 80वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। तो ज़रूर आपने भी कुछ तो प्लान किया ही होगा। मुझे तो आज भी अपने बचपन की सारी बातें याद आती है कि कैसे इस दिन का उमंग उत्साह से मनाते थे, और ये सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं है, ये हमेशा की खुशी है। लेकिन कहते ना कि विद्यार्थी जीवन में इतने समझ नहीं होती है, लेकिन 10-10, 15-15 दिन पहले ही इस दिन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, हेलो
1: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूरज जय बोलता हूँ जताना से।
0: हाँ जी नमस्ते,
1: मित्रों को नमस्ते
0: जी, आपको भी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप
1: जी? और बस बिल्कुल अच्छे हैं, और जैसे हैं बात कर रहे हैं आपसे और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं
0: जी,
1: और कल 15 अगस्त है तो बहुत अच्छा दिन भी है, और बताओ तो आज हमारे बेटे का जन्मदिन भी है।
0: अरे वाह क्या बात है, तो हम आपके बेटे के लिए भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर हमेशा उनको आगे बढ़ाए और उनके श्रेष्ठ संकल्प पूरे करे।
1: जी जी धन्यवाद आपका, क्योंकि दुआएं तो कभी खाली नहीं जाती है, कहते हैं ना कि कभी दुआएं, कोई भी हो दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, और दुआ से तो ये सब कुछ चल रहा है। आज इतना बड़ा जो हम खेल खेलते हैं, तो कभी कभी कोई काम नहीं आती दवा, तो दुआ ही काम आती है
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा दिन लगा, और कल स्वतंत्रता दिन है, 15 अगस्त है, तो पहले तो दीदी मैं बताऊँ तो हम तो हर रोज दीदी 26 जनवरी 15 अगस्त स्कूल में जाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन भी करते हैं, बच्चों को कई वहाँ कार्यक्रम होते हैं तो देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ सलामी देने के लिए जाते हैं
0: जी जी जी,
1: जाना ही चाहिए दीदी, वो तो कहते हैं कि भारत देश हमारा जो हुआ है, तो हम हमारी भी फर्ज है कि हम भी वहाँ जाके कुछ 2 शब्द सुने और भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करते पाए।
0: जी क्या बात है,
1: बस जाना ही जरूरी दीदी, वहाँ कई सारे बच्चे का कार्यक्रम भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं,
0: आप जाते हैं तो कौन सा बड़ा फायदा होता है इसमें, बहुत बड़ा फायदा होता है, कौन सा,
1: क्या बोला दीदी?
0: जैसे हम इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं देशभक्ति वाले, ठीक है, स्कूलों के अंदर जाकर देखते हैं, विद्यार्थी जीवन में हम भी करते आए हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ये बताइएगा।
1: फायदा दीदी क्या है कि मैं बताऊँ, फायदा तो बहुत है कि जो हम वहाँ जाते हैं देखते हैं तो हमारे भी अंदर कुछ न कुछ ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि हम भी
0: क्या
1: कुछ
0: बात है। जी जी जी
1: और
0: बहुत सुंदर बात कही आपने, इसी जवाब का मुझे इंतजार था।
1: जी दीदी तो बस हम तो सभी को दीदी ऐसे कहते हैं कि कुछ न कुछ आप करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। चलो आप लड़ाई में ना जाए, बॉर्डर भी ना जाए, लेकिन घर बैठे तो हम कुछ न कुछ ऐसा देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक का उपयोग कम करे, एक दूसरे को सहाय करे, एक दूसरे को इसी बात बताए, छोटे छोटे बच्चों को ध्वज हाथ में दे दे, लेकिन बताओ दीदी तो हमारी छोटी गोड़िया है वो कल ध्वज आके हाथ में लेके घूमेगी पूरा दिन।
0: अच्छा।
1: वो हर दम बोलते दीदी हमारे क्या है जो यहाँ बोर्ड लगा होता है गांव में, क्या है दीदी एक बोर्ड लगा होता है कॉलेज में तिरंगा दौड़ते हैं, तो हर दम तुम वहां से निकलती है और बोलते ज्यादा वो झंडा ज्यादा वो झंडा, तो ऐसा उसमें एक माइंड में ऐसा अंदर भाव प्रकट हो जाता है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बच्चों को भी ऐसा ही थोड़ा सा, हम छोटे बच्चे को भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा बताए कि ये तिरंगा है झंडा है।
0: बिल्कुल, तिरंगे का परिचय कराना चाहिए अपने देश के प्रति, जो भी
1: थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज देना चाहिए।
0: जी जी जी, जिन्होंने भी नेक कार्य किया है देश के लिए शहीद हुए उनकी भी जानकारी देनी चाहिए,
1: जानकारी देना जरूरी है
0: जी,
1: क्योंकि कई लोगों को दीदी कई बच्चों को पता नहीं कि हमारे देश में किसने आजाद किया था, वो कौन कौन थे, वो फांसी पर चढ़े थे, वो सभी बताना ही चाहिए बच्चे को, तो आगे जाते उसको भी कुछ नॉलेज हो और कुछ पता चले कि नहीं हमारे देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानी ने सब काम किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलो मैं टंग ट्विस्टर भी सुना दो दीदी।
0: हाँ जी हाँ जी, टंग ट्विस्टर भी सुना दीजिए।
1: स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है कि जैसे कल बहुत सारे कार्यक्रम होंगे स्कूलों के अंदर, तो आप बता रहे थे कि हम देखने जाते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर भी देश प्रेम की भावना जगी रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चों के अंदर भी इस तरह की बातें उनके अंदर भी भरनी चाहिए और इस तरह की भावनाएं उनके अंदर भी जगानी चाहिए, तिरंगे के प्रति उनके अंदर प्रेम का भाव बढ़ाना चाहिए। उनको परिचय देंगे, समझाएंगे, तभी तो वो समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार। और आप क्या सोच रहे हैं, अरे आप कैसे मना रहे हैं ये तो बता दीजिए, हम किसी को बताने वाले नहीं है। हम भी तो मनाते आए हैं ना, स्टूडेंट लाइफ याद करिएगा, हर एक ने इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया है, जो आज दिन तक मन में उमंग उत्साह पैदा करता है। बचपन की बातें याद आ जाती है, इस तरह के खास दिन आते हैं तब तो याद आता है। जब मैं आपको बता रही थी कि 10 दिन 12 दिन पहले ही उमंग उत्साह शुरू हो जाता है, क्योंकि टीचर लोग पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि अब आपको राष्ट्रीय गीत बोलना है, सामूहिक गीत बोलना है, आपको इस तरह का कार्यक्रम करना है, कविता डांस वगैरह जो भी है, स्टेडियम में ये करना है, वहाँ पर वो करना है, तो तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है ना। और तैयारी के साथ साथ उमंग उत्साह और जोश बढ़ जाता है कि अरे वाह क्या बात है, मेरे देश के आज़ादी का दिन जो आ रहा है, तो वो ही उमंग उत्साह रहता है। और बहुत ही खुशी खुशी ये जो 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो टीचर 7 बजे बुलाएंगे लेकिन 6 बजे स्कूल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो इतना उमंग उत्साह है कि पैर थमते ही नहीं है कि नहीं समय से पहले पहुंच जाओ, पता नहीं वो मिस हो जाए, कितने तरह की बातें होती है और समय से पहले पहुंच जाते हैं। टीचर भी आश्चर्य करते हैं कि अच्छा बाकी तो समय पर आते हो, आज जल्दी आ गए, क्या बात है। लेकिन समझते हैं उमंग उत्साह को, टीचर भी महसूस करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका उमंग उत्साह इतना झलकता है कि सामने वाला स्पष्ट देख लेता है कि हाँ इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जुनून है। तो इस तरह उमंग उत्साह से बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं 15 अगस्त पर। जैसे सबसे पहले तो स्कूलों के अंदर पहले राष्ट्रीय गीत बोला जाता है, राष्ट्रगान बोल करके फिर झंडा फहराया जाता है, फिर कविता पाठ भी चलता है, तो सामूहिक गान और भी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्रिंसिपल जैसे स्कूल के HM है या अन्य टीचर है वो भी स्पीच देते हैं देश की आज़ादी के लिए, किन्होंने किस तरह का योगदान दिया वो भी बताते हैं। उसके बाद स्कूल के सारे बच्चों को लेकर टीचर वहाँ जाते हैं जहाँ सारे स्कूल इकट्ठे होते हैं, ऐसा स्थान फिक्स होता है, जैसे कोई बड़ा सा मैदान होता है, स्टेडियम होता है, वहाँ जाते बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं और वहाँ पर फिर सभी का साथ कार्यक्रम होता है। कम से कम 50-60 स्कूल इकट्ठे होते हैं तो वो रौनक की देखने जैसी होती है। वो कभी अगर आपको भी ऐसा अवसर मिले तो कभी मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा स्थान हर कहीं नहीं होता है। बाकी सिंगल सिंगल अपने अपने स्कूलों में सभी मनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब इतने सारे स्कूल मिलकर के इस कार्यक्रम को मनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं, तो वो देखने लायक होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मैं आपको अलका जी काबरा कपासन से जुड़े हैं टंग ट्विस्टर सुनाना चाहते हैं, तो उनके द्वारा टंग ट्विस्टर सुन लेते हैं।
2: स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे।
0: चलिए थोड़ा सा अटक गए हैं बहन और थोड़ा से इनसे गलती भी हुई है, लेकिन फिर भी कहते ना कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी कोशिश की अलका जी, तालियां आपके लिए। हेलो
3: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, नमस्ते, कैसे हो आप?
3: बस दीदी बहुत अच्छे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं दीदी, और बहुत अच्छी अच्छी आप बातें हो रही है तो हम सुन रहे हैं दीदी, और विषय भी बहुत बहुत अच्छा है दीदी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश को आज़ाद किया स्वतंत्र सेनानियों ने, उन्होंने तो अपना काम किया और कर दिया, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? आज़ाद तो हुआ, हम आज़ादी से जी रहे हैं, जो भी होना है कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी आज़ाद होने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है दीदी? वो एक तो हमको अपने आप के अंदर चौकर जानना पहचानना जरूरी है दीदी।
0: जी जी जी।
3: कई लोग ऐसे भी है कि चलो कुछ ध्यान ख्याल नहीं रखते है देश के प्रति, कोई साफ सफाई या कोई भी, चलो अपने अपने कार्य में बिजी व्यस्त रहते है, और एक दिन के लिए जो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही जो भारत के लिए देशभक्ति दिखाते हैं, ये है वो, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं दीदी।
0: जी,
3: मैंने देखा इसलिए मैं बात कर रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी,
3: तो मैं यही कहूँगा कि एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का सबूत हम खुद दे सकते हैं अपने आप को, किसी को अगर बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हाँ खुद ये सब करते हैं और करेंगे ही। हम एक सच्चे भारतीय है, हम जो साफ सफाई का काम करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम एक सच्चे भारतीय है, हम किसी को अपने भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एक सच्चे भारतीय है, अपना भारत के प्रति कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, हम एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं।
0: क्या बात है
3: जी। और आपने जो बचपन की बात कही, तो हम भी बहुत, अभी आपने कहा कि सुबह सुबह चले जाते, तो बिल्कुल हम सुबह सुबह चले जाते थे, इतने कई दिनों पहले, इतनी उमंग उत्साह से हमारे जो विद्यार्थी के जीवन में इतना भाव रहा था तो हम ये करेंगे वो कच्छ में भी खाते थे और आज भी यही कर रहे हैं। और आज हमारे बच्चे स्कूल में जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो वो देखकर बहुत खुश तो होते ही है, लेकिन वो हमारे स्टूडेंट वाले पुराने लाइफ भी याद आ जाती है, तो ये भी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता था। तो यही कहेंगे कि हम अपने सच्चे भारतीय नागरिक होने का फर्ज बिल्कुल निभाए अच्छी तरह से।
0: जी बहुत सुंदर।
3: और आज के टंग टीचर सुनाओ दीदी।
0: हाँ जी बिल्कुल सुना दीजिए।
3: स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। जय हिंद।
0: बहुत अच्छा, लेकिन एक मात्रा सभी ने खाई है। सभी ने बोले तो अलका जी ने भी और आपने भी, धानेरा वाले सुरेश भाई ने। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपने स्वतंत्र बोला है, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। तो आपने स्वतंत्र भारत बोला और स्वतंत्र सेनानी बोला, तो ये वो कहते हैं ना कि टंग ट्विस्टर में एक मात्रा भी अगर उड़ गई तो टंग ट्विस्टर का थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश हर किसी के बस में नहीं होती, इसलिए इसी तरह आप जुड़ते रहिए और

भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: सुप्रभात, हाँ जी। तो कैसे हो आप? बढ़िया
1: बस। हाँ बहन जी, बस खेती का काम अब चालू है अभी
0: जी।
1: यहाँ एक रेलवे निकली है बहन जी, रेलवे लाइन, तो अभी रेलवे का काम यहाँ चल रहा है। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के खेत में आना पड़ता है अभी।
0: जी जी जी,
1: ये साधन की तरह देखो, आपको देता होगा।
0: जी जी जी, किचड़। हाँ जी, किचड़ बहुत होता है ना अभी बारिश के मौसम में।
1: हाँ
0: जी,
1: रेलवे यहाँ अंबाजी तक आने वाली है, जो तारंगा अंबाजी।
0: जी जी जी जी,
1: तो ये हमारे एक कुएं के पास ही।
0: जी जी जी,
1: तो ये काम चल रहा है। और क्या है आज का विषय? तो लेट हो गया थोड़ा।
0: जी कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास समय है। मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा ही हमारी पहचान का सितारा है। वीरों ने देकर प्राण हमें आजादी दिलाई, उनके बलिदान से रोशन भारत हमारा है। उनके बलिदान से रोशन भारत हमारा है। क्या कहेंगे आप? कैसे आप स्वतंत्रता दिवस मनाते थे विद्यार्थी जीवन में, और कल आप खास क्या करने वाले हैं?
1: हाँ बहन जी, कल तो हम तो मनाते थे। क्या है कि अगले दिन जो ये था ना झंडा
0: जी,
1: तो कपड़े कपड़े करके सुबह में स्नान करके स्कूल में जाते थे
0: जी।
1: और फेरी गांव में झंडा लेके फेरी एक हफ्ते थी, तो बहुत ये रहता था बहन जी, यह देश के लिए बलिदान। जो बड़े बुजुर्ग जो शिक्षक थे हमारे, रिटायर्ड टीचर थे, उन्होंने ये बहुत बात करते थे, फिर प्रवचन करते थे। तो जो बलिदान दिया है आगे हमारे देश के लिए, वो बात करते थे, तो हमें हमें भी ये लगता था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए
0: जी।
1: तो अब ये कर रहे है बहन जी, हमसे जो हम कर रहे है देश के लिए।
0: जी जी जी।
1: और
0: जी,
1: कल हम जाएंगे स्कूल में, सुबह में स्कूल में जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल हमको आता है, माइक्रोफोन और ये सब, तो ये ठीक करके हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कितने रखना चाहिए, कैसे रखना बोलना, ये सब हम।
0: अच्छा,
1: ठीक करते।
0: तो कहाँ जाएंगे?
1: स्कूल में।
0: अच्छा, स्कूल में। ओके ओके, आपको स्पीच देना है।
1: हाँ
0: जी जी, चलिए, बहुत अच्छा है। ओनली बेस्ट।
1: लाउड स्पीकर आदि का हम करते हैं
0: जी,
1: हमें थोड़ा आता है, तो ये सब
0: नहीं, अच्छी बात है ना, आता है तो वो सभी का उसका फल मिलना चाहिए।
1: हाँ, और बच्चों के लिए बिस्किट आदि जो हमसे होता है वो लेके जाएंगे, और ये सब बातें बच्चों की सुनेंगे। बच्चे की बातें तो बहुत अच्छी होती है वैसे।
0: जी जी जी,
1: छोटे छोटे बच्चे जो माइक्रोफोन से बोलते हैं ना
0: जी,
1: तो बहुत बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ा ये करते हैं कि इधर नजदीक रखो तो आवाज क्लीन आएगी, ऐसा थोड़ा ये करते हैं।
0: जी जी जी जी, जी।
1: करेंगे, कल जाएंगे, और हमारे देश के लिए महान पुरुषों ने क्या क्या बलिदान दिए है, ये सब बातें हम।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: हाँ जी,
0: और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
1: तो लिखना पड़ेगा, और अभी तो कितने हूँ तो ये लाया नहीं हूँ, कोई स्कैन बैन है नहीं हमारे पास।
0: अच्छा,
1: तो हाँ सुनाओ तो सही, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ
0: जी। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। ये आज का टंग ट्विस्टर है।
1: बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: बाद में उसका।
0: ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई, आप जुड़े हैं इसके लिए।
1: थैंक यू बहन जी, सभी दोस्तों को आपको स्वतंत्र ढेर शुभकामना
0: जी, आप सभी को भी इन एडवांस सभी को ढेर सारी शुभकामना जी जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी अपने बातें बताई है, कैसे आप क्या करने वाले हैं कल स्कूलों के अंदर, वह आपने बताया है। हेलो, तो देखिए हर एक के अंदर उमंग उत्साह है और उमंग उत्साह बरकरार रहना ही चाहिए। हम उमंग उत्साह में रहेंगे तभी तो बच्चे हमें पूछ पाएंगे ना, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं घर में, वो भी आश्चर्य करते हैं ना कि अरे आज थोड़े अलग क्यों लग रहे हैं आप, हमेशा तो नॉर्मल रहते हैं, आज इतना उमंग उत्साह, इतनी खुशी किस बात की। तब हम उनको बताएंगे कि देखो कल ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, उनके अंदर भी देश के प्रति प्रेम की भावना जगती है और उनको भी लगता है कि हम भी बड़े होकर के कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, और करते भी हैं। बच्चे जब ठान लेते हैं तो क्या नहीं करते, सब उनके हाथ में है, सब कुछ करते हैं। देखते हैं ना आज भी हमारे वीर सैनिक बॉर्डर की किस तरह रक्षा करते हैं और कैसे हंसते हंसते अपने प्राण भी दे देते हैं, वो भी तो किसी माँ का लाल है, किसी बहन का भाई है, किसी का पति भी है, लेकिन परिवार से डिटेच रह करके, देश से प्रेम करके, देश के लिए कुर्बान हो जाना हर किसी के बस में नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। और आपको पता है कल हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं? जी हाँ, 80वां। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ये दिन हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज़ादी केवल अधिकार नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक जिम्मेदारी भी है। कैसे? तो देखिए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करेंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और भारत को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, शिक्षित और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। कोई तो संकल्प हम कर ही सकते हैं ना, तो कोई भी संकल्प करिए कि भाई ऐसा कार्य हम करेंगे, तो ये भी देश को मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। कितने बार लोग सोचते हैं कि अरे भाई पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था देश, इसलिए लोग आगे बढ़े और अंग्रेजों से देश को आज़ाद करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तो देश आज़ाद है, हम क्या करें। तो इतनी सारी बातें बताई, उनमें से एक आप कर ही सकते हैं। जैसे सुरेश भाई ने भी बताया था कि भाई आप प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ मत करिए, प्लास्टिक मुक्त होइए, तो ये भी देश के विकास के लिए योगदान ही रहेगा। और इससे भी कितनी दुआएं मिलेगी जब गाय, ये जो पशु है, वो इन प्लास्टिक को खाएंगे नहीं और मरने से बच जाएंगे, तो वो भी तो दुआएं हुई ना। हम इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, ये भी नियम ले लीजिए। ट्रेनों में देखिए, बसों में देखिए, सरकारी स्थान पर आप कहीं पर भी देख लीजिए, इधर पान खाया, इधर पिचकारी मारी, इधर पड़ीकी खाई, इधर थूका, कितनी गंदगी। तो कम से कम इस गंदगी को हम बचा सकते हैं इधर उधर थूके बिना, तो भी ये देश के विकास के लिए सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है। सफ़र में अक्सर हम देखते हैं मूँगफली खा करके लोग इधर उधर छिलके फेंक देते हैं, क्यों? हमारे घर में हम ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। अधिकार के लिए हम आगे बढ़ते, तोड़फोड़ करने को शुरू हो जाते, हमें ये नहीं मिला, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और सफाई के लिए आगे नहीं बढ़ते। उस समय क्या हमारा अधिकार नहीं है कि स्वच्छता हमारा ही अधिकार है और हमें गंदगी नहीं फैलानी है? अक्सर मूँगफली के छिलके उधर उधर फेंके होंगे, और आजकल तो फिर क्या क्या नहीं चल रहा है, बच्चे ये जो पैकेट की चीज़ें खाते हैं तो वो खा करके भी उस वेपर्स को इधर उधर रेपर्स फेंक देते हैं, वो भी कचरा होता है, उससे भी कितनी बार बड़े बुजुर्ग या बच्चे स्लीप हो जाते हैं, गिर जाते, हादसे हो जाते हैं। और छोड़िए, हादसे तो होंगे तब होंगे, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता ना, गंदगी अच्छी लगती है, हमारे घर में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो सरकारी साधनों का ध्यान भी रखिए। हेलो,
2: हेलो, कैसे हो सब?
0: हाँ जी, अच्छे हैं। दयाराम जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। जी थैंक यू।
2: आप सुनाते?
0: हाँ जी सुनाइए।
2: वो सब खुद पता के सब फर्ज समझते हैं तो कचरा होता ही नहीं सकते।
0: जी
2: सही बात है आपकी, सही बात है। और आपका कुछ,
0: आप कल की तैयारी कैसे कर रहे हैं? कल स्वतंत्रता दिवस है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप?
2: हेलो,
0: हाँ जी
2: बोलो जी।
0: हम कह रहे हैं कल स्वतंत्रता दिवस है, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कल के दिन की?
2: हम तो हमारे गांव में जाएंगे, अभी झंडा लहरा दिया है तिरंगा घर पे ऊपर
0: आज,
2: और
0: आज ही लहरा दिया है?
2: आज लहराया, दो दिन पहले लहराने थे, वो तो आगे से आदेश था अभी।
0: अच्छा,
2: फिर लहरा दिया है
0: जी
2: घर के ऊपर, और कल जाएंगे वो हमारे गांव में स्कूल में।
0: अच्छा ठीक है, और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे? आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: ना आज भी सुनाया, मैं अभी काम में था बिजी।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आप जुड़े इसके लिए। तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से, और पूजा जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं टंग ट्विस्टर सुनाने के लिए। तो पूजा जी के द्वारा सुनेंगे।
3: स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए।
0: बहुत सुंदर, तो पूजा के लिए भी ढेर सारी तालियां। एक शब्द के, एक मात्रा के इनसे भी मिस्टेक हुई है, फिर भी अच्छी कोशिश की है। तो बस विषय को यही समाप्त करते हैं, और स्वतंत्रता दिवस की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब यहीं पर एक गीत सुन करके फिर आपसे बात करेंगे, रेसिपी में अच्छे से चीज़ें सिखाएंगे। तो सुन लेते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकी गर्ल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं बुजुर्गों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो आप फटाफट भी बना सकते हैं और सभी खा सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग आप भी खा सकते हैं, वयस्क भी, ठीक है, लेकिन हेल्दी वाले, ठीक है, क्योंकि बुजुर्गों की देखिए बुजुर्ग अवस्था जब होती है तो खाने की इच्छा थोड़ी ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है, दांत नहीं होते हैं तो चबा नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातें होती है, खाने पीने में काफ़ी दिक्कतें आती है, उस समय हमें सोचना पड़ता है कि क्या बनाए या क्या नहीं बनाए। अब भूख तो सभी को लगती है, ऐसा तो नहीं है कि खाना हो तो ये खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, रोटी रख दी, सब्जी रख दी, ऐसा थोड़ा होता है। उनके लिए थोड़े सॉफ्ट चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दांत नहीं होना तो भी वो आराम से खा सके। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट ओट्स के चिल्ले पहले सिखा रही हूँ। अलग अलग प्रकार के चिल्ले आप बना करके बुज़ुर्गों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि खाते एक या आधा चिल्ला, वो भी अगर टेस्टी हो, उनके पसंद का हो, तो मतलब बड़ी रुचि से खाएंगे। और ऐसे ही हम ऐसे ही रख देंगे तो बिना मन से खाना है तो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लेंगे, है ना। तो अच्छे से बनाइए। तो ओट्स का पहले आप पीस लीजिए, मैं सामग्री और विधि दोनों ही साथ में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन चलिए पहले मैं सामग्री बता देती हूँ। ओट्स लेना है आपको, फिर आप लीजिए शिमला मिर्च, गाजर, आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, आप लौकी भी ले सकते हैं, ठीक है। सब्जी आप ले सकते हैं, जैसे पालक है तो थोड़ी सी पालक ले सकते हैं, धनिया ले लीजिए, फिर आप लीजिए सौंफ, जिसको गुजराती में बरियाली कहते हैं, फिर आप लीजिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च ले लीजिए, चाहिए तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी ले लीजिए, और थोड़ा सा हींग, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री। ओट्स लिए, फिर से दोहरा रही हूँ, ओट्स, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, लौकी, हरा धनिया, पालक हो तो पालक भी ले सकते हैं, मेथी की भाजी हो तो थोड़े से पत्ते मेथी की भाजी के भी ले सकते हैं आप, हरी मिर्च, अजवाइन, जीरा, सौंफ, और नमक तो लेना ही है स्वाद के अनुसार, और घी, ठीक है। ये हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ओट्स आप पीस लीजिए, ठीक है, ताकि आटा बन जाए। फिर आप इस आटे को पानी में गला दीजिए, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके इस आटे को गला दीजिए। इसमें अब आप थोड़े से अजवाइन, थोड़े थोड़े से डालना है, ठीक है, चपटी चपटी, तो थोड़े से अजवाइन डाल दीजिए, थोड़े सौंफ डाल दीजिए, थोड़ा जीरा डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर बारीक काटते तो बारीक काट के डालिएगा, लाल मिर्च पसंद है तो थोड़ी सी डालिएगा, लेकिन बुज़ुर्गों के हिसाब से वो ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते, ठीक है, तो उस हिसाब से आप डालिएगा। फिर आपको खाना हो तो बुज़ुर्गों के बनाने के बाद, बच्चों के बनाने के बाद आपके थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं मसाले, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब इनको गला के आप रख दीजिए, ये गलेगा खीरा, तब तक के लिए आप सब्जियाँ साफ कर लीजिए, सारी सब्जियों की धुलाई करके गाजर कद्दूकस कर लीजिए, शिमला मिर्च कद्दूकस कर लीजिए, और लौकी कद्दूकस कर लीजिए, पत्ता गोभी कद्दूकस कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा लेना है, ये भी कोई ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े थोड़े से मात्रा में। अगर मेथी की भाजी है तो मेथी के पत्ते कुछ ले लीजिए, 8-10 पत्ते, पालक है तो पालक के 2-4 पत्ते बारीक काट करके ले लीजिए, और ये सब इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर हिला दीजिए, थोड़ा सा हम पकोड़े बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा ढीला घोल रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह घोल तैयार कर लीजिए, फिर आप तवा लीजिए, थोड़ा सा मोटे पेंदे वाला या नॉन स्टिक, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर लोहे का तवा लिया है मोटे पेंदे वाला, तो उसमें पहले आप साफ़ कर दीजिए, साफ़ करके घी की पोती लगा दीजिए, फिर इसको गर्म होने दीजिए। अब आप सब्जी वाला चम्मच खीरे से भरिए और चारों तरफ आप डालिए, चूल्हे पर थोड़ा सा डाल दीजिए पहले, तो चारों तरफ फैला दीजिए चम्मच से, और भी चाहिए तो आप भर लीजिए। बड़े बड़े चूल्हे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खीरा लीजिए,
छोटे छोटे चिल्ले बनाना चाहते हैं तो कम लीजिए खीरा, ठीक है। और फिर इनके किनारों पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए सब तरफ एक एक बूंद, और सिकने दीजिए मध्यम आँच पर। फिर आपको लगे कि अब यह हमारा चिल्ला सिक गया है तो आप खुरपी की मदद से उसको पलटी मार दीजिए और घी की पोती लगा दीजिए एक तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ सिक जाए तो फिर उसके पलटी लगाकर उधर भी आप घी लगा दीजिए। फिर दोनों तरफ सेक करके दूसरा चिल्ला ऐसे ही बनाना है, तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है। बच्चे क्या है, अक्सर सब्जियां नहीं खाते, माताएं चिंता करती है हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता है, तो इसी बहाने वो सब्जी खाना सीख जाएगा। चिल्ले के अंदर इतनी सारी सब्जियां है उसको पता ही नहीं होगा, और स्वादिष्ट भी लगेगी, फ़ायदा भी करेगा बच्चे को भी, और बुज़ुर्गों को भी आवश्यकता है सारी प्रोटीन विटामिन्स की, उनके भी तो फायदेमंद तत्व जाने ही चाहिए, और उनके भी जो खाने की रुचि समाप्त हो जाती है, वो खाने के प्रति रुचि उनकी फिर से उत्पन्न होगी। तो इस तरह आप अलग अलग चिल्ला बना करके आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी खिला सकते हैं। तो जैसे और भी आपको सिखाती रहूँगी, आज तो एक ही सिखा पाई हूँ क्योंकि समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग ज़रूर लगाना है, ठीक है। भोग लगाने से भोगनाएँ भागती है, और हम अक्सर कहते हैं ईश्वर भावना का भूखा है न कि खाने का, तो बस वो भासना मिलती है, इसलिए भोग जरूर लगाइएगा। और आइए अब यहाँ पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर ज़रूर आपने गौर किया होगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, कैसे आप बारिश के मौसम में सावधानी रखेंगे अपने पैरों की उंगलियों के बीच जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इन सब का तो सावधानियाँ ज़रूर रखिएगा। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो आपको ओट्स का चिल्ला बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। तो स्वयं के लिए भी ढेर सारी। तो ये आज का टंग ट्विस्टर था। सुरेश भाई झोटाना से जुड़े हैं, आपने एकदम परफेक्ट सुनाया है। और अलका जी काबरा कपासन से, पूजा जी दहली से, कंचन भाई मंडाली से, दयाराम जी इकबालगढ़ से और दीपा सोमानी कपासन से, आप सभी ने भी अच्छी तरह कोशिश की है। कंचन भाई ने नहीं सुनाया, दयाराम जी नहीं सुनाया, बाकी आप सभी ने सुनाया है और सुरेश भाई ने बहुत ही अच्छी तरह सुनाया है। तो पुनः ताली। और सुरेश भाई, कंचन भाई विषय में जुड़े हैं, दयाराम जी, सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी अच्छी कोशिश की है टंग ट्विस्टर सुनाने की। तो आपके लिए भी और विषय के लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। अब आपको मैं देशभक्ति की प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे। कल क्या है? कल स्वतंत्रता दिवस है, तो कल अंताक्षरी का दिन भी है, तो कल की थीम रहेगी देशभक्ति गीत। ठीक है, तो देशभक्ति गीतों की थीम रहेगी। आज ही आप तैयारी कर लीजिएगा और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा और प्यारी सी कविता का आनंद लीजिए आप और मुझे दीजिए अनुमति। आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। पुनः आपको इन एडवांस स्वतंत्रता दिवस की और छोटी तीज की, हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। लहर लहर लहर आए तिरंगा, भारत माँ की शान है, केसरिया साहस की गाथा, सफेद शांति की पहचान है। हरा रंग खुशहाली लाए, चक्र प्रगति का ज्ञान है, तीनों रंगों से सजा हुआ मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जिन वीरों ने हंसकर अपने प्राण देश पर वार दिए, उनकी पावन कुर्बानी ने आजादी के दीप जला दिए। उनके सपनों का भारत हो, हर मन में सम्मान रहे, नफरत मिटे, प्रेम बढ़े और भारत सदा महान रहे। आओ मिलकर शपथ ये ले, आओ मिलकर शपथ ये ले, देश का मान बढ़ाएंगे, मेहनत ईमान और एकता से भारत को आगे ले जाएंगे। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, इसके आगे शीश झुके, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ, अब तो बस करो।
1: बहू, क्या सोच रही हो? घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
4: कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या है ऐसी बातें जिसे हम कहे जीना इसी का नाम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और उसको हम कैसे सामना करते हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं और उनका जीवन एक आदर्श बन जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही अनुभवों से और उदाहरणों से आज हमारे बीच में है आदरणीय गंगाधर बाई जी। आप पिछले 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 4 दशकों से अधिक समय से अब अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में गंगाधर बाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन का भी बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
0: शुक्रिया भाई जी। हम सबसे पहले आपकी वो जर्नी जानना चाहेंगे जो आपका बचपन है, कहाँ पे बीता, आपकी मात पिता क्या कर रहे थे, आपकी जो लौकिक जीवन है और फिर वहाँ से अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे आई।
1: मेरा जन्म एक छोटे से गांव गुजरात में भुज कच्छ में नखत्राणा में हुआ और बचपन में हमारे जो घर में एक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे हम सभी, हम गीता पाठी थे और हमारे घर में हमारे पिताजी और हम सभी कुटुंब में बहुत अच्छा एक नियम था कि गीता का पाठ पठन करना है और पाठ पठन करने के बाद ही भोजन मिलता था। तो हमें भी वो नेचुरली वो संस्कार हमें वर्षे के रूप में भगवान को याद करना और उसके बाद ये भोजन करना, ये बचपन से ही संस्कार। और फिर हमारी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद मैं एसएससी तक, एसएससी मैंने टॉपर किया गुजरात में ही। गुजरात से फिर मैं वहाँ से जाना हुआ, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में फिर अहमदाबाद के पास में एक धनसुरा करके गांव है आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो वहाँ हम रहे और वहाँ टॉपर करके फिर अचानक हम व्यवसाय हमारा नागपुर में था, परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और पहले मेरा कॉमर्स साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स किया क्योंकि व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय का भी काम संभालते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे। ऐसे में भक्ति मार्ग का जो संस्कार था कि हम वहाँ पर एक केंद्र चलता था स्वाध्याय परिवार का, जो पांडुरंग आठवले जो बॉम्बे में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब हमारे घर में कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन हमारे गांव में ही पूरे ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो अपने जो भी खेती बाड़ी का वो सारा व्यवसाय करते थे, लेकिन मैं ही एक ऐसे, मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ाई में तो मैं फिर वहाँ जाके पढ़ाई भी किया और साथ साथ धंधा भी।
0: उस दौरान आप अकेले थे या आपके और भाई बहने भी थे?
1: हाँ, घर में हम 4 भाई और 3 बहनें हमारे पिता के संतान थे और मैं सबसे छोटा था। और हाल ही में हमारे कोरोना काल के दरमियान हमारे 2 साल में 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा। माता पिताजी ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया और व्यवसाय भी चल रहा था तो, और मैं तो यहाँ आ गया था और सभी अच्छे व्यवसायी घराने के अभी एक उसके बच्चे हैं, सभी व्यवसाय करते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई व्यवसाय किसी का नागपुर में और कोई एक में फार्म हाउस है जहाँ गुजरात में ही,
0: मतलब सभी बिजनेस करते।
1: हाँ, सभी बिजनेस करते हैं। और हम गीता पाठी होने के कारण हम वहाँ फैक्ट्रियों में जहाँ हमारा व्यवसाय था तो बुधवार की छुट्टी रहती थी और वो छुट्टी रहने के कारण हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर में जाते थे। हमारे एक उसको भाई कहते जो हमारा बड़ा लीडर था, तो वो भाई कहते थे उसको, स्वाध्याय परिवार में भाई कहते थे। तो बहुत अच्छा था और हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हर बुधवार को वहाँ जाके गीता के बारे में प्रसार प्रसार करना, बताना, ये सब करते थे। लेकिन ऐसे में भक्तिभाव तो थी और हमें समाज में हमारा बहुत नामाचार भी था क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे और भगवान का नाम लेते थे तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं, देखो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में फिर एक समय ये हुआ, अच्छा लगता था लेकिन जब एक दिन में शाम को करीब 6-7 के बजाय होगा, मैं एक ऐसे जा रहा था तो वहाँ एक छोटा सा एक जिसको ब्रह्मा कुमारी इसकी पाठशाला कहते हैं, पाठशाला के रूप में वहाँ था, जहाँ हम रहते थे उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ लिखा था कि अभी दुनिया का परिवर्तन होगा और सत्ययुग आएगा, और ऐसे स्वस्तिक का चित्र बना हुआ बाहर में ऐसे बड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ ज्योतिषी वगैरह होंगे, तो मैं 7 बजा था तो जा रहा था, अंदर कुछ लोग बैठे थे, लाल लाइट लगी हुई थी और अंदर 30-40 भाई बहने होंगे और वो योग कर रहे लाल लाइट में, और बड़ा अच्छा। पहले ही जैसे मैं प्रवेश कर, और बहुत पुराना घर था, जैसे जर्जरी भूत के अवस्था में, लेकिन अंदर क्लास अच्छा चल रहा था।

0: और मैं भी पीछे बैठ गया। बैठ जाने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और लाल लाइट में से व्हाइट लाइट हो गई, और सामने एक भाई था जो बैठा था संदली पर, तो उन्होंने उठा तो सब जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। तो संदली पर जो भाई था, जिसका नाम गजानन भाई थे, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आप कहाँ से आए हो, जैसे नए कोई आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे भी पूछा कि आप क्या करते हो, किस लिए आए हो, क्या है, जो भी है। और मेरे को बोले आपको 5 मिनट थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मैं ये हमारा ये चित्र लगा है वो मैं, क्योंकि दीवारों में चित्र लगे थे जिसको ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में वो चित्र है वो सारा लगे हुए थे, तो वो बड़े व्यवस्थित लगा हुआ था, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर सर्व आत्माओं का पिता, उसके बाद झाड़, उसके बाद सीढ़ी, और इस तरह से लगा हुआ। तो मुझे वो समझाने लगे, तो पहला तो आत्मा, चलो आत्मा ठीक है, फिर परमात्मा का परिचय दिया, वो भी ठीक है, क्योंकि चित्र में स्पष्ट दिखता भी था और हम भी गीता पाठी होने के कारण वो सारी हमें समझ में आती थी बात। फिर आगे जाके ऐसे चलते चलते झाड़ का, ये सृष्टि का उत्थान पतन की कहानी, सीढ़ी में जो भारत कैसे ऊंचा था, बनता है, नीचा होता है, ये सारी बातें आई। फिर एक बहुत सुंदर चित्र हमारे मेरे मनपसंद का आया, जिसमें एक गीता के बारे में लिखा था, उसमें लिखा था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो जब ये बात आई तो हम गीता पाठी होने का मेरा ध्यान वहां गया, और उसमें बहुत सुंदर चित्र बताया हुआ कि एक परमात्मा की किरणें आ रही है, नीचे एक शक्ति दल खड़ा है, और प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ है, और ऐसे सामने में राक्षस जा रहे हैं इस तरह से। तो वो बड़े चाव से बताने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, ये तो हिंसक है। भगवान अगर हिंसक का ज्ञान देता है या समझ देता है तो फिर हिंसा करने वाले को तो कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे अपील की, भाई अहिंसक युद्ध। फिर उन्होंने सारी बातें कही कि जो हम मन से जो सोचते हैं, देखते हैं और जो करते हैं, जो विकृत मानसिकता को लिए हुए चलते हैं, इसको भी हिंसा कहते हैं। ये बात मुझे ज्यादा अपील करी, और मुझे तुरंत याद आया कि हम तो गीता पाठी है, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम एक घर चॉइस करते थे और वहाँ गीता ज्ञान करने जाते थे। तो एक तरह से हंसी की बात तो ये हुई कि समझ में आई कि मुख मेरा बगल में छुरी वाला काम हम करते थे, कि मन में हमारी कुछ विकृत भावना, क्योंकि हम यंग थे तो विकृत मानसिकता लेकर भगवान का मुखौटा लेकर हम ज्ञान देने जाते, ताकि लोग समाज में हमारा अच्छा नाम था। ओके, उसके बाद ये बात जैसे ही पकड़ में आई तो फिर मैंने फिर सारा समझा के 5 मिनट में बोले आप आओ 7 दिन का कोर्स करिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बोले कि आप आधा आधा घंटा भी आइए, ये हम सारा समझा देंगे। फिर मेरे को एक किताब दी उसने, उसमें उस टाइम वो 3-4 रुपये की वो किताब दी, पथ प्रदर्शन, जो ब्रह्मा कुमारी का बेसिक कोर्स की समझानी है उसमें, तो वो मुझे दिया। तो मैं फिर लेके गया घर, कि पढ़ाई तो करते थे, तो रात को जैसे ही उस किताब को मैंने लेके पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बात तो सही है। अब भूल कहाँ हो रही है, ये बात मन में गूंजती रही, अरे यार ये तो मेरा मन में अंदर एक है, बाहर एक है, ये बात बहुत खटकती रही। भगवान के नाम से मेरा पाप हो रहा, भगवान के नाम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे श्रापित करेंगे। तो ये बात रात को
1: क्यों लगा आपको?
0: मुझे इसलिए लगा क्योंकि भक्ति मार्ग में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थूल रूप में सब करते हैं, और स्थूल रूप में जैसे तिलक लगाया, थोड़ा सा अच्छे मीठा बोल बोला, तो लोगों को लगता है ये भक्ति भाव वाला आदमी है, तो लोगों की श्रद्धा होती है तो हमें आदर सत्कार से देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही फिर मैंने ये बात आई कि भाई ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये सारा अच्छे से फिर से पढ़ा, ऐसे 2-3 दिन पढ़ा, और पढ़ने में ये बात समझ निष्कर्ष तक पहुंचा कि नहीं, आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: मतलब इनसाइड आउट होना चाहिए, हाँ, जो अंदर है वही बाहर, अभी एक मुखौटा पहन करके नहीं।
0: मुखौटा पहनकर देने से तो खुद को भी धोखा है और समाज को भी धोखा है और एक अच्छा कर्तव्य नहीं मानेंगे। तो ये जो बातें आई सामने, उसके बाद मैंने स्टडी करके, कोर्स तो करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा व्यवसाय था तो सुबह सुबह फैक्ट्री खोलनी है और फिर शाम को लेट होते थे तो इस तरह से, और दिन में कॉलेज जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं। ये मन में अंदर ही से विचार आया और अंदर दृढ़ किया, नहीं अभी मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये जीना चाहिए। संस्कार थे भक्ति भाव के, तो फिर ये ज्ञान मिला और ज्ञान को फिर उसको श्रवण करने लगे और समझ में आया। समझने आया तो अब बड़ा एक ये ज्ञान ऐसा रियल में जीना जियो तो बड़ा चमत्कारिक है, जैसे जीवन एक मृदुभाषी जैसा हो जाता है, बहुत साइलेंटली चलना, अनावश्यक चीजों को अपने आप ही दरकिनार हो जाती है।
1: सो जिस तरीके से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से वही गीता पाठी भक्ति मार्ग में करते हुए भी आपको दोनों में अंतर समझ में आई, और प्रैक्टिकली लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली गीता क्या है वो आपको समझ में, तो गए तो आप अकेले, वो स्वस्तिक ने आपको अट्रैक्ट किया और ज्योतिष समझ करके गए। फिर जब आपकी घर में ये पता चला कि आप आश्रम में जाते हैं, तो फिर आपके भाई बहन, आपके परिवार वाले इसको स्वीकृति दी या फिर?
0: ये बड़ी कहानी है, बहुत मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं कहा न कि जैसे उसमें चलते थे तो समाज में हमारा बड़ा नाम और आदर थे और लोग हमें बड़े चाव से बड़े प्यार भी करते थे, सम्मान भी मिलता था। कहते हैं ना, जब दुनिया की जिस हवा चलती है उस तरफ चलते हो तो जमाना आपको साथ देता है, लेकिन जब खुद को जानने के खुद से चलने लगे तो जमाना सारा विरोध हो जाता है। बस वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटा। तो हम चलते थे लेकिन अब उस समय काल में ब्रह्मा कुमारी के सेवाएं इतनी ना होने के कारण मिस भ्रांतियां बहुत थी। तो और हम ये चलने लगे, रेगुलर मुरली सुनने लग गए, तो बाबा की जो मुरलियों बड़ी जादुई है, जादुई इन द सेंस बड़ी स्पष्ट है, जैसे कि दर्पण है, तो वो बहुत खिंचाव होता था। बाबा का क्लास और योग ना करे वो जैसे कि अंदर से जैसे बेचैनी होती थी, मतलब
1: परमात्मा को याद करना और उनके महावाक्यों को
0: महावाक्य सुने बिना मना बेचैनी। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें या तो शाम को क्लास होता है या तो सवेरे अर्ली अर्ली होता है, योग भी अर्ली अर्ली होता है। और हमारा भी समय था, वो भी कारखाना खोलना जो भी है व्यवसाय का, लेकिन बाबा की खींच ऐसी होती थी कि हम मुरली सुने बिना तो रह नहीं सकते थे। तो अब क्या करें, तो और ये जीवन में जब ऐसा धारणा हुई और चलते रह गए और पढ़ाई करते थे, तो मेरे जो दोस्त साथी थे तो उसके साथ भी बैठना उठना होता था, लेकिन वो लोग होटल में खाना फिर वो करना, मैं बोला मुझे भूख नहीं, मेरे पेट में ऐसे ऐसे मैं अवॉइड करता था। मन में ये था कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि परमात्मा मुरली में ये बताते थे कि अन्न वैसा मन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये बहुत स्पष्ट आता था। और करीब करीब इसी टॉपिक पर 10-10, 15-15 दिन वही मुरली की धारा चलती, इसलिए आप भगवान की सुने निश्चय हो गया। तो फिर
1: जी, तो अभी भी वो लोग आपको विरोध करते हैं या फिर वो सहयोगी है आपके?
0: विरोध तो बहुत हुआ, ये बात थोड़ी मैं अगर जी तो मैं बता दूं, तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो अभी ये ज्ञान में चलने से ये सारी नकारात्मक जो प्रवृत्ति है जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो कहीं कहीं घर वालों को ऐसा लगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया ऐसे करके। तो हमारा बड़ा भाई के साथ था, हमारे एक पिताजी तो गुजरात में रहते थे, फिर कभी आते थे कभी जाते, तो बड़े भाई ने हमारे पीछे CID लगाई थी।
1: अच्छा,
0: तो CID ये लगा दी कि उनको थोड़ा लगा कि थोड़ा ये हमारे अनुसार तो इनका जीवन नहीं दिख रहा है, बड़ा साइलेंट रहता है और अपने में मस्त रहता है। तो कहते हैं ना कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। तो उसी तरह से एक मान्यता होने के कारण उसका भी अच्छा स्नेह था, स्नेह इसीलिए कि कोई भी बड़ा है जो जहाँ हम गार्डियन है, वो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का इस तरह से कुछ हो जाना। तो उसने तहकीकात करने के लिए ऐसे लगा दिया 4-6 लोगों को और फिर ये सब चीजें। लेकिन वो सुबह सुबह मैं जाता था तो पता तो चल जाता था सुबह कहीं जा रहा है, तो पीछे

से कच्छ के साइड में जाओगे तो वहाँ हर गांव में लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का ही हम वंशज है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए देवी देवताओं, तो उस तरह से चलता था। तो फिर ये तो बदलाव आ गया, तो उन्होंने फिर मेरे को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन बाबा की ये बात मैंने वो जो हमें मुरली सुनाते थे उस भाई को बताई कि हमें ऐसा विरोध करते हैं और इस तरह से बात है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, मारपीट भी करते, छोटा थे और वो उसका हाथ, तो हमें जब वो मारते थे हमें बाबा की महावाक्य याद आता कि किसी का दोष नहीं हो सकता क्योंकि आपके पिताजी आपको बंधन है, तो उनका चश्मा जिस परंपरा से जिए उससे थोड़ा अलग दिखते हैं, तो उनको वो भाव से कि भाई इनका कल्याण ना हो, बड़ा हो के भाई इनका जीवन खराब ना हो, तो उस भाव से करते तो हमारे मन में वो मारते थे थोड़ा बहुत, तो हमें बुरा नहीं लगता था, कुछ बोल दिया थोड़ा अपशब्द कह दिया वो कर दिया तो मतलब वो तकलीफ नहीं होती थी। तो हमें वो बाबा कहते वो राम की भावना रखो, इनको पता नहीं हमें कौन मिला है, वो ज्ञान ऐसा जैसे कि हमें तो भगवान मिला है और हम भगवान को जान गए, ये तो अभी तक ये भक्ति मार, इस तरह से मन में आ जाता था और गुस्सा रिएक्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये बढ़ता गया। फिर हम जो हमारी समाज है जो पटेल कास्ट, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो घर में उठ के तो विघन बढ़ते गए, बहुत मारपीट तक आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सारे समाज में हमारी वॉच रखने की कि भाई ये तीनों को मिलने नहीं देना, तीन भाई थे तो आपको मेरे पूर्व में आपको आप जानते होंगे कि हम वसंत भाई करके थे जो संगम भवन में, वो भी नागपुर से थे, और ऐसे एक रामजी भाई करके थे, हम तीन कुमार निकले और बड़ा नशा था बाबा के ज्ञान के लिए। तो अब क्या करें, तो हमारे बीच में सबको एक अनाउंसमेंट कर दिया कि तीनों अगर मिलते हैं पढ़ाई के नाम से हम घर में नहीं सोने के बदले हम बाहर सोने लगे, मना फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में एक रूम होता था तो हम वहाँ सोते थे क्योंकि हमने बहाना बनाया कि हमें पढ़ाई करना है तो हम रात को पढ़ाई करते हैं तो हम वहाँ सोएंगे फिर सुबह आएंगे नाश्ता पानी। लेकिन हुआ क्या, बहुत वंडरफुल बात ये हुई कि हम पढ़ाई के नाम से जो भाई ने हमें गाइडेंस दिया था तो कि जो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको 2 से 5 योग करना तो तुम्हारा विघ्न सारे भगवान खत्म कर देंगे, ये भाई हमने गीता पाठशाला जो चलाते थे उन्होंने बताया। अब 2 से 5 योग करना है तो हमने ये बहाना बनाया कि हम घर में नहीं रहेंगे पढ़ाई के अर्थ, वो उनकी फैक्ट्री में रहता था, वो उनकी फैक्ट्री में ना मैं मेरी फैक्ट्री, ऐसे करके सुबह 2 से 5 योग स्टार्ट किया। और कहाँ करते थे, गीता पाठशाला, हम करीब 25 कुमार थे तो ऐसा उन्होंने 25 हाँ इसका विघ्न है तो योग करें तो हम करते थे। हमने लगातार 3 साल विदाउट फेल 2 से 5 योग। उस दौरान की बहुत अच्छी एक घटना घटी प्रत्यक्षता की कि तो फैक्ट्री में जहाँ हमारा माल आता है जो वुड प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री थी तो रात को गाड़ियाँ आती थी तो उसका कागज लेना होता है और सारा और वहाँ चौकीदार भी होते हैं तो मैं 2 बजे गाड़ी आई होंगी 2-3 बजे हम तो चले गए योग करने तो पीछे से जो गाड़ी आई तो मैंने कागज लिए नहीं तो सुबह जब हमारा बड़ा भाई जब ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में तो कह के भी वो कहाँ थे जो मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है तो वो तो रातों पढ़ाई करने जाता है हम जाते थे योग करने तो तीनों भाई वो अपने फैक्ट्री में वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। तो ऐसे करके फिर ये प्रत्यक्षता हुई और फिर जो हमारी सारे विरोधाभास और खलबली मच गई सारे और ये ऐसा है वैसा है तो फिर भी बाबा की जो आकर्षण थी कि मुरली मिस नहीं करना, मुरली के बिना खाना नहीं खाना, योग करना, इसी से तो मूछ बनेंगे और भगवान तुम्हें प्यार करेगा, ये सारी बातें मन में गूंजती रहती थी तो उसके कारण हम जाते थे। फिर एक दिन सुबह क्लास कर रहे तो मेरा पिता भाई आया, बड़े भाई, और बड़ी लकड़ी एक लेके आया और मैं पीछे थोड़ा लेट गया था, मैं हमेशा फर्स्ट जाता था लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो पीछे बैठा था और 35-40 भाई बहन और मुरली चल रही थी, उन्होंने आते आते ही पहले मैं बस बैठा था पीछे से थोड़ी सी लकड़ी लगाई और सामने भाई मुरली चला रहा था, वो चौकन हो गया तो सभी शांत हो गए, मुरली चलाना बंद हो गया, मेरे को मार रहा है

0: फिर घसीटते लेके जा रहा है, घसीटते खून निकल रहा है हाथ में से, मैंने थोड़ा सा उनको कि भाई ये चंगुल में फंस गया है, उनका ये प्यार उनको तो ये पता नहीं ना, तो फिर भी मतलब ठीक है। फिर हम
1: उन्होंने कभी आपसे ज्ञान सुनने समझने की कोशिश
0: उस टाइम नहीं की, क्योंकि उनको तो वही परंपरा से जिए थे तो वो उसे। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, फिर मैं चला गया, लेकिन फिर से हमें नहीं योग मिस नहीं करना, ये विघ्न अभी जाएगा, क्योंकि भगवान ने बोला 2 से 5 योग करते तो विघ्न चला। तो वो जो क्लास में जो भाई बहने थे वो कुछ नहीं बोले, योग में बैठ गए सब, वो मार रहे कर रहे छुड़ा रहे, कोई छुड़ा नहीं, और जैसे मुझे ठीक है नहीं आओ। तो इस तरह से मेरा आना हुआ, और फिर बाबा से योग लगा के हम ऊंच पद पाएंगे ये मन में नशा रहता था। तो 3 साल हमने योग किया, उसका परिणाम ये हुआ करीब हम 81 से 83-84 तक हमने ये योग किया। फिर ये सब प्रत्यक्षता होने लगी समाज में, फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, बाबा के बिना तो हम रह नहीं सकते। बाबा की पड़ी खींच, शाम को 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे तो कशिश होती थी कि नहीं सेंटर पे जाना चाहिए। सेंटर एक ही था नागपुर में, और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हम एक सीट पूर्व में रहते थे, सेंटर पश्चिम में था, तो पूरी सिटी क्रॉस करके जाना होता था। तो गुरुवार को जाते थे एनी हाउ। तो हम कहते हैं ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी की भाषा में ये कहते हैं कि बंधेले कुमार मना इसको विघ्न है, तो माँ बाप से छुट्टी नहीं है।
1: दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहानी बीच में क्यों रुक गई है, आगे क्या हुआ है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल है मन में जानने को लिए। लेकिन समय की सीमा है कि यहीं पर हम रुकना होगा, और आगे की कड़ी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या जिद था और क्यों उन्होंने इसी जीवन को जीने का ठान लिया है। जो जीवन आमतौर पर सोचते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता है, सांसारिक जीवन को त्यागना, सुख सुविधाओं को त्यागना और सिर्फ एक परमात्मा के प्यार में लीन होना, देश के लिए जीना या मानवता के लिए जीना कितना कठिन काम है, लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान लग रहा था और उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज को सहन करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जो अभी तक आपने सुना है गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन की कहानी को, कहां से उनको वो प्रेरणा मिली समर्पित होने का, और जब उन्होंने वो संकल्प लिया और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगे किस प्रकार की बाधाएं उनको सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 MHz पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल के छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाश्री जी।
0: थैंक यू दीदी।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
0: जी, थैंक यू। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का ज़माना भी है, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: जी,
1: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियां आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा होता है, और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
0: जी।
1: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज़्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
0: जी,
1: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
0: जी,
1: फोकस नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, लेकिन हमको उसको यूज करना है, जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
0: जी,
1: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
0: जी,
1: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके, पर आज ऐसा हो गया है
0: जी। तो ये सब यूज करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
1: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं. इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को. लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी.
0: जी,
1: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहाँ पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती है,
0: एक केंद्र पे,
1: केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको.
0: जी,
1: उसको फोकस कहते हैं. ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो.
0: ओके, तो
1: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना,
0: टेलीविजन
1: आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है.
0: जी जी, राइट.
1: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है.
0: राइट.
1: वही सिस्टम हमारे अंदर है. तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए.
0: जी,
1: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया. बट ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज ने को जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है.
0: जी,
1: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे.
0: जी,
1: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाएं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाएं. और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे.
0: जी, कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह पाते,
1: नहीं कर पाते.
0: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते.
1: ये चीज करना जरूरी है जब भी मेडिटेशन में भी बैठो. ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग. आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा. और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे.
0: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से.
1: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ. अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूं, मैं सब से फ्री हो गई हूं.
0: मन को हम ऐसे
1: समझाएं उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं कि ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
0: तो प्रेजेंट में आ जाओगे.
1: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे. जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना.
0: जी,
1: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे रूम में. तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा.
0: जी.
1: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा.
0: जी.
1: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं. ऐसे ही हर बात को, जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है, अब मैं प्रेजेंट में कहाँ पर हूँ और मुझे इसी के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूँ
0: जी,
1: हम अपने आप में ही फोकस है, मैं पॉइंट हूँ, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
0: जी।
1: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
0: जी,
1: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है,
0: बिल्कुल
1: अभी एक ही कार्य होना है, तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है।
0: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं।
1: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का, तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो, नामुमकिन नहीं है।
0: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
1: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले,
0: ओके,
1: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले भी जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
0: जी,
1: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
0: जी।
1: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
0: ओके,
1: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है, ये हम भूल गए हैं। भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है, बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
0: जी,
1: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए। फिजिकली जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है, कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
0: जी,
1: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
0: जी।
1: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
0: स्पार्क से शुरू होती है,
1: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
0: राइट जी, तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आएं?
1: जी, तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
0: जी,
1: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
0: जी,
1: या माय इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
0: जी,
1: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में, लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
0: जी, पढ़ाई के बीच में 10 बार।
1: उसका इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है,
0: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
1: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस, और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं, मेरी बुद्धि अभी ग्रास्प करने के लिए तैयार है, तो वो बुद्धि कैच कर लेती है और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है, कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
0: जी,
1: वही डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं
0: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो, ये आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग? मान लीजिए किसी ने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं, लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवर थिंकिंग करने लगता है
1: जी। और ओवर थिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
0: जी।
1: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
0: जी।
1: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
0: जी।
1: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे, चेक करो क्या मेरे ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
0: जी,
1: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
0: जी। तो ये
1: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
0: जी।
1: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते हैं ना
0: जी,
1: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवरथिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है
0: जी। तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
1: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
0: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है साथ साथ में दो चार चीज़ें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकते हैं?
1: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा है,
0: मतलब बैलेंस करके चल।
1: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ। दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। वो अलग बात है, माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हो टू मेक द एटमोस्फियर लाइट और व्हाटएवर।
0: जी,
1: है ना, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है वो मन में नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है।
0: जी जी,
1: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्क।
0: ओके,
1: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी। बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है
0: एंड
1: ही फाइंड्स टाइम,
0: एक टाइम में एक ही चीज करना है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम
1: depends,
0: है
1: डिपेंड्स। अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट।
0: ओके,
1: आपके टैलेंट पर है।
0: जी, तो ये चेक करना है कि हरेक में कैसे कर रहे हो।
1: पोटेंशियल तो हरेक में होता है, आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में।
0: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
1: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है।
0: ओके,
1: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज। बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
0: वो अनुभव
1: बना रहता है। हाँ, फिर अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है, परिस्थिति परिस्थिति है
0: जी,
1: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है
0: जी। दीदी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
1: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है। लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं
0: जी,
1: और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे
0: जी,
1: फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, यू नो कईयों के कई मेथड्स होते हैं। तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं। तो ये लाइट होने के समय में वो ओवर थिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवर थिंकिंग नहीं होता है, देखा हुआ है, उसका अनुभव है, इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा
0: जी,
1: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए। माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है। वो कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है, और कोई क्लास के लिए आता है, तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला, जाना तो है क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें कर करके अपने को हल्का कर दो, गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं, वो उसकी चिंता मत करो, और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है, आप जाओ वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए उल्टा। यू नो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस,
0: क्योंकि आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो,
1: नहीं,
0: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो मिलेगी.
1: हाँ जरूर. या आप साइलेंस में चले गए, या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में और फिर जाओ, तो आप एक नए व्यक्ति ही हो समझो पास्ट से.
0: बिल्कुल. तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान के फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जाकर के अपनी बात कह के जा सकते हैं. जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना.
1: ओके. शुरू तो कम समय से ही होता है, और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा वो इम्पोर्टेंट है ना. तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
0: जी.
1: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है. तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया पर आपने अपना एक नेचर बना दिया. फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना तो आपका नहीं होता. वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है. दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना.
0: ओके. आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे.
1: हाँ जी, नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया. योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
0: जी, राइट.
1: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है. तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा. तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
0: फ्लेक्सिबिलिटी
1: भी लाता है, और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी, और देखता है कि कितना फोकस रहा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है.
1: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था. इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
0: जी.
1: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं. तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की, कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है. इसीलिए वो लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
0: जी.
1: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज, और छोटे छोटे बनाते हैं. क्यों छोटे छोटे, अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग का है
0: जी.
1: जितना हमारा ओवरथिंकिंग बढ़ता है ना तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है.
0: ओके. तो मूल कारण ओवरथिंकिंग.
1: हाँ जी. इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट. आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
0: जी.
1: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है.
0: क्योंकि आजकल लोग दोनों एंजॉय देखते हैं.
1: यू कैन एंजॉय बोथ. पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते.
0: ये सबके लिए लागू नहीं होता.
1: हाँ सबके लिए लागू नहीं होता. बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें.
0: राइट जी.
1: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
0: जी,
1: है ना. जो भी है आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
0: जी. तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है.
1: हाँ
0: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते.
1: और प्रैक्टिस केवल नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं हो.
0: हाँ तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको.
1: ओवरथिंकिंग जिसमें कम होगा ना वो दोनों एंजॉय करेगा
0: जी.
1: जिसमें ओवर थिंकिंग ज्यादा है ना तो पेशेंस कम है.
0: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में.
1: जी,
0: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है.
1: धीरज कम हो रहा है.
0: धीरज कम हो रहा है. तो
1: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है. बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए कोई गोल गोल बात भी करेगा ना वो भी नहीं पसंद करता है. डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं.
0: डायरेक्ट बात करो,
1: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की.
0: जी,
1: अभी कोई कह रहा था
0: जी
1: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है लेकिन स्लो है, माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है फिर उसकी असर होती है तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर. ऐसे होता है,
0: होता है. तो अब हम शारीरिक बात करते हैं. क्या हमारी जो दिनचर्या है, स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
1: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो. तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं. पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते. अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है, उसमें आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो या आप बर्डन फील करते हो.
0: तो जितना
1: तो
0: हो सके
1: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो.
0: जी, तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
1: हाँ, खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड. मना जो खाना खाएंगे, जहाँ खाएंगे, जितना खाएंगे, जैसा खाएंगे, जिस रीति से खाएंगे, तो उसका असर मन पर पड़ता है. तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है.
0: जी,
1: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
0: टाइम पर
1: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर.
0: जी, और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
1: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है. पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे. पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना, कितने घंटे, 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है.
0: जी.
1: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी? ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है.
0: जी.
1: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए, या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो. मीन्स यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी. जो अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा. बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है.
0: तो बीच बीच में आपको उठ के
1: या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो, या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा.
0: जी, जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है.
1: जी.
0: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा.
1: जी.
0: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की जरूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
1: जी।
0: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
1: जी,
0: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
1: है। हाँ हाँ।
0: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें।
1: राइट। इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है, कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा तो कम होगा ना,
0: कम होगा।
1: ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग द ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदले कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवरसेल्व्स मोर इफेक्टिव
0: जी,
1: है ना।
0: तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
1: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा
0: क्योंकि
1: जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा।
0: जी जी बिल्कुल। तो एक्सेप्ट करना
1: तो बहुत जरूरी है कि भाई एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल।
0: भले वो
1: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती हूँ
0: और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा नेचर
1: हाँ,
0: अगर कि मैं, मुझे बात करने नहीं आती है
1: जी, जी कोई बात नहीं,
0: वो
1: कंपेयर किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना है।
0: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
1: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो एक मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है, बैलेंस करने के लिए।
0: अगर बाकी आप करने
1: कि अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो न कस्टमर पर इफेक्टिव होगा न आपको अच्छा लगेगा,
0: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
1: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना। अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें।
1: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
0: ओके जी।
1: कोई चुप हो जाते हैं
0: लेकिन अंदर चलता रहता है चीज़ें।
1: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं। ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना। तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूं और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे? नेगेटिव, है ना। तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे
0: जी। ओके।
1: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी, नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो। जी. है ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है. इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है. मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए, ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं.
0: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
1: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है.
0: धीरे धीरे
1: धीरे धीरे स्टार्ट होता है. कोई भी चीज ABCD से ही होता है. तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा.
0: लेकिन जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
1: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना, तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
0: जी.
1: है ना. और कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है. कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है. आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है. तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
0: जी.
1: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया. नहीं, अलग अलग रीति से,
0: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए.
1: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना?
0: घर के लिए भी किया.
1: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा. उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा. पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
0: जी,
1: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा. इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
0: तो
1: मैंने अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है. और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं. नहीं, पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है. इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. समझे ना?
0: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना.
1: जी जी,
0: ओके. तो कई बार हम गलत जगह पे भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
1: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है. है ना? तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह. आप ऐसा ऑप्शन दो
0: जी,
1: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा. कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
0: जी.
1: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
0: जी.
1: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है.
0: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
1: गलत बात बिल्कुल नहीं है. तब कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता
0: राइट. और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
1: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
0: हम
1: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
0: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए, अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए.
1: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है. बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
0: जी,
1: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो. पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
0: पॉज होना
1: जरूरी है.
0: ओके.
1: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है. ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
0: जी.
1: जैसे कोई, समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए, तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
0: जी.
1: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
0: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
1: और अपने को एनर्जाइज कर सको।
0: जी।
1: बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया, ब्रेक नहीं ली लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की।
0: जी,
1: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको।
0: जी,
1: तो ब्रेक अच्छे है।
0: जी बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
1: देखिए, उधर आता है मोबाइल में, डू यू वॉन्ट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट? तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं?
0: जी।
1: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं?
0: जी।
1: तो इतना तो पहला डिसीशन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
0: यस, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
1: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
0: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
1: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है,

0: होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
1: जी।
0: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
1: राइट। तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
0: एक तो गॉसिप,
1: ओके,
0: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
1: और डिलीट क्या करना चाहिए?
0: वरना यही जो है
1: ये नोटिफिकेशन हाँ, बंद है और इसी को डिलीट भी करना है।
0: फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो, पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे या तो डिलीट करते जाए
1: वो एप्लीकेशन ही ना रहे।
0: हाँ हाँ, क्योंकि वो हाँ, तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में। और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
1: जी,
0: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
1: जी।
0: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा, तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे, उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
1: क्या करना है क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था, कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा। और एंड में जब से वो 60 साल का हुआ तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
1: जी।
0: तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना। तो ऐसे कई लोग फोकस्ड है और उन्होंने हमें सिखाया है। ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
1: जी,
0: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे।
1: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है,
0: करना चाहिए,
1: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ, मुझे क्या करना है,
0: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए। कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा, और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
1: जी,
0: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
1: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है?
0: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माय ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
1: ओके,
0: आई एम हियर टू रीच माय डेस्टिनेशन विच इज क्रिएटेड फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
1: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरे जीवन

0: यात्रा को देखेंगे और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है। तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो जितनी भी नहीं काम की चीजें होती है वो निकाल देता है, एंड एट दी एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है। तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या रहेगा, आपका प्योर फोकस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओम श्री।
1: थैंक यू सो मच दीदी, आज हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जब जब आप शांति में आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद आपको।
1: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 94-1415-1415 पर। नमस्ते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास गेस्ट गिरिजा जी है। बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा जी, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पर। और आज हम लोग कोशिश करेंगे आपसे कुछ नई बातें जो है सीखने का, और जैसे कि टाइटल ही है लाइफ स्किल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आज निषाद भी हैं जो खास एक गीत आपको प्रेजेंट करने वाले हैं, और अर्चना भी है। तो स्वागत है आप दोनों का भी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। निशांत, मैं चाहूंगा कि गिरिजा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत।
2: श्योर, थैंक यू।
3: हम

0: थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में आप कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हमें।
2: ओके, आई होप इट इज ओके इफ आई टॉक इन इंग्लिश।
1: नो प्रॉब्लम।
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो राइट नाउ आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग फॉर द एजुकेशन स्पेस। आई हैव अबाउट 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बट last 7 to 8 years I have been in the education space because that's where my passion is. Also education industry mein, you can make a difference to so many children's life. You can actually carve a niche in a child's life. So at present I'm handling some projects like for the government. I'm handling about 700 odd balwadis jahan pe hum bachchon ko right to education dete hain. So I'm handling about 700 balwadis which is under 7 castes. About 1400 teachers, 20,000 children. What we're doing over here is trying to give children an opportunity to make a difference in their life.
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और सरकार का जो है विशेष रूप से इस पे फोकस है कि बालवाड़ी जो है वो अच्छी तरह से रन करे ताकि बच्चों का एजुकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे चल के ट्रैक पे चले। तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बताया हमें। और अब जैसे कि हम लोग टॉपिक जो है आपका सेल्फ रेगुलेशन के, ये टॉपिक क्यों चुना, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो थोड़ा सा।
2: ओके, सो ऑल माय लाइफ आई हैव रियलाइज्ड दैट यू नो जस्ट एजुकेशन, जस्ट गेटिंग अ सर्टिफिकेट यू नो एंड हैविंग अ डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री डज नॉट रियली हेल्प अस इन लाइफ। टू लिव लाइफ वेल व्हाट वी नीड टू हैव इज गुड लाइफ स्किल्स। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट गुड लाइफ स्किल्स, वी मस्ट नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। लोगों के साथ हम लोगों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं, लोगों के साथ कैसे चल सकते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर, हाउ डू वी मैनेज आवर behavior. These are something that has always been my passion. Human behavior is something that was always of my interest. And so I decided to skill myself, certify myself. I've also been interested in the workings of a human brain. Human brain is such a beautiful thing that God has given us, gifted us. We can think well or we can think badly. But with self-regulation skills, what happens is that hum apne emotions ko manage kar sakte hain, balance kar sakte hain. और ये सब करते हुए हम अपने वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। सो आई फील के स्कूल्स डू नॉट टीच चिल्ड्रन सेल्फ रेगुलेशन, एंड आई ऑल्सो फील समहाउ सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स इज नॉट समथिंग दैट पेरेंट्स आर एबल टू मैनेज ईदर, एंड हेंस माय इंटरेस्ट इन न्यूरोसाइंस एंड द वर्किंग्स ऑफ द ब्रेन टुवर्ड्स सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, बिकॉज आई फील दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ।
1: जी गिरिजा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि ये टॉपिक क्यों चुना, इसके पीछे जो है। हम लोग कई बार बच्चों को स्कूल भेजते हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ाती भी हैं और बच्चों को अच्छी तरह से खिलाना पिलाना एक पालनहार होते हुए भी कहीं ना कहीं वो चीजें इन फ्यूचर में बच्चों के अंदर वो स्किल्स या जो चीजें चाहिए जो उसका व्यक्तित्व होना चाहिए वो नहीं दिखाई। 100 बच्चे जो है, 100 से ज्यादा बहुत सारे बच्चे जो है एक एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो मोरालिटी कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम सोचते मेरा काम हो जाए फिर देखा जाए। कहाँ ना कहाँ हम लोग इस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं और अपना काम को करके आगे निकल, तो थोड़ा सा वो चीजें कहीं ना कहीं मॉरलिटी का जो है ना लैकिंग दिखाई देता है हमारी चीज़। तो नेचुरली हमें फिर से बात करनी पड़ेगी कि सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स क्या है, तो शायद इससे वो एक फोकस हो जाएगा कि हम लोगों को ये भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ जीना या फिर कुछ चीजों को जमा करके रखना ही हमारा मकसद नहीं है। लाइफ सबके साथ जीने का और सबको सहयोग देके आगे बढ़ने का ये इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे स्किल्स जो हम लोग भोले भट के उन चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे हमको समझ में आ जाता है व्हेन वी टॉक, अगर आपको मैं बोलूं या मैं किसी और से भी बात करूंगा तो व्हेन वी कम ऑन द डायस वी कैन टॉक लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई कैच द ट्रेन आई थिंक पहले मैं चढ़ूं।
2: या
1: तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो टाइम पे जहाँ जरूरत है वैल्यूज की, अब मुझे बोलने में एक घंटा अच्छी तरह से बात चलिए थोड़ी टाइम बीइंग के लिए ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वेरी गुड ओके, लेकिन क्या मैं ट्रेन चढ़ते वक्त मैं किसी बुजुर्ग अगर मेरे बाजू में खड़ा है तो उसको चढ़ा के फिर मैं चढ़ू, ये चीज चीजें आ जाती है क्या, अगर वो चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर से वापस स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा या जो सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स है उसके ऊपर काम। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब विषय को लेकर बात करेंगे। व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन जी आपके हिसाब से?
2: ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू मी यू नो सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल रेगुलेशन। या सो वॉट एग्जैक्टली इज इमोशनल रेगुलेशन देन? सो इमोशनल रेगुलेशन इज द अबिलिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज वन्स थॉट्स, वन्स फीलिंग्स, एनर्जी स्टेट एंड वन्स बिहेवियर इन अ मैनर दैट इज एक्सेप्टेबल एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स सच एज वेल बीइंग, लविंग रिलेशनशिप एंड ऑल्सो लर्निंग। सो इफ आई ट्राई टू ब्रेक यू नो वट एवर आई सेड जस्ट नाउ इन टू वेरी सिंपल टर्म्स, सेल्फ रेगुलेशन अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आर बिहेवियर, मैनेज आर बिहेवियर, अंडरस्टैंड आर फीलिंग, वॉट आर वी फीलिंग, मैनेज दोज फीलिंग्स, अंडरस्टैंड द रिएक्शन टू दोज फीलिंग्स, ऑल्सो मैनेज द रिएक्शंस टू द फीलिंग्स विच वी टर्म एज रिस्पॉन्स, एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस, व्हेन आई एम टॉकिंग सिचुएशंस, अंडरस्टैंड यू नो वॉट इज गोइंग ऑन विद इन अस। So an awareness of you know how I'm feeling, also about you know situations around us. Am I aware of what's going on around me? So what exactly is happening here is that there is a stimuli from the environment, right? Lot of things happen, you know, in the environment. When we are in a self-regulated mode, we are able to make sense of the stimuli, which is internal. So how do we make sense of a stimuli? Primarily, cognitively. Now, when I'm saying cognitively, what do I mean? Am I able to understand what is going on around me? Then also, if I am a self-regulated person, I am able to make sense of the stimuli emotionally. When I'm saying emotionally, am I able to feel it? Am I able to sense it? So once my brain and my heart, my feelings and my understanding is in order, then I'm able to choose appropriate coping mechanisms. This is also internal. So if I'm able to choose appropriate coping mechanisms, iska matlab, you know, I have a balancing act. I'm able to understand what is going on around me, what is happening to me, and I'm able to balance it out when I'm acting out. Now, one is able to do all this, we say that the person is emotionally regulated, or rather self-regulated, or even emotionally literate. The new terminology that is there in neuroscience is emotionally literate. So self-regulation is just one part of you know being emotionally literate. Now if I have to further decode self-regulation, then I would say then it is that, am I having the ability to keep my emotions in check? Can I manage it, balance it? Do I have the capability to resist impulsive behavior that may worsen the situation for self and for others? If I am in a bad scenario, do I have the ability to cheer myself when I'm feeling low, when I'm feeling down? You know, emotions, we have a flexible range of emotions. Am I able to behave in an appropriate manner? Do I have the understanding of what's happening in the environment and you know the situations around me? So this is primarily what self-regulation does. So I'm able to think in a balanced manner, feel in a balanced manner about a stimuli that happened, give a balanced appropriate response, and manage myself, situation and others around me. So this is self-regulation skills.
1: जी जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको स्पष्ट किया है कि कैसे हम लोग सेल्फ रेगुलेशन की बात अगर समझ आ जाए तो समझने की जरूरत है। कई बार कुछ लोग वो चीजें को करते हैं और हम नहीं करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की जरूरत है। अगर कोई कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन चीजों को याद करके

0: to the needs of the child. We must allow the child to talk about their feeling. We should ask, how are you feeling? What are you feeling? And most importantly, when the child is talking and explaining about his or her feelings, it's important for us to listen to them about their feelings. They're trying to tell us something. So as a parent, as an adult, it is very important that we sit down with them, give them time, and listen to their feelings. Accept the child as he or she is. Support the child, show empathy, try to validate the child's feelings by being patient. Kindly do not ignore or dismiss or discourage or rather even punish or react negatively when a child is going through difficult emotions. The child is going through difficult emotions, he or she is not able to understand, and hence he or she is reacting. But if we are able to be warm, calm, accept, listen, support, empathize, that will pass for the child. So if we want to improve self-regulation in our children, we need to be a good role model. We need to live with integrity. We need to practice what we preach. We need to create a very trusting environment. We need to live in alignment with our values. We need to consider consequences. We need to check, do we give in to bad behavior? Do we
1: जी
0: reflect? Do we accept mistakes? Do we correct ourselves? How open are we? Is our mannerisms positive? Do we adapt to change? Are we calm in the storm? How do we manage our pressure? Do we keep our cool? Do we practice relaxation methods? So it's very important for us as adults first to identify our triggers. We need to be aware. We need to be aware of our, triggers and our reaction and manage difficult situations. And we need to know how to balance it out. So it's all about how a parent or an adult or a caregiver deals with himself or herself. If we are able to do that, then we will be able to be patient with our child. And the child learns to be patient when he is dealing with emotions of a similar sort when as he grows up.
1: जी जी गिरिजा जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दी हैं कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कराने के लिए हमें जो है काफी चीजें जो है देखनी पड़ेगी और खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या मेरे पास वो वैल्यूज है जो मैं सिखा रहा हूँ? अगर हम लोग उन चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो बच्चे देख के ही समझ जाएंगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उन चीजों को बोल रहे हैं और कम हम ऐसे नहीं कर रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को वो वैल्यूज को अपनी लाइफ में ला। तो इसीलिए हमें जो है जब भी हम लोग सिखाते पढ़ाते इवन बच्चों के सामने हमारा वो जिस तरह से हम लोग बातें बता रहे हैं वो चीजें उनको दिखाई भी देना चाहिए। अदरवाइज बोलने में और करने में अगर डिफरेंस है तो वो चीजें एक्सेप्ट नहीं होता। और बड़े अच्छे तरह से आपने बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और ट्रिगर्स क्या है वो भी आपने बताया। और नेचुरली हम सभी को जो है जब हम लोग कुछ चीजें बताते हैं तो उन्हें अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करके ही बताने की जरूरत होती है। और वो चीजें अगर हम लोग एक्टिविटीज में आते हैं तो बच्चे वो एक्टिविटीज दे के जल्दी से कैचअप करते हैं, इसलिए वो एक्टिविटीज में भी हमारे पास जो बताते हैं वही चीजें उनको दिखाई दे एक्शन। तो चलिए दोस्तों, वक्त और इजाजत नहीं देता, नहीं तो और भी हम लोग गिरिजा जी से बात करते हैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे नेक्स्ट एक सेशन में कर लेंगे कभी। और कुछ मैसेजेस आए हैं मैं जरूर बताना चाहूंगा। मानसी जी लिखते हैं, आई एम ऑल्सो प्री स्कूल टीचर, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन वर्ड्स। जी मिनल जी लिखते हैं, आर्गुमेंट्स एंड दिस आर्गुमेंट्स हैज ए डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड एंड मेक्स हिम फील अनसिक्योर एंड इमोशनली नर्वस। तो इसीलिए हमें जो है वो आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहिए। शिवा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है कि आई एम ऑल्सो टीचर प्री टीचर, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर नाइस गाइडेंस, नाइस टॉपिक एक्सप्लेनेशन। लीजा जी, योर टॉक इज एन आई ओपनिंग टू द पेरेंट्स, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको गिरिजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अर्चना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स क्या है, इसको समझने की कोशिश की, पूरा बचत किया है हमने। आशा करता हूँ आप उन चीजों को हम जो बताना चाहते हैं वो समझ गए। तो अगर आप स्कूल टीचर हैं तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा कि हमें इन चीजों पर काम करना। तो स्कूल टीचर ही नहीं, सारे समाज में जितने भी लोग हैं सबको ये जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स है, परिवार के लोग हैं, तो बच्चे उन्हें देखेंगे, तो जो जिन जिन चीजों को बच्चा देखता है उससे वो चीजें उसको मिलनी चाहिए, और जो मिलेगा वो सीख लेगा, जो देखेगा वो करेगा। तो वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट कि हम भी वो चीजें बच्चों को दे सके, ऐसा अपना करेक्टर, अपना जो स्किल्स है डेवलप रहे, हमारे ऐसे स्किल्स होने चाहिए। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से ढेर सारी खुशियां, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: मुझे नहीं जाना 15 अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों, पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय।

जो भी तेरे दर आया झुकने जो सो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आ

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया।

सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितने

मरम्मत मुकदर की कर दो मौला। मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह जन्मदिन लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझु करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है।

जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो म्हारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो चलो जल्दी से मीना से मिलते हैं। वो देखो मीना अपनी सहेली मिली के घर में पकड़न पकड़ाई खेल रही है।
1: मीना अब तुम्हारी बारी।
2: मिली मिली
1: बाबा मैं यहाँ हूँ मीना के साथ।
2: अच्छा अच्छा जल्दी से मेरी नई कमीज ले आ।
1: ये लीजिए बाबा आपकी नई कमीज। कहीं जा रहे हैं आप क्या?
3: हाँ मिली, सरपंच जी के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और सरपंच जी उसे अस्पताल लेकर गए हैं।
4: ओहो ये तो बहुत दुख की बात है चाचा जी।
3: हाँ मीना दुख की बात तो है। ऊपर से साथ वाले गांव माधोपुर के नए सरपंच जी आज हमारे गांव में आने वाले हैं और उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी अब मुझे दे दी गई है। मिली मैं दीपक और पाशा को लेकर जा रहा हूँ बस स्टैंड नए सरपंच जी को लेने।
1: बाबा मैं भी चलूँ आपके साथ?
3: नहीं नहीं तेरी माँ तो तेरी नानी के यहाँ गई हुई है, तू मेरे साथ चलेगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा?
1: दीपक भैया रुक जाएंगे।
3: कहा ना दीपक मेरे साथ जा रहा है, तू घर पर ही रुक। और हाँ नए सरपंच जी के लिए चाय नाश्ता बना के रखना, सबसे पहले उन्हें अपने घर ही लेकर आऊंगा।
5: बाबा
3: आओ दीपक बेटा, पाशा कहाँ है?
5: बाबा पाशा तो अपने बाबूजी के साथ बाजार गया हुआ है, आप कहें तो किसी और बच्चे को।
3: नहीं अब इतना समय नहीं है।
5: बाबा क्यों ना हम मीना को अपने साथ।
3: नहीं नहीं ये लड़कियों के काम नहीं है, पहले ही देर हो रही है, अब बाहर जाके किसे ढूंढे, मीना को ही लिए चलते हैं। दीपक बेटा वैसे कह तो तू ठीक ही रहा है, मीना
4: जी चाचा जी
3: तुम चलो हमारे साथ।
4: कहाँ चाचा जी?
3: अरे भाई पंचों की यही राय थी कि गांव के दो बच्चे फूल माला पहना के माधोपुर के सरपंच जी का स्वागत करेंगे, चलो अब।
4: ठीक है चाचा जी चलिए।
0: मिली के बाबा दीपक और मीना को लेके बस स्टैंड पे पहुँचे।
3: दीपक बेटा यहाँ तो बहुत भीड़ है, लगता है माधोपुर से आने वाली बस आके चली भी गई। अब इतने लोगों में कहाँ ढूंढे सरपंच जी को? वो देख मुझे तो वो पीले कुर्ते वाले भाई साहब लग रहे हैं सरपंच जी।
6: जरा सुनिए।
3: जी कहिए।
6: मेरा नाम निरुपमा है।
3: तो हम क्या करें जी?
6: क्या आपको यहाँ के सरपंच जी ने भेजा है?
3: जी हाँ लेकिन उससे आपको क्या मतलब?
6: दरअसल मैं वो।
3: देखिए बहन जी हमारे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, हम यहाँ माधोपुर के सरपंच जी का स्वागत करने आए हैं।
6: मैं ही हूँ माधोपुर की सरपंच।
3: आप सरपंच?
4: सरपंच जी हमारे गांव में आपका स्वागत है।
6: अरे वाह इतनी सुंदर फूल माला, क्या नाम है तुम्हारा?
4: जी मीना।
7: मीना चाचा जी को आया पसीना।
0: मिली के बाबा को तो सचमुच पसीना आ गया था। खैर माधोपुर की सरपंच मीना और दीपक के साथ बातें करती हुई गांव की तरफ चली। मिली के बाबा पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे।
6: दीपक अपनी बहन मिली को भी ले आते तुम अपने साथ?
4: सरपंच जी मिली तो आना चाहती थी लेकिन।
5: अरे मीना अगर मिली हमारे साथ आती तो घर पर रुककर साफ सफाई कौन करता, चाय नाश्ता कौन बनाता?
6: ऐसा क्यों दीपक, तुम बड़े भाई हो मिली के, उन सब कामों में तुम भी तो उसका हाथ बटा सकते थे ना।
5: ये साफ सफाई करना चाय नाश्ता बनाना कोई लड़कों के काम थोड़ी होते हैं।
6: ये तुमसे किसने कहा दीपक? पता है जब मैं और मेरा भाई तुम्हारे जितने थे तब हम दोनों मिलके घर का सारा काम किया करते थे।
4: सरपंच जी मेरा भाई राजू भी घर के कामों में मेरी बहुत मदद करता है।
7: बहुत मदद करता है, बस कभी कभी लड़ता है।
6: पता है बच्चों मेरे बाबूजी कहते थे निरुपमा बेटी कभी ये मत सोचना कि अरे ये तो लड़कों का काम है या फिर अरे ये काम तो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की कोई किसी से कम नहीं और दोनों एक से काम कर सकते हैं।
4: जैसे आपने सरपंच बनने का काम कर दिखाया।
6: हाँ मीना क्योंकि मुझे और मेरे भाई को बचपन से यही सिखाया गया था कि लड़के हों या लड़कियाँ वो बड़े होकर जो बनना चाहें बन सकते हैं, क्योंकि दोनों को कोई भी काम करने के बराबर अधिकार हैं।
0: और जब नई सरपंच जी मिली के घर पहुँची।
8: अरे अपनी मुर्गियों को संभाल कर नहीं रख सकते?
9: अरे कैसी बात कर रहे हैं आप,
8: सारे टमाटर का सत्यानाश कर दिया।
9: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
8: अरे झूठ बोलते हो तुम।
9: मुर्गियाँ मुर्गियाँ इंसान थोड़ी है, अब कैसे समझाऊं उनको।
3: अरे भाई ये क्या मजमा लगाया हुआ है मेरे घर के बाहर, क्यों भाई चिरंजी क्या बात है, क्यों लड़ रहा है भोला काका से?
9: मिली के बाबा हम पंचायत घर जा रहे हैं, हमारा फैसला अब सरपंच जी ही करवाएंगे।
3: सरपंच जी तो अपने बेटे को लेकर अस्पताल गए हैं।
4: भोला काका चिरंजी चाचा ये माधोपुर गांव के सरपंच जी हैं। सरपंच जी, आप कर दीजिए ना इनका फैसला।
6: हाँ हाँ मीना, भोला काका आप बताइए क्या बात है।
10: सरपंच जी, इस चिरौंजी की मुर्गियों ने मेरे खेत में घुसकर सारे टमाटरों का सत्यानाश कर दिया।
6: क्या ये सच है चिरौंजी भैया?
9: सरपंच जी, अब मुर्गियों का क्या, कहीं भी पहुंच जाती है।
6: लेकिन मुर्गियां हैं तो तुम्हारी ही ना?
9: अजी मेरी कहां, अंडों से निकली थी वो तो।
6: लेकिन मुर्गियां रहती तो तुम्हारे साथ ही है ना?
9: अजी मैं जबरदस्ती थोड़ी ही रखता हूँ उनको अपने पास। मुर्गियां हैं, जहाँ दिल किया पहुँच गई रहने।
6: इसका मतलब चिरौंजी भैया, इन मुर्गियों की गलती का जुर्माना तुम नहीं भरोगे?
9: मैं क्यों भरूंगा जी जुर्माना, मुर्गियों की गलती है वही भरेंगी जुर्माना भी।
6: तो ठीक है, हो गया फैसला, अपनी गलती का जुर्माना उन मुर्गियों को ही भरना होगा।
10: सरपंच जी, भला मुर्गियां जुर्माना कैसे भरेंगी?
6: भोला काका, आज से ये मुर्गियां जितने भी अंडे देंगी उन सब पे आपका अधिकार होगा। मतलब ये मुर्गियां आपको अपने अंडे देके जुर्माना भरेंगी। क्यों चिरौंजी भैया, ठीक कहा ना मैंने?
9: मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। भोला काका का जो भी नुकसान हुआ है ना, मैं भरने के लिए तैयार हूँ।
4: वाह सरपंच जी, क्या बढ़िया फैसला किया आपने।
3: सरपंच जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं अब तक यही समझता था कि लड़कियों को सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, लेकिन आज मुझे पता चला कि लड़कियां बड़े से बड़ा काम भी कर सकती हैं। जैसे हमारे गांव की टीचर बहन जी, नर्स बहन जी, आंगनवाड़ी बहन जी, आशा बहन जी और आप
6: और मीना।
3: चलिए अंदर चल के चाय पीते हैं। दीपक बेटा, तुम जल्दी से रसोई में जाके चाय नाश्ता बनाने में मिली का हाथ बटाओ।
5: जी पिताजी। सरपंच जी, आज से मैं घर के हर काम में माँ और मिली का खूब हाथ बटाऊंगा।
0: भाई वाह, नई सरपंच जी ने तो दिखा दिया कि लड़के हो या लड़कियाँ, कोई भी किसी से कम नहीं। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
4: दोनों ही है एक बराबर, दोनों में एक सदम।
7: लड़के हो या लड़कियाँ, कोई नहीं किसी से कम।
0: भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना तो बहुत मजेदार था, और अब समय है खेलने का।
1: बच्चों तैयार होना खेलने के लिए?
2: जी जी।
1: ठीक है, आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार शहरों के नाम बताऊंगी। उन चारों में से एक शहर ऐसा है जो बाकी तीन शहरों से किसी खास वजह से अलग है। बस तुम्हें बताना है उसी अलग शहर का नाम। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी जी।
1: वो चार शहर हैं गोरखपुर, रायपुर, कानपुर और सहारनपुर। अब बताओ कौन सा शहर बीच में छुपा हुआ है? सोचो सोचो, गोरखपुर, रायपुर, कानपुर या सहारनपुर?
3: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ दीपू बताओ।
3: कानपुर।
1: वो क्यों दीपू?
3: क्योंकि कानपुर में मेरे मामा जी रहते हैं।
1: नहीं दीपू, कानपुर गलत जवाब है। बच्चों कौन बताएगा सही जवाब?
4: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ मिली बताओ।
4: सही जवाब है रायपुर।
1: शाबाश मिली, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन रायपुर बाकी तीन शहरों से अलग कैसे है
4: बहन जी? क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जबकि गोरखपुर, सहारनपुर और कानपुर है उत्तर प्रदेश में।

0: बिल्कुल सही मिली, शाबाश। पता है बच्चों, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। तो मजा आया ना?
1: बहुत मजा आया बहन जी।
2: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों, पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय।

0: कॉमिक चीकू।
1: कपड़े सुखाने की रस्सी लगी है, मैं इस रस्सी पर चलूंगा।
0: मीकू रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करने लगा।
1: आ, मैं गिर गया।
0: मीकू साबुन वाले पानी में गिर गया।
1: ये तो साबुन वाला पानी है।
0: उसी समय बिल्ली आई और उसने मीकू को पकड़ लिया।
2: हाँ, गीला हो गया है, खाने से पहले सुखा लेना चाहिए।
0: बिल्ली ने मीकू को रस्सी से लटका दिया।
2: जब तक ना सूखे तब तक सो जाती हूँ।
0: चीकू मछली पकड़ कर आ रहा था।
3: अरे ये क्या, मीकू रस्सी में लटक रहा है। मीकू को बचाने के लिए बिल्ली को हटाना पड़ेगा।
0: थोड़ी दूरी पर वह आग जलाकर मछली को भूनने लगा।
3: मछली की खुशबू से बिल्ली जरूर इधर आएगी।
0: बिल्ली उठकर मछली ढूंढने लगी।
2: कोई मछली पका रहा है।
0: इधर चीकू ने मीकू को उतार लिया।
3: अब भाग।
0: बिल्ली वापस आ गई।
2: अरे मीकू तो भाग रहा है, मैं अभी पकड़ती हूँ।
3: बिल्ली तो मीकू को पकड़ लेगी, इस मछली के कांटे से बिल्ली को रोकूंगा।
0: चीकू ने बिल्ली को मछली के कांटों में फंसा दिया और इस तरह चीकू ने अपनी दोस्ती निभाते हुए मीकू की जान बचा ली।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज़्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देंगे। बहुत ईजी है ख़त्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूँगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 2 अभिनिष्क्रमण,
3: पृष्ठ संख्या 18
2: अभिनिष्क्रमण गृह त्याग। शाक्त पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शांति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह विषाक्त वाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञानवश ही जरा व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेष।
3: पृष्ठ संख्या 19।
2: इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूं। मैं मोक्ष की खोज में हूं। अपने पराए के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूं, अतः अब विचरण ही करता रहता हूं। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूं, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूं। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में और कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ। उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा। वहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूं। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी सन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवावस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे सन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है।
3: पृष्ठ संख्या 20।
2: इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार घोड़े पर बैठा है और पीछे उनके पिताजी उनसे अनुनय याचना कर रहे हैं। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी चार बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे चार बातें हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन चकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी उठपटांग बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा।

0: है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है। अतः तुम इस विचार को छोड़ दो।
1: पृष्ठ संख्या 21।
0: परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लग गई हो उससे निकल जाना ही श्रेयस्कर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों ना चुन लूं? नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गईं, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निःशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया। वहां राजकुमार ने सोते हुए अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंथक यानी घोड़े को ले आओ। मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूं। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अश्वरक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंथक को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो। इसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहां से निकाल ले चलो। इस प्रकार उस श्वेत अश्व को समझाकर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था जैसे कि शरदकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया हो। वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज ना हो, कोई परिजन जागे नहीं। बिना हिनहिनाए वह शीघ्र राजभवन के द्वार पर आ गया। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र अनुरक्त गृह लक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया।
1: पृष्ठ संख्या 22।
0: यहां एक चित्र है जहां सिद्धार्थ पलंग पर बैठे हैं और अपनी पत्नी और पुत्र राहुल से बातचीत या विमर्श कर रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की, जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिलवस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चला जा रहा था। उदीयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे, तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल आया था। छंदक की वापसी। थोड़े समय बाद भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चिंत भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि वह कृतार्थ हो गया। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे पुचकारा और कहा, हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है। फिर स्निग्ध दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझ में भक्ति दिखाई है, उसने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। मैं और क्या कहूं, तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है। अब तुम घोड़े को लेकर लौट जाओ, मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है।
1: पृष्ठ संख्या 23।
0: इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि अपने मुकुट से निकालकर उसे दे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना, हे तात, मैं स्वर्ग की तृष्णा से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूं। मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहां आया हूं। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूं, अतः आप मेरे लिए शोक न करें। मृत्यु रूपी शत्रु के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा, इसलिए युवावस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। राजकुमार ने फिर छंदक से कहा, हे सौम्य, इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना। तुम मेरी बुराई भी करना, क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है। राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फंसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा? कहां कोमल शैया पर सोने योग्य यह शरीर और कहां यह कंटका कीर्ण कठोर तपोभूमि? न जाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया। यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी ना लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए। यदि आपने अपने स्वजनों और राज्य को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्यागिए। आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ आए थे, वैसे ही मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता।
1: पृष्ठ संख्या 24।
0: इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार सारथी छंदक से वार्तालाप कर रहा है और वो वन में जाने की बात उससे कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वो जाकर राजा को क्या कहे। उसने अपने वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग कर दिया है और अब वो तपोवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सुनते हैं पाठ।
1: पृष्ठ संख्या 25।

0: कहा, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़ें, फिर भी वे एक ना एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते हैं। जिस माता ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ में धारण किया, वह माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातःकाल फिर अलग हो जाते हैं, उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं। इसीलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन ना माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना। अभी तो तुम कपिल वस्तु लौट जाओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दें। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिल वस्तु लौटूंगा, और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह जीव से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा। राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा, हे कंथक, रो मत, तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित कृपाण ले ली, उससे अपने केश काटे और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से पूछा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के काषाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह ना हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये काषाय वस्त्र मुझे दे दें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे काषाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए। दोनों ने परस्पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित रह गया। छंदक ने काषाय वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। काषायधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोर कर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता, वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता चला गया।
1: पृष्ठ संख्या 26।
0: तपोवन प्रवेश। जाते हुए छंदक को विदा कर जब सिद्धार्थ ने किसी सिद्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया तो उनके स्वरूप से सारा आश्रम अभिभूत हो गया। उनके शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था, फिर भी सभी आश्रम वासियों की दृष्टि उनकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो गई। जो किसान अपनी स्त्रियों के साथ खेत की ओर जा रहे थे, वे सिद्धार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मण कुमार हाथों में समिधा और फूल लिए हुए लौट रहे थे, एकटक कुमार की ओर देखते रह गए और अपने मठ की ओर जाना भूल गए। काषाय वेशधारी सिद्धार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे। चंचल नेत्र वाले मृग चरना भूल कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थनों से स्वतः दूध चूने लगा। आश्रम के ऋषि मुनियों ने जब दूर से ही सिद्धार्थ को देखा तो चकित हो गए और कहने लगे, क्या यह आठवां वसु है या अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया है? इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया

0: और कुशल समाचार पूछे। सिद्धार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिनंदन किया। मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों के साथ बातचीत की और तपोवन का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम की सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस्या के विविध रूपों के विषय में चर्चा की। प्रारंभिक परिचय के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूं। मैं यहां के नियमों से नितांत अपरिचित हूं। कृपया आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विषय में बताया और उनके फलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह बीन बीन कर अन्न चुगते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ बांबियों में सांपों के साथ रहकर वायु पर ही जीवित रहते हैं, कुछ जटाधारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ठ साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निकृष्ट साधक पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है और सुख ही धर्म का मूल है।
1: पृष्ठ संख्या 27।
0: राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्वियों की सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु उन्हें इनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विविध प्रकार की ये तपस्याएं दुख रूप ही हैं और इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है, किंतु जब सब कुछ परिवर्तनशील है तब इन आश्रम वासियों का परिश्रम भी स्थायी फल देने वाला नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोक में सुख पाने के लिए कष्ट भोगते हैं, वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख भोगने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। यह निंदनीय तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ न बचे। राजकुमार ने आगे सोचा, यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा यह शरीर तो मन के अधीन है, मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवृत्त है और उनसे निवृत्त होता है, अतः मन का दमन करना ही उचित होगा। इस तरह का विचार करते करते शाम हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहां यज्ञ का धुआं फैला हुआ था। अग्निहोत्र की पूर्णाहुति दी जा रही थी। ऋषिगण एकत्रित थे, उनके मंत्रों के स्वरों से देव मंदिर गूंज रहा था और सारा वातावरण हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए। उन्होंने यहां पर चल रही सारी तप विधियों का गहन अध्ययन और परीक्षण किया, किंतु उन्हें इन तप विधियों से संतोष नहीं मिला। अतः एक दिन उन्होंने इस तपोवन को छोड़ देने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप, व्यवहार और विचारों से उस तपोभूमि के सभी निवासी ऐसे प्रभावित हो गए थे कि जब वे आश्रम से जाने लगे तो सभी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि सभी आश्रमवासी उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं तो वे रुके और एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए। सारे आश्रमवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक वृद्ध साधु ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा, हे तात, आपके आने से यह आश्रम हरा भरा सा लगने लगा था और अब आपके जाने से यह सूना सूना सा होता जा रहा है, इसलिए आप इसे न छोड़ें। यहां निकट ही ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों और देवर्षियों द्वारा सेवित हिमालय है। चारों ओर पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या आपने इस आश्रम में किसी को नकारा या संकुचित विचार वाला देखा है, किसी को अपवित्र देखा है जिसके कारण आप यहां रहना नहीं चाहते? आपको जब तक अच्छा लगे तब तक आप यहीं रहें। ये तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहां रहने से इन सब का अभ्युदय होगा।
1: पृष्ठ संख्या 28।
0: उस वृद्ध तपस्वी के विनय वचनों को सुनकर राजकुमार ने कहा, हे तपोधन, आप सबने मेरे प्रति ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे जो स्नेह और आदर दिया है, उससे मैं अभिभूत अभिभूषा हो गया हूं। आप लोगों को छोड़ने में मुझे भी वैसा ही दुख हो रहा है जैसे अपने बंधुओं को छोड़ने पर होता है, किंतु आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है और मेरी अभिलाषा मोक्ष की है, इसीलिए मैं तपोवन को छोड़ना चाहता हूं। यहां के प्रति मेरे मन में ना अरुचि है और ना ही मैंने यहां कोई अपकार दुराचार देखा है। आप महर्षि सदृश हैं, पूर्व युग के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं, परंतु इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। इस तरह तपस्वी कुमार के मनोहर अर्थयुक्त और स्निग्ध वचन सुनकर सभी अत्यंत संतुष्ट हुए। तभी उनके बीच से एक भस्म लगाए तपस्वी बोला, हे प्राज्ञ, आपका निश्चय सचमुच ही प्रशंसनीय है। आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोषों को देख लिया है, इसीलिए आपने स्वर्ग का नहीं अपितु अपवर्ग यानी मोक्ष का मार्ग चुना है। आप निश्चित ही विचारवान हैं। यदि आपका यही निर्णय है तो आप शीघ्र ही विंध्य कोष्ठ नामक स्थान पर जाइए। वहां अराड मुनि निवास करते हैं, आप उनसे तत्व ज्ञान सुनिए और यदि आपको रुचिकर लगे तो स्वीकार कर दीजिए। परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाध गंभीरता है, जो तेज है तथा जो लक्षण है, उसके कारण आप स्वयं उस पद को प्राप्त करेंगे जो पहले किसी अन्य ऋषि महर्षि ने प्राप्त नहीं किया है। यह सुनकर राजकुमार ने सबको नमस्कार किया। सभी आश्रमवासी तपस्वियों ने विधिवत उन्हें प्रणाम किया और फिर राजकुमार आश्रम से बाहर निकल आए और आश्रमवासी धीरे धीरे लौट गए। पृष्ठ संख्या 29। अंतःपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विरह में वह अत्यंत व्याकुल था, अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्ववतः अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं तब से घोड़े ने न घास खाई है न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया। यहां एक चित्र है जहां अंतःपुर विलाप का दृश्य दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 30। कपिल वस्तु के वन उपवन जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों को उन पर खीज आ रही थी और वे कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहां छोड़ आए हो। बेचारा छंदक सबको यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जन में रोता हुआ छोड़कर चले गए। छंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है, हम सब वहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थीं, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगीं। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट को सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगीं। अंतःपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गईं। यह सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहां छोड़ आए हो? अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे यह कंथक अब क्यों हिनहिना रहा है? रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था तब क्या यह गूंगा हो गया था? यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी, आप कंथक की निंदा ना करें, न ही मुझे दोष दें, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी दैवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इस सब को कोई दैवी विधान ही मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट फेंका और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इस सब के पीछे ना मेरी इच्छा थी ना घोड़े की। लगता है यह सब कुछ दैवी प्रेरणा से ही हुआ है। पृष्ठ संख्या 31। छंदक के मुख से राजकुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतःपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मौसी गौतमी बिलख बिलख कर रो रही थीं और कई बार मूर्छित हो जाती थीं। यशोधरा रो रो कर कहती थीं कि मैं ही अभागिन हूं, तभी तो वे मुझे छोड़कर गए हैं। मेरी न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है और न कोई और। मैं तो बस यही चाहती हूं कि वे मुझे इस लोक या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। हाय, उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था, उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गईं और अंतःपुर की अन्य स्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगीं। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोदन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा शुद्धोदन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए। हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ जहां मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे। जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे, वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को ना स्वर्ग रोक सकता है ना चक्रवर्ती राज्य, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, आप कहें तो हम वहां जाएं जहां कुमार गए हैं, उन्हें समझाएं और बुला लाएं। राज पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े।
2: पृष्ठ संख्या 32।
0: कुमार की खोज। राजा शुद्धोदन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंथक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। राजपुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहां आए थे। वे युवक अवश्य हैं परंतु अबोध नहीं हैं। वे यहां कुछ समय रहे थे परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड़ मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे, वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। यहां एक चित्र है जहां सिद्धार्थ को एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। वो बैठे हैं और राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे वापस चलें। पीछे एक राजरथ दिखाई पड़ रहा है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 33। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूं, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है, उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूं। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौट चलिए और राज सुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझे मरणासन्न की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेहराज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज्याभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। हे कुमार, राजा के अश्रुसिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए, जैसे भृगपुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती हैं जैसे अपने बछड़े के ना रहने पर गाय रोती रहती है। हंस से वियुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी के साथ आप स्नात कीजिए। अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए। राजपुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा, व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अवश्यंभावी है, इसलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूँ, अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहेगा। मेरे कारण राजा को शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत हैं। इसमें संताप का कोई कारण नहीं, संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। पृष्ठ संख्या 34। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहां आता है और फिर यहां स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य के समान अग्राह्य है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूं, मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में पड़ना नहीं चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं, उसने कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए। इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे। इसी प्रकार राम और शाल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूं, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर आगे चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे राजकुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, यही सोचते सोचते वे कपिलवस्तु की ओर चलने लगे। पृष्ठ संख्या 35। बिंबसार से भेंट। राजपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। शिव के समान दृढ़व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए, जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए। उनकी भ्रिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ पैर, चलने की गति, जो भी जिसने देखी वह वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। मगध के राजा बिंबसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र परिव्राजक सिद्धार्थ हैं। इनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट होंगे। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहां जा रहा है। राजा की आज्ञा के अनुसार राज कर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है, वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 36। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए। एकांत निर्झर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। काशाय वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो। राज कर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिंबसार को सूचित किया। बिंबसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व यानी सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर बिंबसार ने देखा कि बोधिसत्व पर्यंक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो। राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी। कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक शिलाखंड पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिंबसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए। आपका सूर्य वंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में ना रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काशाय वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते, पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्ति की इच्छा है तो त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये मानधाता के समान तीनों लोगों को जीतने में सक्षम हैं, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या। निश्चय ही यह सब कुछ मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूं, ना ऐश्वर्य के राग से और ना अभिमान से। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्मप्रिय, समयानुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 37। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से राजकुमार को समझाया, परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। काम निंदा। मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के लिए प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे हर्यंक वंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। सचमुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य करना चाहता हूं। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूं। इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विषयों से डरता हूं। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है, वह मोह पाश में बांधता है। जैसे पवन प्रेरित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा शासन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को तृप्ति नहीं मिली। विषयों का चिंतन भी अमंगल है, इसीलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा? आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल जाते हैं, मांस के लोभ से मछलियां प्राण देती हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसलिए मैं मानता हूं कि इनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूं ना राजा सदा हंसता रहता है और ना दास सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शैया पर सोता है। शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है, मद है। पृष्ठ संख्या 38। संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है। इसलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूं। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मैं न तो क्रोध से वन में आया हूं, न पराजित होकर किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूं। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूं। मैं तो संसार रूपी वाण से धायता होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूं। मुझे तो स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। इस पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है। आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है। मैं तो परम पद उसे मानता हूं जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है, और जिसके पाने के बाद भी कुछ करणीय नहीं रहता है। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है, इसलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता है। मैं वह सुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने जा रहा हूं। आपका कल्याण हो, आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें। हे राजन, आप इंद्र के समान रक्षा करें, सूर्य के समान रक्षा करें। आप अपने गुणों से कल्याण की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, आयु की रक्षा करें, सत्पुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर मगधराज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें, कृतार्थ हों और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा, ऐसा ही हो, कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वंतर आश्रम की ओर चले गए। मगधराज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक के रूप में विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट गए। प्रश्न एक, सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा किस प्रकार मिली? दो, राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष क्या क्या शर्तें रखी? पृष्ठ संख्या 39। तीन, छंदक कौन था? सिद्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया? चार, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पांच, तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा? छह, वन से लौटने के संबंध में राजमंत्री के तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा? सात, बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए क्या प्रस्ताव रखा? यहां अध्याय दो समाप्त होता है। संक्षिप्त बुद्ध चरित। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: मुझे नहीं जाना 15 अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
4: जय हिंद, जय भारत।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ किसके जंगल, पृष्ठ संख्या 182। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला के साथ कुछ बच्चे पोटली लेकर जंगल में जा रहे हैं। जंगल की बेटी, सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती हैं सूर्यमणि। वह कहती हैं हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पृष्ठ 183। चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्यों होते हैं? कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? पता करो और लिखो। पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? सूर्यमणि कहती हैं अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी, पर जब से शंभू ठेकेदार आया जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गाँव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं, हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। पृष्ठ 184। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले, कभी खाना होता कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था, पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखों क्यों, यह जंगल है ना, सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है, कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। सोचो और लिखो। तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। सूर्यमणि का सफर। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफा लेकर बीए पास किया। पृष्ठ 185। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थीं। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, ची ची। सोचो और लिखो। क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जिंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। पृष्ठ 186। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला भी बच्चे सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़िक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी जमीन हड़प ली जाएगी, कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं उनके अनुभवों से सीखने के लिए। जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहां लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। पृष्ठ 187। सोचो, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगल के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तो रंग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन नृत्य संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज को बचाए रखना चाहोगे? पढ़ो और बताओ। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा सुनो। हम आदिवासियों के लिए

एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। यह था सिकिया का पत्र मुख्यमंत्री के नाम। अब बताओ, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का काम होता है? फैक्ट्री की वजह से जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहां के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? पृष्ठ 188। इस पृष्ठ पर भारत का नक्शा दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में कहां कहां जंगल हैं और कहां नहीं। पृष्ठ 189। पता करो और लिखो कि नक्शा किस बारे में है। तुमने सिकिया की चिट्ठी सुनी। नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र है? नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है, कैसे पहचानोगे? ये कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं? नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं? अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखो। मिजोरम में खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, इसके बारे में पढ़ो। टन टन टन टन, स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लॉमटे आ, डिंगा, डिंकी माँ, इन्होंने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने पानी पिया वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके साइमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायरा सर ने तीन टीन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, तीन टीन जमीन? चामुई ने समझाया, एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। पता करो, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो। तुमने जमीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा। जमीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? झूम खेती। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है।

फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। पृष्ठ 191। बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो हैं ही नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लादकर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियां तुमने भी तो बनाई हैं। हम क्या समझे, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फर्क है? सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अपने शब्दों में समझाओ क्यों। झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी? किसके जंगल। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों, पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद, जय भारत।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और आइए आज के इस सफ़र कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। 14 अगस्त की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज विशेष कुलदीप नैयर, एस के पाटिल, जॉनी लीवर, ऐश्वर्य पिस्से, टीवी रामकृष्णन, सैयद मुजफ्फर हुसैन बैनर्जी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही जादव, शम्मी कपूर, केसरी सिंह बाराठ, विलास राव देशमुख, अमृताय, हवा सिंह, चंद्रकांत देवतले, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आप सभी के साथ मिलकर कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आपके लिए। सफर कार्यक्रम सुनते रहो, मस्कुराते रहो।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं कुलदीप नैयर के बारे में। अभी भारत के एक बहुत ही पॉपुलर लेखक और पत्रकार हैं। भारत सरकार के प्रेस सूचना अधिकारी के पद पर कई वर्षों तक कार्य करने के बाद UNIP विशेष डी स्टेट्समैन इंडियन एक्सप्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। कुलदीप नैयर 25 वर्षों तक दी टाइम्स लंदन के संवाददाता भी रहे। कुलदीप नैयर का जन्म आज ही के दिन 14 अगस्त 1924 को सियालकोट में इनका जन्म हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा सियालकोट में हुई। वेदी की डिग्री लाहौर से प्राप्त की और USA से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में भी आपने PhD किया था। सन 1985 में उनके द्वारा लिखे गए सिंडिकेट कॉलम विश्व के 80 से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। और बिटवीन द लाइट्स, डिस्टेंस नेवर, अ टेल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन ऑफ इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडियन हाउस, स्कूप, द डे लुक्स ओल्ड, तो इस तरह की जो किताबें हैं वो बहुत पॉपुलर रही इनकी। और नैयर साहब की आत्मकथा भी बड़ी बड़ी सुंदर और अजब रही। कुलदीप नैयर की आत्मकथा बियाइंड द लाइट्स अंग्रेजी में छपी, उसके फौरन बाद हिंदी में राजकमल प्रकाशन से उसका हिंदी अनुवाद एक जिंदगी काफ़ी नहीं, आज़ादी से आज तक के भारत की अंदरूनी कहानी के नाम से आया। कुलदीप नैयर के करियर की शुरुआत एक उर्दू दैनिक पत्र के द्वारा हुई, लेकिन उनको प्रतिष्ठा जो मिली वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की सरकारी नौकरी के बाद ही। तो इस तरह से वो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के सूचना अधिकारी बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री के साथ जुड़े। और अपनी आत्मकथा में नैयर ने इस बात को माना है कि न्यूज़ एजेंसी UNI ज्वाइन करने के बाद भी वो अनौपचारिक रूप से लाल बहादुर शास्त्री को उनकी छवि मजबूत करने के बारे में सलाह देते रहते थे। तो इस तरह का जो विशेष कार्य है इनके द्वारा हुआ। और फिर सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं। और अगस्त 1997 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे ये। और प्रेस की आज़ादी और नागरिक

मानवता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले प्रख्यात पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप नैयर का निधन 23 अगस्त 2018 को दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो बस।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। अब सदाशिव कान्होजी पाटिल जी रत्नागिरी महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के मुख्य राजनेता में से एक, केंद्र सरकार में अनेक विभागों के मंत्री रहे। 37 से लेकर 46 तक वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बने और एसके पाटिल बड़े उद्योगों का समर्थन करते रहे। उनका कहना था कि यदि निजी उद्योग को सरकार के हाथों में सौंप दिया गया तो उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्हें प्राइवेट ही रहने दें ताकि उनका उन्नति होता रहे। एसके पाटिल का जन्म आज के दिन 14 अगस्त 1900 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस समय 1920 में एसके पाटिल ने सेंट जेवियर कॉलेज छोड़ दिया। बाद के समय में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया तब एसके पाटिल लंदन चले गए और अर्थशास्त्र तथा पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की। भारत आने पर एसके पाटिल ने 1937 और 33 के बीच में बॉम्बे कार्निवल नामक एक पत्र में काम किया। साथ ही वे आज़ादी का जो संग्राम है मुंबई नगर निगम के कामों में भी भाग लेते रहे। 3 वर्ष तक वे मुंबई के मेयर भी रहे और अपनी संगठन क्षमता को उन्होंने मुंबई में ही तैयार किया। एसके पाटिल भारतीय आज़ादी के संग्राम में अपनी गतिविधियों के कारण 8 बार गिरफ्तार किए गए और जितनी बार गिरफ्तार किए उन्हें विशेष 10 वर्षों तक जेल की सजा काटनी पड़ी। एसके पाटिल कार्य समिति के मुख्य सदस्य थे और फिर इस तरह से राजनीति में उन्होंने सक्रिय था 1937 से दिखाना शुरू कर दिया और फिर सदस्य तक वो लोकसभा के सदस्य भी बने रहे। और 69 में विभाजन के समय पाटिल ने इंदिरा गांधी के साथ न जाकर पुरानी सिंडिकेट में ही रहना अच्छा समझा। इस प्रकार देश के राजनीतिक परिदृश्य से वे अलग ओझल हो गए। और एसके पाटिल एक अच्छे वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। वे हमेशा बड़े उद्योगों का समर्थन करते रहे। उनका कहना था कि सरकार को बिना सौंपे ही अगर ये प्राइवेट रहते हैं तो ये अच्छा काम करेंगे, ऐसा उनका मानना था। इस वजह से वो निजी संस्थानों को ज़्यादा सहयोग देते रहे। और 24 मई 1981 को इनका निधन हुआ। तो आइए, ये थी कुछ बातें एसके पाटिल के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर सफर, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत संगीत आपको सुनाते हैं। और इस बीच हमारे कोपराम जी, सुरेश जी, भूपर सिंह जी, रमेश जी राधनपुर वाले, वो भी याद करते रहते हैं बीच बीच में फ़ोन करके। दयाराम जी और हमारे सुरेश जी पिंडवाड़ा और सुभाष जी जलगांव से याद करते हैं। तो आप सभी को लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद, जय भारत।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में जिनको आपने कई बार सुना होगा और कॉमेडी के बादशाह है जॉनी लीवर। इनके बारे में आप बात करते हैं और जॉनी लीवर की कहानी आपको सुनाएंगे। और जॉनी लीवर जो है बेस्ट कॉमेडी और फिल्मों में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनकी बातों से तो अवगत होंगे ही, उनकी कहानी से भी अवगत करा देते हैं आपको अभी। अब सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और इनका जो है कमेंट्री जो है कॉमेडी का वो काफ़ी पॉपुलर रहा बीच में और लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आप पुराने हैं तो शायद वो जब कैसेट का ज़माना था उस समय उनकी जो कैसेट रिलीज हो गई थी वो चीज़ें जो है लोगों को काफ़ी लोकप्रियता इनको दिलाई और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। तो भारतीय हास्य अभिनेता है जॉनी लीवर। इन्हें फिल्म अभिनेताओं की मिमिक्री करने में महारत हासिल है और वो हिंदी सिनेमा में अपनी मिमिक्री कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध है। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी लीवर बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी पहली सफल फिल्म बाजीगर थी। इसके बाद उन्होंने बहुत से फिल्मों में सहायक हास्य कलाकार के रूप में अभिनय किया है। तो आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आज ही के दिन 1956 को इनका जन्म हुआ था। तो चलिए उनके बानी डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी सीन्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि आपको बहुत हंसी भी आएगी और खुशी भी होगी।
5: नाम जॉन प्रकाश राव जनुमला, जन्म 14 अगस्त सन 1957 प्रकाशम, जिन्हें हम प्यार से जॉनी लीवर कहते हैं।
6: तमीज,
7: अरे भाड़े की वर्दी पहन के असली पुलिस वालों की तरह नाटक मत कर, चल चल।
5: एक ऐसा एक्टर जो जब चाहे आपको हंसा दे, जब चाहे किसी भी दिग्गज की आवाज निकाल कर आपको सुना दे, और फिल्म के अंदर अगर जॉनी भाई हैं तो फिल्म में दम बढ़ता ही नजर आता है।
8: ये? और तू वीरो?
9: वीरो?
8: हाँ, तुझे और तू वीरो उन पहचानिया मैं कौन है?
10: एक गब्बर सिंह का दूजा जन्म है, मैनू सांबा कहंदे ने।
5: जॉनी लीवर के माता पिता का नाम प्रकाश राव जनुमला और करुणमा जनुमला रहा। प्रकाशम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ और मुंबई के किंग सर्कल इलाके में इनकी परवरिश। यूं तो ये तेलुगु हैं और तकरीबन 7वीं कक्षा तक ये आंध्रा तेलुगु स्कूल में ही पढ़ते आए, पर आगे जाकर परिवार की हालत खराब हुई। मुफलिसी का आलम ऐसा रहा कि इन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, पर बचपन किसी ना किसी तरह से हंसता खिलखिलाता रहा।
7: आजाद भैया, अरे गुलेल छोड़ो और जल्दी से कोर्ट चलो।
11: कोर्ट? कोर्ट क्यों?
7: अरे केस मिल गया आजाद भैया, गांव से एक हरामी जमींदार आ गया है, उसको अच्छे वकील की जरूरत है और उसके पास एक बैग भी है जिसमें 1,00,000 रुपया है। खाली बाली।
5: जब गरीबी के हालात जॉनी लीवर के जीवन में आए तब इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब ये अलग अलग तरह के काम करेंगे, जैसे मुंबई की सड़कों पर पेन बेचना, दूसरे लोगों को कॉपी करना, बॉलीवुड स्टार्स के डांसिंग स्टेप्स को कॉपी करना, इस तरह के अलग अलग काम कभी मुंबई की सड़कों पर तो कभी कुछ स्टेज शोज में ये करते रहे। एक बात और गौर करने लायक है कि अपने बचपन के कुछ साल इन्होंने हैदराबाद के जकुतपुरा में भी बिताए थे, जहाँ से इन्होंने अपना कॉमेडी एक्टिंग का टैलेंट डिस्कवर किया था, जहाँ पर इन्हें पता चला था अपने एक्टिंग हुनर के बारे में। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों से प्रेरणा लेकर जॉनी लीवर ने कॉमेडी शुरू की। वो कलाकार रहे जॉनी वॉकर, किशोर कुमार और महमूद। मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट निरिला वेणु माधव और दिनेश हिंगू को स्टेज पर मिमिक्री करते देख जॉनी लीवर के मन में भी ये बात जागी कि क्यों ना ये भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाएं। और तब इन्हें अपने मेंटोर प्रताप जानी और मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार मिले, जिन्होंने इनकी स्किल्स को पॉलिश किया और ये विश्वास दिया कि जॉनी लीवर भी मिमिक्री कर सकते हैं। ये बात जरूर हैरान करती है कि जॉन प्रकाश राव जनुमाला जॉनी लीवर कैसे बन गया। किस्सा यूं बयां किया गया कि मुंबई की हिंदुस्तान लीवर की एक फैक्ट्री में इनके पिता काम करते थे और उन्हीं के साथ जॉनी ने भी काम शुरू कर दिया। वहां पर काम के साथ साथ जॉन अपने साथी कर्मचारियों का मनोरंजन भी करते, अलग अलग कलाकारों की मिमिक्री करके।
6: मूर्ख, ये उसकी अस्थियां हैं और उसकी अंतिम इच्छा थी कि इसे सिर्फ उसका पति ही खोलेगा। जा जा, तेरा सर्वनाश हो।
5: यहाँ तक कि फैक्ट्री के अलग अलग फंक्शंस में भी स्टेज पर जॉनी को ही बुलाया जाता था मनोरंजन के लिए। तरह तरह के आइटम्स करने के बाद हिंदुस्तान लीवर के फैक्ट्री के मजदूरों ने जॉनी को जॉनी लीवर बना दिया। धीरे धीरे जॉनी लीवर स्टेज पर आ गए, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा शोज रहे हों या फिर आइटम शोज। तबस्सुम हिट परेड का हिस्सा ये बने और फिर मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के ट्रूप को भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया और सन 1982 के आते आते अमिताभ बच्चन के वर्ल्ड टूर में भी इन्हें शामिल किया गया।
9: प्यार का लपड़ा क्या बाजार की भाजी समझाए तू? अरे किसी ने बोला है, अरे आए कितने गए कितने, प्यार करके मरे कितने, अरे तीन मरी चौथी बची, फिर भी पांचवी के चक्कर में मैं परेशान हूँ रे।
11: सुभान अल्लाह।
5: स्टेज पर तो जॉनी लीवर ने अपना दबदबा बना लिया था, पर फिल्में अभी भी दूर थी और यहाँ पर किस्मत ने एक करमट बदली। मशहूर एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दत्त ने जॉनी लीवर का एक स्टेज परफॉर्मेंस देखा और फिर फिल्म दर्द का रिश्ता में इन्हें कास्ट कर लिया। 80 के दशक में ही जॉनी लीवर ने अपनी कॉमेडी एल्बम निकाली हंसी के हंगामे, जो हिंदुस्तान भर में सुपरहिट साबित हुई। धीरे धीरे टीवी कमर्शियल्स में भी जॉनी लीवर अपना नाम बनाने लगे। सही मायनों में जॉनी लीवर का फिल्म ब्रेक सुनील दत्त ने ही दिया, पर अगर तारीख को पूछें तो पता चलता है कि मशहूर मारूफ स्टेज और टेलीविजन होस्ट तबस्सुम ने अपने बेटे होशांग गोविल को लॉन्च किया था फिल्म तुम पर हम कुर्बान, और उस फिल्म के अंदर जॉनी लीवर भी रहे। एक तरह से यही फिल्म इनकी पहली फिल्म रही और उसके बाद बेहतरीन फिल्मों के अंदर जॉनी लीवर का काम नजर आया, चाहे वो तेजाब रही या फिर रही कसम।
12: या छोरी कौन सी चक्की का पीसा अनाज खावे, उसके हाथ पांव तो बड़े करारे हो रहे से।
13: ए, क्या बकता है
12: बे? बहुत यारना लागे, बहुत यारना लागे। के भाया, भी छोरी के साथ तारो टाको भिड़ियो के है?
5: स्टेज टेलीविजन और फिल्म के धुरंधर कलाकार नसीरुद्दीन शाह के साथ भी ये नजर आए फिल्म जलवा में। सुपरस्टार्स बदलते जा रहे थे, पर जॉनी लीवर बतौर कॉमेडियन अपनी जगह बना चुके थे। एक वक्त वो भी आया जब हर नए एक्टर के साथ जॉनी लीवर को खड़ा किया जाता था ताकि सीन को संभाला जा सके। फिल्म्स के अंदर जॉनी लीवर की एक खास भूमिका होने लगी। फिल्म बाजीगर, जिसने इंडस्ट्री को सुपरस्टार शाहरुख खान दिया, उसमें भी जॉनी भाई का काम काबिले तारीफ है। ये बात सही है कि एक वक्त ऐसा भी था जब कोई नहीं सोच सकता था कि जॉनी लीवर हीरोइंस के साथ ठुमके लगाएंगे, पर वक्त के साथ साथ इनका नाम बढ़ता गया। इतनी शोहरत मिली कि फिल्म कभी खुशी कभी गम में डांस सीक्वेंस के अंदर भी जॉनी लीवर नजर आए।

0: हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है, जैसे अनबिरकु अल्ला विलाई और क्रिमिनल। टेलीविजन पर एक दौर वो भी आया जब जॉनी डीवर के नाम पर शो बना जॉनी आला रे, ये साल रहा सन 2007, और ढेर सारे रियलिटी कॉमेडी शोज में भी जॉनी डीवर बतौर जज नजर आए। जॉनी भाई की कॉमिक टाइमिंग, इनका मिमिक्री टैलेंट और चेहरे पर जबरदस्त एक्सप्रेशन इन्हें एक अनोखा कलाकार बना देते हैं।
1: ये राजश्री प्रोडक्शन वाले हैं ना, वो दोस्ती नंबर 2 बना रहे हैं, इसमें अंधे और लंगड़े का रोल है। मैं अंधे के रोल की प्रैक्टिस कर रहा था।
2: मतलब आप एक एक्टर हैं?
1: यस, मैं एक्टर था, हूँ और रहूंगा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग?
0: बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जॉनी लीवर की जोड़ी खूब पहचानी गई। जॉनी लीवर के निजी जीवन की तरफ अगर हम रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह सुजाता से हुआ। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी जेमी और बेटा जेसी। एक बात और है जो गौर करने लायक है, वो ये कि इनके भाई जेमी मोजेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 80 का दशक जहां ये समझा जाने लगा था कि फिल्मों में अब हीरो ही कॉमेडी करेगा और कॉमेडियन गायब हो जाएगा, इस सिलसिले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया इस कलाकार ने, और कॉमेडियंस की जो जगह होनी चाहिए उसे और मजबूत बनाया जॉनी लीवर ने। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
3: तो ये थी कहानी जॉनी लीवर की आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो। मस्कराते रहो।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Namaskar, aap sun rahe Radio Madhuban 107.8 FM par. Aap sabhi ka fir se ek baar swagat hai. Johnny Lever ki kahani sunkar aapko acha laga hoga. Aur Aishwarya Pessy ko unke bare mein baat karte hain. Ye ek भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेसर भी है और साथ में वो मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी 2019 में. उन्होंने इस किताब को अपने नाम किया. तो ऐसे ऐश्वर्य पिस्से के बारे में जानते हैं. आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 1995 में बेंगलुरु कर्नाटक में और 24 दिन में गुजरात से चेरापूंजी तक 8000 किलोमीटर का सफ़र बाइक से पूरा किया. फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब और इंडिया के ऐश्वर्य पिस्से को 2016, 17 और 19 में आउटस्टैंडिंग वुमन एंड मोटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और 9 साल की उम्र में बाइक चलाना शुरू किया था इन्होंने. 2015 में ट्रेनिंग शुरू की और उसके बाद सिर्फ 4 साल में 2019 में मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी. 2017 में ऐश्वर्या ने एक चैंपियनशिप के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई थी जिसमें उनकी कॉलर बोन चोटिल हो गई. उनके कॉलर बोन को 7 स्क्रू की मदद से स्टील प्लेट लगाकर फिक्स किया गया है. ऐश्वर्या ने दुबई से पहले दौर जीतने के बाद पुर्तगाल में 3रा, स्पेन में 5वां और हंगेरी में 4था स्थान हासिल किया. इससे वो 65 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही. पुर्तगाल की रीटा एरिया 61 दूसरे और चिली की धामास सिस्टी 3रे स्थान पर रही. तो ये थी कुछ कहानी. ऐश्वर्या मोटर बाइक ऑफ रोड मोटर साइकिल रेसर है. तो इनके बारे में आपको सुनाया. आशा करूँगा कि इनकी कहानी सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा. एक महिला होकर किस तरह से मोटर बाइक का रेस करके पहला विजेता बनी है ना, इतिहास रचा इन्होंने. तो अपने बच्चियों को भी आप अगर कोई खेल या किसी भी तरह का हॉबी है तो उसको प्रॉपर तरीके से निखारें तो जिससे वो देश और परिवार का नाम आगे बढ़ा सकती हैं. तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त. फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर. और आप सभी को जाते जाते एक छोटा सा विचार, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते. हासिल होने होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर. आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मस्कराते रहो.

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: मुझे नहीं जाना 15 अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: ओए रुकत,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: ओ जी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, है? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू CIIT NCERT's अनदर लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन सहयोग। My name is Deepak Mishra and you are watching this Sahyog session live on PM eVidya channel number 6212. And apart from that, you can also connect us on our official YouTube channel, which goes by the name NCERT Official and NCERT PM eVidya class 6212. So dear students and all the viewers, you know very well that Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan, and it's a brilliant initiative by Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan to provide psychosocial support among parents, teachers and students for their mental well-being. Ji haan, hum bachchon ke mental well-being ki Sahyog aur Paricharcha session mein baat karte hain. और आज के इस सहयोग सेशन में हमने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही खास है स्टूडेंट्स के लिए। क्या है टॉपिक, आपको हम बताते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, आज हम सहयोग में बात करने वाले हैं सेटिंग स्मार्ट गोल्स फॉर अ सक्सेसफुल एकेडमिक जर्नी। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ गोल्स सेट करके रखते हैं, लेकिन वो गोल्स स्मार्ट कैसे हों, ब्रिलियंट कैसे हों, कैसे उस पर काम करें, बहुत कम वक्त में आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं, हर बार की तरह आपके मन में कोई शिकायत, कोई समस्या, सुझाव या कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें नंबर है हमारा 8800-44-0559, या फिर आप हमें काउंसलर से भी बात कर सकते हैं कॉल करके। हमारा दूसरा नंबर है 8448440632, या फिर आप हमें ईमेल के ज़रिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sahyog.ncert@ciet.nic.in, या फिर इस सत्र के दौरान आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है NCERT Official, और लाइव चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए, आज के जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉपिक को इलैबोरेट करने, समझाने के लिए, उन सभी का मैं दोनों का परिचय आप सभी ऑडियंस से करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर नीता बत्रा मैम जुड़ चुकी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं RIENCERT अजमेर से। नीता मैम, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। और इसी के साथ मिस अमिका मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमिका अब्रोल जो कि प्रैक्टिसिंग काउंसलर है। अमिका मैम, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार।
2: नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: और आप

0: स्क्रीन पर हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भूमि को भी देख रहे हैं, जो इस पूरे सहयोग सेशन में होने वाली बातचीत को आप सभी दर्शकों तक साइन लैंग्वेज के जरिए समझाने बतलाने में मदद करेगी। हम भूमि का भी बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि हमने बताया टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डॉक्टर नीता मैम, मेरा आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, और गोल्स ऐसे हों जो स्मार्ट हों, जो ब्रिलियंट हों। सबसे पहले मैम, जो टॉपिक है हमारा स्मार्ट गोल, इस टॉपिक का सिंपल मैसेज में मैसेज क्या है? आप कैसे इसे समझाएंगे कि एक स्मार्ट गोल सेट करना ये क्या फैक्टर होता है, और किसी भी एकेडमिक करियर में स्टूडेंट की लाइफ में ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज के टाइम में हम सब जो है वी ऑल वांट टू बी स्मार्ट, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी गोल सेटिंग की, और गोल सेटिंग भी हमारी स्मार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्मार्ट से हमारा क्या मीनिंग है, और दूसरा जो आपका प्रश्न है वो सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, चाहे वो हमारी एकेडमिक जर्नी हो या पर्सनल जर्नी हो। इन सब के अंदर गोल सेटिंग हम सब करते हैं, लेकिन क्या वो सारे के सारे गोल्स हम अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, और अगर नहीं कर पाते तो ये जो स्मार्ट आज हम सीखेंगे, स्मार्ट वर्ड, इसका यहाँ पे क्या रेलेवेंस होगा, हाउ वी कैन अचीव यू नो गोल्स, हाउ वी कैन टर्न देम इनटू रियलिटी, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो छोटे से क्वेश्चन के साथ मैं आप सबसे स्टार्ट करती हूँ। सोच के देखिए, एक बार फ्लैशबैक में जाइए और देखिए आप लोगों ने कितनी बार ऐसा बोला होगा कि इस साल तो मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, I will study now regularly, I will now improve my mathematics marks। हम लोग इस तरीके की बातें हमेशा करते हैं, देखना इस साल तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू हैव डन दिस इन योर लाइफ, है ना? लेकिन कितने हम में से, कितने ही स्टूडेंट्स ने, हम में से जितने स्टूडेंट्स ने ये सब गोल सेट किए हैं, इनको रियलिटी में कितने स्टूडेंट्स ने कन्वर्ट किया होगा, इनको ट्रांजिट होते हुए कितनों ने देखा होगा कि दैट दीज गोल्स आर यू नो बींग ट्रांसलेटेड इन टू द रियलिटी, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप्स हैं। क्या गैप्स हैं? वो गैप्स जो है वो स्मार्ट वर्ड आज उन गैप्स को फिल करेगा, क्यों हमारे गोल्स रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते। तो सबसे पहले हम स्मार्ट का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। एस मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक और रेलिवेंट, एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, हम स्पेसिफिक से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्या मेजरेबल होगा तो हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे, क्या किस अचीवेबल, क्या अचीवेबल होने की हम बात कर रहे हैं, क्या चीज़ रियलिस्टिक और रेलेवेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ टाइम बाउंड होनी चाहिए, क्या ये सारा का सारा पैकेज जो है स्मार्ट पैकेज हमारे गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि नाउ आई वांट टू इम्प्रूव माय स्टडीज़, जैसे हम सब कमिट करते हैं अपने पेरेंट्स को कि नाउ आई विल इम्प्रूव माय स्टडीज़, तो क्या ये गोल है? हाँ डेफिनेटली आपने अपने लिए गोल सेट किया है, लेकिन पता है ये बहुत क्लियर गोल नहीं है। इसमें कहाँ पे एम्बिग्विटी है, वहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके ऐसे बोलूँ कि आई वांट टू इंक्रीज माय मैथमेटिक्स मार्क्स From 60% to 80% in the next examination by practicing mathematics for 45 minutes per day. अब देखो थोड़ा सा क्लियर हुआ, वहाँ मैंने एम्बिग्विटी के साथ बोला कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्टडीज, स्टडीज़ में क्या स्पेसिफिक होके मैथ्स को मुझे इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूव करना है, मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं अपने स्कोर को 60% से 80% पर लेकर जा रही हूँ, कब तक के लिए मैं अपना टारगेट सेट कर रही हूँ, टारगेट सेट कर रही हूँ कि इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन आई एम सपोजिंग दैट आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई मार्क्स, एंड हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस, कैसे मैं इसको टाइम बाउंड अचीवेबल कैसे बनाऊंगी, बाय प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स फॉर 45 मिनट्स पर डे। तो इस तरीके हमारे गोल्स के अंदर हमें ये पाँचों फैक्टर्स को वहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा, तो हमारे गोल्स जो है वो स्मार्ट गोल्स होंगे। उसके अंदर ये कंपोनेंट लाना होगा कि व्हाट डू आई वांट टू इम्प्रूव, रादर देन सेइंग दैट आई वांट टू इम्प्रूव माय स्टडीज, आई मीन आई वांट माय गोल टू बी वेरी मच स्पेसिफिक। दूसरा, हाउ मच इम्प्रूवमेंट डू आई वांट, कितना इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए, मुझे मेजर करना है अपने इम्प्रूवमेंट को। अगर मैं अपने इम्प्रूवमेंट को मेजर ही नहीं कर पा रही कि मैं 60% से 80% के बीच में जाना चाह रही हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा मैंने कितना इम्प्रूव किया? तो मुझे मेजरेबल टर्म्स में बोलना पड़ेगा कि मैं 60% से 80% तक अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, ठीक है? फिर उसके बाद ये है कि अगर मुझे इसके लिए काम करना है तो मैं काम कैसे करूँ, हाउ शुड आई स्टार्ट नाउ, आई विल स्टार्ट प्रैक्टिस, आई विल डू प्रैक्टिस डेली, तभी तो मैं अचीव कर पाऊंगी ना। तभी ये मेरा गोल अचीवेबल बनेगा। उसके बाद अचीवेबल बनाने के लिए क्या मैं रियलिस्टिक टर्म्स दे रही हूँ? यस, बिकॉज आई एम जस्ट सेटिंग 45 मिनट्स पर डे फॉर माई प्रैक्टिस एंड इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक। ये सारी की सारी टाइम बाउंड चीज़ें, अचीवेबल टर्म्स, रियलिस्टिक टर्म्स हमें हमारे गोल्स के अंदर ऐड करनी होंगी, तभी हमारे गोल्स जो होंगे स्मार्ट होंगे और रियलिटी में जल्दी कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दीपक जी, आपके साथ मैं दो एग्जाम्पल शेयर करूंगी। गोल वन है, दिस ईयर आई विल बिकम बेटर इन यू नो स्पीकिंग एट इंग्लिश। एंड द सेकेंड गोल इज दिस, बाय दिसंबर आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश वोकेबलरी बाय लर्निंग 5 न्यू वर्ड्स एवरी वीक एंड यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। इसमें से कौन सा गोल आपको ज्यादा क्लियर लग रहा है?
0: सेकंड सेकंड सेकंड वन
1: जी डेफिनेटली सेकेंड गोल इज मोर क्लियर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने क्लियरली बात की है वॉट टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इंग्लिश का वोकेबलरी इंक्रीज करना है, हाउ मच टू डू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर वीक के अंदर 5 नए वर्ड सीखूंगी और किस तरीके से सीखूंगी, उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज करूंगी। और मैंने अपने लिए एक टाइम लाइन भी सेट की है, टाइम बाउंड भी किया कि बाय दिसंबर आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश वोकेबलरी बाय लर्निंग 5 न्यू वर्ड्स एवरी वीक एंड यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। तो ऑब्वियसली मेरा सेकेंड गोल के अंदर ज्यादा क्लैरिटी है, रादर देन सेइंग दिस कि दिस ईयर आई विल बिकम वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, दिस ईयर आई विल बिकम वेरी मच बेटर एट इंग्लिश। इसकी जगह अगर मैं इसको स्मार्ट टर्म्स में बोलूँ, स्मार्ट गोल सेटिंग करूँ, तो मेरे लिए अचीव करना ज्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ तक बात थी कि गोल्स को स्मार्ट क्यों होना होगा, क्योंकि हमें उनको अचीव करना है, अचीवेबल टर्म्स में बोलना है। अब ये एकेडमिक जर्नी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये स्मार्ट जो है वह एकेडमिक जर्नी के अंदर आके इम्पॉर्टेंट हो रहा है? स्पेशली अगर मैं पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो मेरी एकेडमिक जर्नी है, मेरी एकेडमिक सक्सेस है, इट इज़ नॉट यू नो अ केक वॉक ऑफ वन डे। यू कैन नॉट अचीव योर सक्सेस इन वन डे, यू आर सपोज टू टेक स्मॉल स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स। अब वो जो जैसे मान लीजिए आपने ये कहा कि आई वॉन्ट टू बिकम बेटर इन मैथमेटिक्स इन दिस ईयर, तो ये सडनली नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। मान लीजिए आप लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, आप साइंस में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से स्मार्ट गोल्स सेट करके, स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सेट करके, आप तरीके से अपनी एकेडमिक जर्नी को सक्सेसफुल बना सक इसी तरीके से आप अपनी एकेडमिक जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट गोल्स हैं, ये क्या हेल्प करते हैं? सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि क्या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपने अपने आप को सेट किया था। आपको मोटिवेट करते हैं क्योंकि आपने टाइम बाउंड रखा हुआ है, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। आपको पता लगता है कि हर वीक में मुझे ना 5 वर्ड्स करने थे इंग्लिश की वोकेबलरी के, क्या मैंने किए? अगर मैंने किए तो यस, नहीं किए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में मैं उसको कवर अप कर लूँगी। अकाउंटेबिलिटी होती है जो मैंने अपने लिए खुद के लिए सेट किया था, क्या मैं उसको कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी प्लानिंग के ऊपर चल पा रही हूँ या नहीं चल पा रही हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी साथ साथ मेरी सेट हो रही है। चौथा पार्ट इसके अंदर है रिफ्लेक्शन, कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप खुद को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि गोल स्मार्ट है, मेजरेबल है, आप चेक कर पा रहे हैं कि आप उनको अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, रियलिस्टिक है या नहीं है, स्पेसिफिक है या नहीं है, तो साथ के साथ आपको रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है। एंड इफ यू नो यू आर गेटिंग दैट यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वहीं पर यू कैन चेंज योर स्ट्रैटेजी। तो आज से आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल, यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट से दैट आई वॉन्ट टू डू वेल, now you will say very specifically what exactly do you want to do, how will you going to measure it, is it possible, is it realistic, or by when are you going to achieve that goal।
0: बिल्कुल,
1: तो it means जो आपका wish है वो आपका goal बनता है, और goal जो है अगर वो smartly plan किया गया तो वो plan of action के साथ आप achieve भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बहुत साधारण और आसान भाषा में आपने हमारे स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन दी और ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझाया। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अमिका मैम से समझना चाहूँगा। अमिका मैम, स्मार्ट गोल्स क्या है, कैसे करना है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मैं चाहूँगा मैम आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि एक गोल को स्पेसिफिकली सेट करना, मेजरेबल सेट करना, अचीवेबल, रियलिस्टिक, और सबसे खास बात वो टाइम बाउंड में हो, ये कैसे होगा मैम?
2: ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। कैन आई हैव दिस फर्स्ट स्लाइड प्लीज?
0: श्योर।
2: देखिए जो हमारे गोल्स है, गोल्स के पहले मैं बात करना चाहूंगी कि हर एक बच्चे का एक सपना होता है, ड्रीम होता है। कुछ विद्यार्थी बनना चाहते हैं डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ बनना चाहते हैं टीचर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ आर्टिस्ट और कुछ स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, लेकिन ये ड्रीम्स रियलिटी जो है, जो ड्रीम्स हैं वो कन्वर्ट होंगे गोल में तभी जब उनके पास एक डायरेक्शन होगी, एक प्लान होगा, और वहीं पे हमें स्मार्ट गोल्स की जरूरत है। जैसे डॉक्टर नीता ने बहुत अच्छे से समझाया कि हाँ, आई वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स, है ना। तो यहाँ पे दिस इज डेफिनेटली ए गोल, बट इट इज वेरी वेग, मतलब बहुत जनरल है। उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए वी शुड हैव स्मार्टनेस इन इट, बहुत ज्यादा स्मार्ट डायरेक्शन की जरूरत है। एंड कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड। और स्मार्ट गोल्स हमें जरूरत रिक्वायरमेंट है क्यों स्मार्ट गोल की? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्मार्ट गोल है, स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए इज अचीवेबल और अटेनेबल, आर इज रेलिवेंट एंड टी इज टाइम। यस, और स्मार्ट गोल्स हमारे तभी होंगे जब हम इसके अकॉर्डिंग अपनी गोल्स को सेट करेंगे। लाइक स्पेसिफिक मीन्स वेल डिफाइंड एंड वेरी वेरी क्लियर, मेजरेबल मीन्स वी कैन ट्रैक एंड मॉनिटर आर प्रोग्रेस। तो इसी के इस और अटेनेबल मीन्स अचीवेबल, कि हम जो हमारे पास प्रेजेंट हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और एज पर द चाइल्ड जिस उसकी कैपेबिलिटी है, और रेलिवेंस और टाइम विद इन द टाइम फ्रेम, इफ वी मेक आर गोल्स, तो डेफिनेटली दे आर स्मार्ट। और अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि हाँ, यस, हम उसको कैसे बना सकते हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस, सो गोल्स हम अचीव कर सकते हैं कैसे? बाय हैविंग अ क्लियर एंड एक गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन के साथ। सपोज हम एक वी वांट टू गो ऑन ए मैराथन, है ना, दिसंबर में मेरी मैराथन है, एंड इंस्टेड ऑफ रनिंग 15 किलोमीटर्स इन अ डे, व्हाट वी कैन डू इज डूइंग इट स्लोली एंड स्टेडली एंड स्लोली इंक्रीजिंग आर टाइम एवरी डे, है ना। तो जिससे विच इज एकदम रेलिवेंट ऑल्सो, एंड ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब वन डे आप कर रहे हैं एंड सेकेंड डे यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो कंसिस्टेंसी एंड अचीवेबल हो वो चीज़, तो दिस इज हाउ वी कैन मेक आर गोल्स स्मार्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टडी हैबिट्स, यस, सो स्टडिंग टॉपिक और कंप्लीटिंग एंटायर चैप्टर इन ए डे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी शुड डू स्मॉल टॉपिक और अ स्मॉल चैप्टर इन अ डे, और मेकिंग इट इन अ सर्टन और स्पेसिफिक टाइम बाउंड वी कैन डू इट, है ना। और इसी के साथ वी कैन मेक द प्लान मोर रेलिवेंट, टाइम बाउंड, एंड वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू इन आर अकेडमिक लाइफ, सो वी कैन अचीव इन दैट वे। एंड वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू ऐड, वाई स्मार्ट गोल्स? वी हैव ड्रीम्स, वी हैव गोल्स, वाई स्मार्ट? स्मार्ट गोल्स गिव अस एम, डायरेक्शन वेरी क्लियरली, एंड इट इंक्रीजेज अवर परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो। इट्स ओके कि अगर प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, इफ वी आर फेलिंग ऑल्सो, स्टिल दे गिव अस चांस टू सी द प्रोग्रेस, मोनिटर द प्रोग्रेस, एंड वी कैन अगेन गो बैक, चेंज आर प्लान एंड अगेन डू द राइट थिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव आर गोल्स, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक आर गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड।
0: ओके नीता मैम, ये तो हमने समझ लिया बड़े ही आसान ढंग से, लेकिन अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है, आप क्विकली हमें ये समझाइए मैम कि अगर कोई स्टूडेंट स्मार्ट गोल सेट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऑब्स्टेकल, जिसे हम कहते हैं व्यवधान, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और वो हमें बड़ा बुरा लगता है, ये मैम ऑब्स्टेकल से हम आखिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं स्टूडेंट को क्विकली?
1: जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इससे हम सब बहुत रिलेट करेंगे। हमारे साथ ये अक्सर होता है स्टूडेंट्स, जब हम ये बोलते हैं कि आई विल स्कोर 80% इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, तो उसके लिए हम ये क्या बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, देखना मम्मा फ्रॉम टुमारो आई विल स्टडी रेगुलरली, और हम पढ़ने भी बैठ जाते हैं। 2-3 दिन तक ये सब चलता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद मोबाइल फोन बजना शुरू हो गया, आपके फ्रेंड ने आपको बुलाना शुरू कर दिया कि आओ ना, रोज शाम को खेलने नहीं आ रहे, पहले आप आते थे, पहले हम लोग ये करते थे। चलिए एक काम करते हैं, आज मैंने अपने आप से सोचा कि मैं पढ़ूंगी लेकिन डिनर के बाद पढ़ूंगी। अब डिनर के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर मैं आई फील, यू नो, स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी। तो ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं। यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स जो है वो मेजरली मैं आपके सामने रखूँ तो 3 या 4 ऑब्स्टेकल्स है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्स्टेकल है दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन है, कि मैं क्या कर रही हूँ कि आज का काम अपना कल पर डाल रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आज नहीं किया इसको कल करती हूँ, और वो टुमारो जो है ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग, टुमारो कभी नहीं आता। अगर आप सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में आप आज से ही करना शुरू करें, रादर देन सेइंग कि मैं आज पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा। नहीं, हो सकता है कि उसको आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम लगे, तो आप एक काम कीजिए, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, तो आप इजीली अपने स्टेप्स को कवर कर पाएंगे और अपनी जर्नी को कवर कर पाएंगे। दूसरे, आपकी डिस्ट्रैक्शंस, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, आप मोबाइल फोन्स हैं, सोशल मीडिया है, गेम्स हैं, वीडियोस हैं, कॉन्स्टेंट आपके फोन पे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जो आपकी अटेंशन को एकदम ग्रैब करती हैं। और यहाँ पे मैं आप बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप एकदम मोबाइल फोन को थ्रो कर दीजिए, नहीं, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग। लेकिन हाँ, साथ ही साथ कुछ बातों को ध्यान रखिए कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ मैनेज कीजिए, कि
0: बिल्कुल
1: जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को साइड पर रख दीजिए, नोटिफिकेशंस को आप टर्न ऑफ कर दीजिए, एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि आपने सोशल मीडिया को इतना ही टाइम देना है, आपने टेक्नोलॉजी को एज अ लर्निंग टूल ही यूज करना है, रादर देन, मतलब यू कैन नॉट परमिट
0: बिल्कुल
1: टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल योर टाइम। एक लास्ट आपके साथ ऑब्स्टेकल और शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज अ फेयर ऑफ फेलियर। बहुत सारी चीजों में हम स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को फेलियर का सामना करना पड़ेगा। हमेशा से बेटा ये चीज याद रखो कि मिस्टेक इज नॉट द अपोजिट ऑफ लर्निंग। यू नो, मिस्टेक क्या है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आप जितनी गलतियां करेंगे उनसे सीखेंगे और आप लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। और
0: बिल्कुल, ये
1: लास्ट द
0: आपने
1: मोस्ट
0: मैम
1: इम्पोर्टेंट
0: इम्पोर्टेंट
1: इज,
0: बात कही है। मैं चाहूंगा कि अब क्विकली हम पेरेंट्स के लिए भी एक शॉर्ट नोट ले लें, अमिका मैम बताएंगी उसको और बेहतर ढंग से, स्टूडेंट्स के लिए तो नीता मैम ने बताया। मैम, पेरेंट्स और टीचर्स स्टूडेंट्स को ये स्मार्ट गोल सेट करने में, अचीव करने में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्विकली मैम?
2: हर हम यस, थैंक यू सो मच। यस, हमें पता है कि हर बच्चे की अपना एक यूनिक टैलेंट होता है और हर एक की एक बच्चे की एबिलिटी भी है, लेकिन उन बच्चों को सही डायरेक्शन, उनको गाइडेंस, एनकरेजमेंट और सपोर्ट पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स और टीचर्स के साइड से होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि बच्चों को गाइड करें उनको रियलिस्टिक गोल सेटिंग में, कि हाँ व्हाट इज रियलिस्टिक, नॉट अनरियलिस्टिक, कि जो वो अचीव ना हो पाए, है ना। उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते रहें टाइम टू टाइम, और हमेशा पढ़ाई के साथ साथ या कहीं पे भी एकेडमिक जर्नी में बहुत सारे, जैसे अभी हमने बात की कि अप्स भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, कई बारी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी होंगी, आउट ऑफ ट्रैक भी आप चले जाएंगे कि नहीं कभी पढ़ने का मन कर रहा है, आज मूवी देख ली तो आज पूरा दिन मूवी में ही चला गया, है ना। तो उसके साथ साथ पेरेंट्स को सिर्फ स्कोल्डिंग के बजाय उनको अच्छे राइट डायरेक्शन में उनको ये बोले, यस, एक बैलेंस रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स और पेरेंट्स और अदर स्टेक होल्डर्स जो भी बच्चे की जर्नी में इन्वॉल्व हैं, उनको बैलेंस तरीके से, हाँ, ये रूटीन सेटअप कराने में हेल्प करें कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ आपको बैलेंस हर एक चीज लेके चलना बहुत जरूरी है। जैसे डाइट हो गया, जैसे मोबाइल यूज हो गया, वी कैन नॉट एकदम उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, यस, बट उसको मॉनिटर कर सकते हैं, एक टाइम बेस्ड हम इतना सेट कर सकते हैं, यस, 30 मिनट्स एवरी डे वी विल यूज द मोबाइल, सो दिस वे वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू जस्ट गो विद देयर गोल सेटिंग। एंड यस, और एक और है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने परीक्षा पे चर्चा, एक हमारा बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उन बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल एडवाइस जो बच्चों को मिलती है, ना कि बच्चों को पेरेंट्स को और टीचर्स को भी दी जाती है, जहाँ पे बहुत रियल लाइफ जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें वन टाइम में ही सक्सेस मिल गई है।
0: जी,
2: यस दे हैव ऑल्सो सीन सो मेनी फेलियर्स, देन अगेन दे बाउंस बैक. उस जे बच्चों को बहुत रिजिलियंस एक क्वालिटी दे कैन गेन इट फ्रॉम देम. एंड यस ये नहीं है कि सक्सेस ओवरनाइट ही उनको मिल गई है, दे हैव ऑल्सो टेकन फ्यू बेबी स्टेप्स
0: बिल्कुल,
2: एंड दिस वे दे हैव गॉन अहेड विद देयर जर्नी. एंड
0: चलिए
2: एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस जो है इट रिक्वायर्स डेली एक्शन,
0: राइट,
2: कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, एफर्ट एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स. उनका हेल्प करना, उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है
0: राइट।
2: बच्चों की एकेडमिक सक्सेस के लिए.
0: चलिए
2: तो
0: मुझे लगता है
2: जिससे
0: कि आज थोड़ी समय की कमी है, बट मैम हमने एक बहुत पॉजिटिव डिस्कशन आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, स्पेशली नीता मैम एंड अमीखा मैम फॉर एक्सप्लेनिंग टुडेज टॉपिक एंड डिस्कसिंग इन टुडेज सहयोग सेशन। अब वक्त नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का हम शुक्रिया करेंगे भूमि का, और आगे देखिए खास नीपा सेशन। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PME विद्या चैनल्स। नमस्कार।
1: थैंक यू.
0: चलिए इसी के साथ अब दीजिए चर्चा को।

सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारी संगीत का वो गायकी जीवित रहे, ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है, जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: मरम्मत मुकदर की कर दो मौला, तेरे दर पे।
1: अभी बजे हैं शाम के 6। शाम

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद, जय भारत।
3: देश मेरे, मेरी जान है तू। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है अभी
4: राघव।
3: जी हाँ दोस्तों, आज से हमारा ये नया साथी भी रोजाना हमारे बीच होगा। देखते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए स्पेशल लेकर आने वाला है। लेकिन हाँ, आज है प्री इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, आज़ादी का 15 अगस्त के पूर्व जो हमारा ये खास दिन होता है उसी को लेकर आए हैं हम स्पेशल डे की तरह। आपसे पूछेंगे हम सवाल, कुछ बेहतरीन गीत, अमेजिंग जानकारी, साथ ही साथ कविता और
4: चुटकुले।
3: जी हाँ, और चुटकुल्ला भी। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहना, सुनते रहना,
4: मुस्कुराते रहना।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये आसमान, ये विशेष गीत है इंडियन एयरफोर्स का। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज की उड़ान में। तो चलिए, प्री इंडिपेंडेंस डे और साथ में जुड़ा हुआ आज का सवाल भी। सवाल है, मैं एक्चुअली आज की जानकारी के तौर पर इस विशेष राज्य के बारे में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि सवाल इसी से जुड़ा ही हुआ है। बात कर रहे हैं ये खूबसूरत राज्य, जो राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। ये भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, क्या है राघव? चेन्नई। इस राज्य का शाब्दिक अर्थ तमिलों का देश है। अपनी प्राचीन संस्कृति, भव्य मंदिर और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है ये राज्य। देश के सबसे विकसित राज्यों में इसे माना जाता है। वैसे तो देखा जाए दक्षिण भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से भी मिलती है, जहां की राज्य भाषा तमिल है। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में इसे एक माना गया है। और साथ ही साथ यहाँ की जो खूबसूरत ये शहर चेन्नई है, उसमें मौजूद मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा शहरी समुद्र तट है। इतनी सारी जानकारी के साथ साथ आज का सवाल क्या है? चलिए दोस्तों, आज का सवाल हम आपके सामने दोहराते हैं। सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन और सुब्रमण्यम शिव किस राज्य से बिलोंग करते थे या किस राज्य के थे? स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारम और सुब्रमण्यम शिव किस राज्य से थे? आपके सामने ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी असम, सी बिहार। झटपट सही जवाब देना 9414151415 पर। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये आसमान है तेरा। नमस्कार, हमारे बीच कौन है साथी? नमस्कार।
1: ओम ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी।
0: जी जी जी जी, कैसे हैं?
1: हाँ, बहुत ठीक हूँ, लेकिन दो दिन से मेरा फोन हैंग हो रहा है आपके कार्यक्रम में, और स्विच ऑफ हो रहा है उधर से, दो दिन से ऐसा हो रहा है।
0: अच्छा।
1: चार चार पांच पांच बार लगा के भी स्विच ऑफ, कभी हैंग, कभी दूसरा ही आवाज आता है।
0: ओके ओके,
1: आदमी का भी आवाज आता है, हेलो ऐसा।
0: चलिए,
1: ऐसा आपके प्रोग्राम में दो दिन से हो रहा है।
0: ओके ओके,
1: और हो जाने दो।
0: जी जी जी जी,
1: देखो आज हमारे उड़ान कार्यक्रम में रेडियो मधुबन का जो बच्चों का विशेष जो अच्छा प्रोग्राम होता है, उसमें रुआन बाल कलाकार आज आ गए।
0: नहीं, इसका नाम ये राघव है, ये रुहान नहीं है, राघव है।
1: राघव तो राघव का दिल से सभी श्रोताओं के तरफ से उड़ान प्रोग्राम में दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज का सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन ए। और सभी को नमस्कार दीदी।
0: जी,
1: ओम शांति।
0: थैंक यू। हमारे बीच सुभाष जी थे और उन्होंने खास आज के सवाल का जवाब जरूर दिया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ और एक और गीत आप तक पेश करती हूँ। ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं कौन से कार्यक्रम में?
2: उड़ान।
0: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज प्री इंडिपेंडेंस डे के लिए एक प्यारी सी कविता मैं और राघव आपके लिए लेकर आते हैं। नीला आसमान तिरंगा प्यारा, सूरज चमके देश हमारा, बच्चे हंसते नाचे गाए, मिलकर सारे गीत सुनाए।
1: रंग बिरंगा सजा है स्कूल, हम बच्चे हैं देश के फूल, भारत माँ का नाम बान बढ़ाएं, जय हिंद के नारे लगाएं।
0: मिलकर हम झंडा फहराएंगे, आजादी का दिवस खूब धूमधाम से मनाएंगे। चलिए दोस्तों इस प्यारी सी कविता को आप तक पहुंचा दिए और आज का सवाल पुनः दोहराते हैं। स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन और सुब्रमण्यम शिव किस राज्य से थे? आपके सामने ऑप्शन है ए,
1: ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी बिहार।
0: सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर। कौन है हमारे बीच?
1: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
0: जी। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉल करने के लिए। आज आपको एक नई आवाज सुनने को मिली है, कैसा लग रहा है?
1: बस एकदम अच्छा लग रहा है। और हमारे जो बाल कलाकार है जो राघव जी, और इनको तहे दिल से इनका रेडियो मधुबन में स्वागत करता हूँ मैं।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल भी आपने जरूर सुना होगा, तो क्या जवाब देंगे?
1: वो जवाब तमिलनाडु है।
0: तमिलनाडु,
1: ऑप्शन ए।
0: थैंक यू। और आजादी की पूर्व संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन।
1: तो एक मैं बोलता हूँ
0: जी,
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू ए कातिल में है।
0: जी जी जी जी, थैंक यू, नमस्कार।
1: ओम शांति, ओम शांति।

0: सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। आगे बढ़ते हैं और प्यार मजेदार चुटकुला आपके लिए लेकर आते हैं।
1: दीपू, मुझे ट्रेन में रात भर नींद ही नहीं आई। एक तो ऊपर वाली सीट मिली थी, ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा ही थी। गप्पू, अरे तो सीट बदल लेता ना नीचे वाले से। दीपू, वही तो, नीचे बदलता कैसे, कोई था ही नहीं।
0: अच्छा, नीचे वाली सीट में कोई नहीं था, तब तो नीचे आके सो जाता ना राघव। चलिए दोस्तों, पुनः सवाल दोहरा देते हैं एक और बार। स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन और सुब्रमण्यम शिव किस राज्य से थे?
1: ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी बिहार।
0: चलिए दोस्तों, सही जवाब जरूर दीजिए, लेकिन इस खूबसूरत राज्य के विषय में कुछ और जानकारियां जरूर देते हैं। इस जो प्राचीन राजवंश चोल, पांड्या और पल्लव, इसी ये तीनों महान राजवंश एक्चुअली इसी राज्य से ही बिलोंग करते थे और उनकी नौसेना की शक्ति दुनिया भर में अब तब भी प्रसिद्ध थी, आज भी प्रसिद्ध है। और यदि कहा जाए विरासत, तो महाबलीपुरम के प्राचीन मंदिर और तंजौर के बृहदेश्वरा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहीं पर शामिल है। तो चलिए, मंदिरों का ये देश, मंदिरों की ये खूबसूरत भूमि, जहाँ पर 33,000 से भी अधिक प्राचीन भव्य मंदिर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मुझे इस स्टेट में, खूबसूरत स्टेट में जाने का मौका मिला और सचमुच प्राचीन मंदिरों को मैंने बहुत करीब से देखा है। पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं और राघव लौट कर आते हैं। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भारत माता की जय, जय हिंद। और पुनः एक बार सवाल मैं और राघव आपके लिए लेकर आ रहे आज की उड़ान में। सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारम और सुब्रमण्यम शिव किस राज्य से थे? आपके सामने ऑप्शन है ए
1: तमिलनाडु, ऑप्शन बी आसाम,
0: सी
1: बिहार।
0: झटपट जवाब देना, 9414151515 पर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी आप तक पहुंचा देते हैं, आलसी किसानों की कहानी। अब सोचिए, बारिश के दिनों में ये किसान काम नहीं करेंगे, आलसीपना करेंगे, तो मुझे और राघव को तो खाने को मिलेगा ही नहीं।
1: हाँ, ये तो सही बात है,
0: भूखे रह जाएंगे। तो हमारे किसानों का हौसला अफजाई करना जरूरी है और इन आलसी किसानों को कुछ सबक सिखाना भी जरूरी है। तो चलिए कहानी सुन लेते हैं।
2: मेरा सिंह, उनके खेती में जो काम करने वाले लोग थे उन पर ये कभी काबू नहीं कर पाते क्योंकि ये दिल के बहुत ही नर्म है।
3: सुनो तुम लोग, आज एक महीना हो गया लेकिन मेरे 4 बीघे जमीन में कुछ भी खेती नहीं हो पाई। तुम लोग कब काम शुरू करोगे?
4: आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, आज से ही आपका काम शुरू हो जाएगा।
3: हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम लोग जो बोलते हो वो तो मैं मान ही लेता हूँ लेकिन तुम लोग की तरफ से मुझे बिल्कुल भी फल नहीं मिलता है।
5: इस बार सब कुछ मिलेगा, आप बस घर जाकर आराम कीजिए, हम इस बार कड़ी मेहनत कर आपकी जमीन पर खेती करेंगे।
3: ठीक है।
4: ए, जमींदार चला गया, चल चल पेड़ के नीचे जाके आराम करते हैं, चलो और जाके लूडो खेलते हैं।
5: लाल, पीली, नीली, गुलाबी, हमारे हाथ में होगी जमींदार की चाबी।
2: और इसी तरह जमींदार का कोई काम ना करते हुए दिन निकाल देते थे। दूसरे दिन की सुबह जमींदार जैसे ही खेत की तरफ आ रहे थे।
4: ए सुशील, ए रमेश, काम पे लगो, टेढ़ा मेढ़ा सिंह आ रहा है।
5: नो टेंशन, हम बस नाटक शुरू करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना।
3: क्या भाई, काम कितना हो गया?
5: अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, मेरी टांग तो टूट ही गई, अब मैं कैसे चलूंगा, मैं तो जख्मी हो गया रे बाबा।
4: अरे अरे ये तुम्हें क्या हो गया भाई, क्या हो गया?
3: क्या हो गया तुम्हारे पांव को?
4: हल चलाते वक्त इसके पैर में लग गई।
3: अरे ये कैसे हो गया, कब हो गया ये? ठीक है, उसको लेके डॉक्टर के पास जाऊं। आहा, क्या मुश्किल हो गया है। अरे 15 दिन बीत गए लेकिन मेरे खेत में थोड़ी भी खेती नहीं हो पाई।
5: क्या हुआ जमींदार साहब, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं।
3: अरे चिंता की तो बात ही होगी ना, अरे किसान लोग कब से खेती का काम पकड़े हैं लेकिन काम शुरू ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक थोड़ी बहुत भी खेती नहीं हो पाई है।
5: ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि हर किसान अपनी खेती में काम कर रहा है, ऐसे में कोई नया किसान हमें नहीं मिलेगा सरकार।
3: तो अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कुछ आपको उपाय पता है?
5: जमींदार साहब, आपने एक बात तो सुनी ही होगी, लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, हमें कोई ना कोई बुद्धि लगानी ही होगी।
3: फिर से तुम्हारी वही बुद्धि, अरे कुछ करके दिखाओ तो जानू।
5: हाँ हाँ बताता हूँ, वैसे मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम गोवर्धन है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो इन सबको लाइन पर ले ही आएगा सरकार, अब बस देखते जाइए, सही समय आते ही आपकी खेती खिल उठेगी।
3: कल ही सुबह तुम अपने भाई को उनके साथ काम पे लगा दो।
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90।
5: अरे वो देखो जमींदार आ रहा है, एक क्या कम था जो 2 महारथियों को अपने साथ ले आया।
4: ए, सब लोग ध्यान से सुनो, आज मुझे बुखार हुआ है, याद रखना सब लोग।
3: ये क्या, तुम लोग आज भी बैठे हुए हो, क्या हुआ?
4: अब क्या बताऊँ आपको, आज सुबह से मुझे तेज बुखार आ रहा है, तेज।
6: ये क्या, आपको बुखार हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठंड लग के ही बुखार हुआ है, तो अभी आपको जलपट्टी देना होगा और अशोक पत्ता का रस पिलाना होगा। मैं अभी लाता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ।
4: अरे बाप रे, मैं मर गया, अभी ये मुझे दवा भी पिलाएंगे। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत कीजिए।
3: अरे तो ऐसे बंदरों की तरह बैठे क्यों हो, जाओ काम करो। सुनो, इसका नाम है गोवर्धन, आज से ये तुम लोगों के साथ ही काम करेगा, समझ गए?
4: हाँ ठीक है। अरे अरे भाई, तुम कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आखिर?
6: जमीन की खुदाई कर रहा हूँ। अरे इतनी बड़ी जमीन है, आप लोग भी हाथ बटाइए।
5: पागल हो क्या तुम? हम जमीन खोदेंगे तो भी पैसे मिलेंगे, और नहीं खोदेंगे तो भी मिलेंगे।
4: उस शरीर को व्यस्त करके क्या फायदा, आराम से रहो।
5: ओ भाई, तुम क्या दूसरे ग्रह से आए हो जो तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही है? वो छोड़ो, हमारे साथ लूडो खेलोगे? बोलो बोलो।
4: अरे उस जमींदार टेढ़े मेढ़े सिंह की तुम चिंता मत करो, वो सब मैं मैनेज कर दूंगा, कोई चिंता मत करो।
6: सुनिए, आप लोग के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि काम करो, काम करो, ईमानदारी से काम करो।
2: इसी तरह पूरा दिन कट जाता है। गोवर्धन अकेला जमीन खोदता रहता है, वो चारों उसे बिल्कुल मदद नहीं करते।
6: अच्छा, तो इसका मतलब जमींदार साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। बड़े भैया ने जैसे बताया था, ये मदन का ही घर है। मैं इसे यहाँ घर के दरवाजे के पास रख देता हूँ। अब मुझे सुशील के घर जाना होगा, इसके बाद विमल और पूरन के घर भी जाऊंगा, उनको भी तो मजा चखाना होगा।

0: अरे बाप रे, ये क्या, मेरे घर के सामने ये जादू टोना किसने किया? मैं तुम्हारा यमदूत हूँ। तुम जैसे देख पा रहे हो कि तुम्हारे घर के सामने एक मटका उल्टा पड़ा है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का भी मटका उल्टा पड़ने वाला है। जा मदन, जल्दी जाके खेत में काम कर। ये क्या, मेरी जिंदगी का मटका उल्टा पड़ने वाला है। बाप रे, मैं काम पे जाता हूँ।
1: अरे ये क्या, मेरे घर के सामने ये केले का पत्ता किसने रखा, और ये कागज पर क्या लिखा है? प्यारे सुशील, मैं तुम्हारा यम हूँ। तुम्हारे घर के सामने केले का पत्ता पड़ा है। जैसे जैसे वो सूखता जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी सूखती जाएगी, और धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु तुम्हें गले लगा लेगी। अरे रे रे बाप रे, ये क्या चीज है?
2: प्रिय विमल, मैं तुम्हारा यम हूँ। मैंने तुम्हारे घर के सामने एक दिया रखा है। अगर वो दिया बुझ गया तो तुम्हारी जिंदगी का दिया भी बुझ जाएगा। इसलिए जल्दी से जाओ और काम पर लग जाओ।
3: ये क्या, मेरे घर के सामने फूटी हुई हंडी रखी है। ए सुशील, मैं तुम्हारा यमदूत हूँ। तुम्हारी जिंदगी भी इस हंडी की तरह फूट जाएगी और तेरी जिंदगी के सारे खेल खत्म हो जाएंगे।
4: मुंशी जी, बताइए क्या होगा। मदन, सुशील, पूरन, विमल कोई भी काम नहीं कर रहा है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ।
1: देखिए चौकीदार बाबू, आपको मेरे भाई पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। आपने उसे जो काम दिया है वो पूरा करके ही रहेगा, देख लेना।
5: अरे वाह, ये चारों तो इधर ही आ रहे हैं।
6: ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्छे सर्वनाशाय स्वाहा।
2: ये क्या गोवर्धन, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे सबके घर के सामने एक चिट्ठी आई है, क्या तुम्हें वो नहीं आई?
5: नहीं, मुझे तो नहीं आई है, क्योंकि मैं तो अब मृत्यु के बाद का जीवन यापन कर रहा हूँ।
6: गिली गिली गिली गिली सर्वनाशाय स्वाहा, सबका सर्वनाश हो जाएगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा।
2: ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या तुम किसान नहीं हो?
5: नहीं, तुम लोग मेरा नब्ज पकड़ कर देखो, मेरी नब्ज बिल्कुल नहीं चल रही है।
0: अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है।
5: सब संभव है। तुम लोगों के जीवन में भी मौत आएगी, मौत।
0: हम सबको चिट्ठी मिला, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अगर हम सचमुच मर गए तो हमारा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। क्या करें अब हम?
5: रोना धोना बंद करके तुम लोग मेरी बात सुनकर काम करो।
1: ये क्या क्या काम करेंगे, हम कुछ दिनों में तो मरने ही वाले हैं। अब हम क्या करें, कोई बताओ।
5: तुम्हें मौत के मुंह से निकाल के लाएगी एकमात्र नागमणि। तुम लोग नागमणि लाकर अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गिली गिली गिली गिली गिली सर्वनाशाय स्वाहा, सर्वनाशाय स्वाहा।
0: आखिर बताइए ना, हमें कैसे मिलेगी वो नागमणि?
5: इस 5 बीघे जमीन में कहीं ना कहीं दबी हुई है। तुम लोग 4 लोग मिलके इस खेत को 2 दिन के अंदर खोद दो। खेत की खुदाई ऐसी होनी चाहिए जैसे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, तभी तुम लोगों को वो मिलेगी नागमणि।
0: ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, लेकिन हमें इससे बचा लीजिए।
5: तथास्तु। ये लो, काम होने के बाद इन नींबू को चारों भाग में बांट के खा लेना।
1: ठीक है।
7: इसके बाद मदन, सुशील, रमेश, सुरेश, इन्होंने उस जमीन पर काम करना शुरू किया और दिन रात एक करके उन्होंने 5 बीघा जमीन को खोद दिया।
0: नहीं भाई, हमने तो दिन रात एक करके पूरी जमीन खोद डाली, पर हमें वो नागमणि कहीं नहीं मिला।
5: अरे नागमणि रहेगी तो मिलेगी ना। देखिए जमींदार साहब, आपका 5 बीघा जमीन की खेती हो चुकी है, अब बस पानी देके बीज रोपने की बारी है, समझ गए?
4: अरे गोवर्धन, ये असाधारण सा काम तुमने कैसे संपन्न किया?
5: थोड़ा डर दिखाया और अपने दिमाग का प्रयोग किया। मैंने इन चारों के घर के आगे एक चिट्ठी और एक सामान रख दिया। ये लोग चिट्ठी पढ़कर सुबह सुबह ही मेरे पास आए। उसके बाद मैंने इन चारों को एक कहानी सुनाई,
6: मैंने अपने हाथ के बाजू में नींबू छुपा के रखा था जो इन्हें दे दिया। ये बहुत डरे हुए थे इसलिए इनको मेरी नब्ज भी नहीं मिली। फिर मैंने इनको मौत का डर दिखाया।
8: देखा ना मेरे भाई गोवर्धन का कमाल।
9: क्या इसका मतलब? इसने हमें बेवकूफ बनाया? ओ सच में?
6: जमींदार साहब सीधे साधे हैं इसलिए तुम लोग उनको ठग रहे हो ना। अब चारों कान खोलकर मेरी बात सुनो। हाथ के बगल में नींबू दबा के रखने से कभी भी नब्ज नहीं मिलती है, समझे? बस यही तुमने गलती कर दी।
4: शाबाश गोवर्धन, शाबाश, तुम सच में बुद्धिमान हो। चलो चलो, तुम्हें मैं मिठाई खिलाता हूँ और जश्न मनाएंगे।

0: वेल दोस्तों, समय इशारा कर रहा है आप सभी से विदाई ले लो, लेकिन जाते जाते आज के सवाल का जवाब भी देते हुए जरूर जाएं। सवाल पूछा था हमने स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारम और सुब्रमण्यम शिव किस राज्य से बिलोंग करते थे। हमने ऑप्शन रखा था ए
1: तमिलनाडु,
0: बी
1: आसाम, सी बिहार।
0: तो सही जवाब बिहार है।
1: नहीं नहीं बिहार तो नहीं है।
0: असम?
1: नहीं।
0: तो फिर
1: तमिलनाडु है
0: दोस्तों, तमिलनाडु। और तभी तो हमने कहा था यहाँ का सबसे प्रिय पारंपरिक भोजन है
1: चावल,
0: और इससे आधारित जुड़ी हुई चीजें
1: इडली, डोसा, सांभर और
0: रसम। चलिए दोस्तों, राजधानी चेन्नई भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है और यहाँ का मुख्य वैश्विक कंपनियां, बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं। पर हाँ, कल जरूर मिलेंगे, उड़ान में नहीं बल्कि 15 अगस्त के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में। हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, सुनते रहना,
1: मुस्कुराते रहना।

नमस्ते, मैं हूं हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: उसके दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी लगता है क्योंकि कार्यक्रम का नाम जैसे मेरा गांव मेरा अंचल, जिस गांव और अंचल में हम रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे वो गांव और अंचल को हमें कभी नहीं भूल पाते हैं क्योंकि अपना गांव स्वर्ग जैसे लगता है। तो सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही जो प्रतिभा है जो कार्यक्रम चलता है वो जन जन तक पहुँचे, इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आज हमें खुशी है, आज हम आबरोड ब्लॉक से सुदूर रेबदर ब्लॉक में पहुँचे। कोई उल्हा ना दे जे रेडियो मधुबन हमारा पास आए नहीं और हमारा प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए कोशिश नहीं किए। इस उद्देश्य को लेकर आज हम रेबदर ब्लॉक जवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे तो बहुत खुशी लगता है क्योंकि सभी को रेडियो मधुबन का साथ लगावे जुड़ावे और जब अपना आवाज़ को सुनते हैं कार्यक्रम का माध्यम से कहीं पर भी तो वो खुशी जाहिर करते हैं और उनका आवाज़ ही उनका पहचान होता है। तो हमें बहुत खुशी है। तो बच्चों का बारी बारी आपको प्रस्तुतियाँ सुनने को मिलेगा, एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत होकर आए हैं बच्चे। तो देर किस बात की, उनका आवाज़ सुनिए।

0: मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
1: मेरा नाम है भगवती कुमारी। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
2: मेरा नाम है विष्णा कुमारी। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
3: मेरा नाम है काजल कुमार। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरा गांव का नाम जावल है।
1: दया।

मरना वतन पर जाफिदा होना, प्रभु हम को शिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।

0: कहानी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर इस तरह कार्यक्रम में दूर से जवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का बच्चों को आप सुन पा रहे थे, उनको धन्यवाद देते हैं। सभी को नाम का साथ, जैसे अपना अपना नाम, कौन सा क्लास और कहाँ पढ़ते और किस तरह आगे बढ़कर नाम रोशन करेंगे, बढ़कर क्या लक्ष्य रखे वो सब बताए। तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
2: इन धरती पर

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अगला कार्यक्रम के लिए बच्चे हमारे रेडियो गीत का पहला सुने हैं और एक गीत। और बच्चे तो सच्चे होते हैं, महात्मा होते हैं और अपना बात को रखते हैं, और छोटे छोटे बच्चे कम नहीं है, मासूम होते हैं। परियां इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, इतना दूरस्थ जगह से आए तो बच्चे अपना टैलेंट को, प्रतिभा को भी पूरा जी जान लगा कर देते हैं। कोई सूचना नहीं था, कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं, लेकिन अचानक में जब पहुँचे तो अचानक का पार्ट भी एवर रेडी का पार्ट देखने को मिल रहा है। तो पुनः उन सभी बच्चों को स्वागत करते हैं, नाम का साथ अपना अपना परिचय देंगे और विद्यालय का नाम भी बताएंगे। तो लीजिए उन सभी से पुनः और एक प्रस्तुति।
3: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
4: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
5: मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।
6: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।

हाल है, कोई समझ ना पाए क्या के सताए जाए, जरा ढूंढ के लाए ना, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, जाए जाए वहाँ ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। जन्म

0: ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

एक के बाद एक प्रस्तुति आपको सुनने को मिल रहा है और आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खासकर विद्यार्थी विकास और बच्चों का टैलेंट जब प्रतिभा खोज है उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और शिक्षकगण भी बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सभी अपना अपना आवाज़ को बुलंद से जितना हो सके, ना ज़्यादा ना कम, अपना आवाज़ को दे रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति के लिए रेडी सही बच्चे? ओके, शुरू करिए बच्चे, रेडी। आपका नाम का सा सभी अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में, तब तो पता चलेगा हमारा बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं और क्या बोलने जा रहे हैं। तो वो सबको भी पता होना चाहिए और जो लिसनर हमारा सुन रहे इस कार्यक्रम को वो भी ध्यान से सुन रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए। तो लीजिए अगला प्रस्तुति।

बाप जब मैं कबूतर निकली असली कलो रे ली असली कलो रे, मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है, मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है, लव यू के तू दबकावे लव यू के तू दबकावे, जर खम्मा आली कर से उमर गोल्या मर जाना डड्डी।

रे उमर को लिया मर जान डाडी में काली कर से मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है लव यू के तू दब गावे लव यू के तू दब गावे जड़ी खम्मा याली कर से उमर को लिया मर जान डाडी में काली कर से।

गाडी कोड लेवर हरदम लेवे मातो पीवर गाडी कोड लेवर हरदम लेवे मातो पीवर चक्कर गोवारो मर से टर कालो मारी गाडी कोड लेवर गाडी कोड लेवर हरदम लेवे मातो पीवर गाडी कोड लेवर हरदम।

0: गुड लेवर।
1: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति दिए। और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर नाम रोशन करते हैं, तो धन्यवाद देते हुए और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: तो ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। और बच्चे तो पहले मैंने बताया सच्चे होते हैं, महात्मा होते हैं, और इस तरह कार्यक्रम कोई मोबाइल से सीखते हैं, कोई बड़ों को देखकर सीखते हैं, कभी कोई कोई स्कूल में आकर विद्यालय में आकर भी अपना आवाज़ को रोक नहीं पाते, बड़ों को देखकर छोटे बच्चे सीख जाते हैं, छोटों को देखकर भी बड़े बच्चे सीख जाते हैं, ये उनका जादूगरी है। तो लीजिए और एक प्रस्तुति।
1: बोरनो लगा के चुनर ओडे चुनर जी, बल्लम लायो मेरो, लायो मेरो भोर चुनर जी, बल्लम लायो मेरो, यो मेरो भोर चुनर जी। अरे मेरी चोटिया लेगी, अरे मेरी चोटिया लेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी नुए चलेगी। अरे मेरी चोटिया लेगी, मेरी चोटिया लेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी नुए चलेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी दुए चलेगी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये होगी अंतिम प्रस्तुति, और सभी बच्चों को तो अंतिम में ही बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए तैयार है, क्योंकि अंतिम तो उनके लिए नहीं है, लेकिन हमारा जो समय को देखते हुए अंतिम प्रस्तुति की और हम चल रहे हैं। सभी को पुनः स्वागत करते हैं। नाम और क्लास का साथ साथ कौन सा फले, कौन सा ढाने में, कौन सा गाँव से आते वो भी बताएंगे, तो लीजिए उनसे सुनिए।
1: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
2: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
3: मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।
4: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव

0: अंबिकी हो गई बैनरे रे केसरिया बंसा बारे घड़ा ओ बंसा बारे घड़ा चार चार चूड़लारे पड़िया बनी सर अट जीन बनी सर अट जीन।
1: वाह वाह वाह वाह, तालियों का साथ सभी बच्चों को उमंग उत्साह दे रहे हो, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा का योग्य है। इसे कार्यक्रम का माध्यम से बच्चे बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और इस सब का श्रेय विद्यालय को जाता है, स्वयं को जाता है और माता पिता परिवार को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह भराते हैं और जिसका चलते बच्चे भी भाग ले पाते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर आज दूरस्थ जगह रेबदर ब्लॉक में पहुंचे, जो कि जवाल गांव में पहुंचे और राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये आवाज़ है। तो सभी को नाम का सा धन्यवाद देते हैं, पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों, पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
4: जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, 8:26 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। अभी हम सुनने जा रहे हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। इस उपलक्ष्य पर उन्होंने देशवासियों के प्रति और क्या कहा और क्या आह्वान किया, आइए सुनते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्रनिष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्शों पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया।
एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारा संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जनभागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्श के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नई प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारे विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ

ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक का नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रही है। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारा लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल
28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें आपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन
आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।

गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रपति साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। और सच में किस टोन में हम किस बात को कहते हैं ना, लोग कह देते हैं अरे आज बड़े उदास हो, आज बड़े गंभीर हो, या कभी कभी सेम सेंटेंस को ही अलग अलग तरीके से कहने से हमारी भावना को पहचान जाते हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को कितना पहचान, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम, खुद को जान रहे हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है लव यू जिंदगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले स्वागत करते हैं ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत बहुत खुशी होती है जब हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं और अपने मन की बात उनके साथ शेयर कर पाते।
0: और हमें भी बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे साथ एक नहीं दो एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। लव यू जिंदगी के हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। कल्पना जी आपको नमस्कार। और जैसे लव यू जिंदगी में एक और एपिसोड है, जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, मेरे सारे विषय ऐसे हैं जो हम सबके दिलों के करीब, और कम बार ही ऐसा होता है जब हम समय निकाल कर इन चीजों पर सोचते हैं तो शायद ये कोशिश यही काम करती है कि हम उन चीजों पर तवज्जो देना शुरू करें जो चीज एक्चुअल में हमारे लिए।
0: बिल्कुल, और इसी चीज की कमी होती जा रही है आजकल, समय समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आया था पिछले एपिसोड को, अगर दोस्तों आपने भी सुना होगा, कि हीलिंग की प्रक्रिया में समझ और समय दोनों बहुत जरूरी है। तो हम बातचीत कर रहे थे भावनाओं के बारे में, हीलिंग के बारे में, और हमने पिछले एपिसोड में ये जान लिया था कि कहीं ना कहीं कोई बैगेज है जो हम शायद बचपन से कैरी कर रहे हैं, जिसके साइंस नजर आते हैं। हो सकता है गुस्सा जल्दी आ जाता है, बेवजह रोना आ जाता है, या फिर चिड़चिड़ापन लगता है, अकेलापन लगता है, डर लगता है, ऐसे बहुत सारे साइंस है। दीदी आप बता रहे थे कि हम थोड़े और कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के क्या क्या होते हैं जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: तो हमने भावनात्मक संकेत देखे थे, बिना कारण उदासी, छोटी छोटी बातों पर रोना, अत्यधिक गुस्सा आना, चिंता, डर, अकेलापन। मानसिक संकेत हमने देखे थे, बार बार वही बातें सोचते रहना, ओवरथिंकिंग है, नेगेटिव सोच आना, आत्मविश्वास की कमी होना, खुद के निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होना। अब हम शारीरिक संकेतों की बात करते हैं। शारीरिक संकेतों में पहला संकेत जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नींद ना आना। आजकल भी सोशल मीडिया के ज्यादा यूज की वजह से, मोबाइल के ज्यादा यूज की वजह से लोगों के नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता जा रहा है, तो ये शारीरिक संकेत बहुत खतरनाक है। दूसरा है कि सारा दिन थकावट बनी रहे, देर से सोना, देर से उठना, और फिर सारा दिन थके थके महसूस कर, सिर दर्द अधिक होना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, क्योंकि पढ़ाई भी है, सो पढ़ाई करते समय उनका सिर दर्द होने लगता है या कभी पेट दर्द होने लगता है, और जब डॉक्टर को दिखाओ तो पता चलता है ऐसी कोई बात है नहीं जिससे उनका सिर दर्द हो सके, बट रात की नींद नहीं, थकावट है, सिर दर्द होना, शरीर में जकड़न से क्रिएट होना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना, ये शारीरिक संकेत हमें दर्शाते हैं कि हमारी भावनात्मक इम्बैलेंस है। फिर व्यावहारिक या सामाजिक संकेतों में हम देख सकते हैं कि हम अचानक लोगों से दूर होने लगे, हमें लोग अपने आसपास अच्छे नहीं लगे, हम ग्रुप से अलग हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हम अक्सर लोगों से बचकर मोबाइल में घुसे रहते हैं या सोशल मीडिया में चले जाते हैं। एक बार एक यूथ से मैंने प्रश्न पूछा, क्या हुआ भाई आजकल आप दिखाई नहीं देते, तो उसने जवाब दिया, मैम आप ऑनलाइन आ जाए।
0: अच्छा।
1: मैं हमेशा वहां अवेलेबल रहूंगा।
0: अवेलेबल तो हूँ लेकिन ऑनलाइन।
1: सो इसके साथ साथ नशे के प्रति आकर्षित, नशे के प्रति, और कभी कभी क्या होता है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर शुरू हो जाता है, या तो कट ऑफ करते हैं या पीपल प्लीजिंग रहते हैं। तो ये सारे संकेत जो हमें नजर आते हैं, अब इसको हमें न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये बात हम आगे देखेंगे, बट मैं इस पर श्री जी के भी विचार सुनना चाहूंगी। सो जब हम इनके उपचार के, अभी हमें संकेत का पता चला, क्या साइंस होते हुए पता चला। अब हम इसके उपचार की बात करें।
0: एक चीज मैं और जानना चाहूंगी यहाँ पे उपचार से पहले, अगर कि ये जो सारे आपने साइंस बताए, ये क्या कहीं ना कहीं बचपन से ही जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग चीजों से जुड़े हैं, या जैसे किसी को माँ बाप का प्यार कम मिलता है, लगता है बड़े भाई बहन को ज्यादा मिला, या किसी के साथ टीजिंग होती है तो ऐसा होता है जिसके साथ टीजिंग हुई उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, या जिसके साथ ये हुआ उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, ऐसा कुछ होता है क्या कनेक्शन?
1: जी बिल्कुल, हमारे प्रेजेंट सभी प्रॉब्लम्स का अगर जड़ हम देखेंगे तो हमारे बचपन के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई।
0: जैसे पीपल प्लीजिंग है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता या दूसरों को ही खुश करने में लगे होते हैं, इसका क्या?
1: आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस व्यक्ति के सारे अपने लोग उसको तिरस्कार करते होंगे, उसे प्यार नहीं करते होंगे, या उसे छोड़कर चले गए होंगे, या उसे हॉस्टल में डाल दिया गया होगा, उसको अकेलापन लग गया होगा, जब उसके रिलेशनशिप टूटते जाते हैं तब वो सोचता है कि मेरा हर रिलेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को प्लीज करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ बनाए।
0: ओके, तो उनको वो होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी करना पड़े कर लेते, बट मुझे वो व्यक्ति का साथ चाहिए।
0: डर होता है कि वो भी छोड़ के ना चला जाए।
1: हाँ।
0: तो मतलब, और जिनके साथ बुलिंग ज्यादा हुई होती है, चिढ़ाया होता है, उनका किस प्रकार का सिम्टम मतलब या साइन है?
1: बहुत गहराई तक मेरे पास ऐसे कई यूथ्स आए जो कॉलेज में बुलिंग का शिकार हुए, उनका पूरा लाइफ और पूरा करियर बर्बाद। इतने अच्छे पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन कॉलेज में इस तरह गलत तरीके से उनकी रैगिंग हुई है, उस वजह से उनका पूरा लाइफ मेंटल बीमारी के कारण के शिकार हो गए है, और पढ़ाई भी रह गई, करियर भी रहे, और अभी हेल्पलेस होकर बैठे। सो बीच में ही मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, किसी भी स्थान पर दूसरे को तंग करने की आदत को पहचान कर उसे तुरंत रोकिए, क्योंकि आपके चिढ़ाने से, आपके तंग करने से, आपके बुली करने से या आपके रैगिंग करने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
0: बिल्कुल दीदी, और ये बहुत सच बात है, बुलिंग होती है, मजाक लगता है लोगों को कि हम तो सिर्फ जोक कर रहे थे, प्रैंक जिसको बोलते हैं, प्रैंक कर रहे थे, पर वो दोनों लोग नहीं हंस रहे होते, एक ही हंस रहा होता है बस, सामने वाला तो बहुत रो रहा होता है, परेशान होता है। इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं आज भी। ये तो फिर जैसा आपने कहा, साइंस अलग अलग है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है। जिस तरह से, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो नींद नहीं आने वाली बात है, ये ओवर थिंकिंग वाली बात है, ये क्यों होती है, मतलब ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी नींव कहाँ से पड़ती
1: है? नींद का हमारा एक साइकिल होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है एटमॉस्फेयर में, हमारी आंखों में जो मेलानिन द्रव है वो क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमको लगता है अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें थोड़ी भारी हो जाती है और हमें नींद का आना हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रात तो हो जाती है बाहर, लेकिन हमारा स्क्रीन बंद नहीं होता है, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, जो हमारी आंखों में रोशनी देता रहे। तो एक बार मेरे नींद का साइकिल, हमारे शरीर का और मन का एक रिदम है, उस रिदम को अगर हम तोड़ देते हैं किसी कारण से, जिस समय सोना चाहिए, समझो रात को 10 बजे सोना चाहिए, पर एक या दो दिन मैंने वो रिदम तोड़ दिया और रात को 1-2 बजे सोना शुरू किया, मेरी बॉडी का सर्कैडियन रिदम टूट जाता और फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन से 10 बजे नींद नहीं आती, तो फिर मैं शिकायत करती हूँ, अरे 10 बजे नींद नहीं आ रही। नींद ना आने का कारण मैंने ही उसको डिस्टर्ब किया। तो और 2 दिन अगर आप कोशिश करके उसी टाइम पर सोएंगे, फिर से उस रिदम में हम आ सकते। नींद न आने के कई और भी कारण होते हैं जिनको हम बाद में जानेंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो मेन कारण है वो है स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना, क्योंकि रात में उनको पर्सनल टाइम मिलता, उस समय कोई देख नहीं रहा होता है, कुछ काम नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर मुझे देखना है,
2: रिलैक्सेशन। सर्कैडियन रिदम्स की बात कर रहे हैं, अक्सर ये चीज मेरे को सुनने को मिलता है जब युवा साथी कंप्लेन करते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल वापस रीसेट करो, तो वो बोलते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं मोबाइल देख रहा था, अब फिर मैं मोबाइल देख रहा हूँ इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। दोनों में सत्य क्या है कि ये गोल गोल चक्कर है,
3: मुर्गी पहले या अंडा पहले। ये वही हाल है। परंतु यस, नींद के टाइम पर नींद करना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर हमने सही नींद ली है तो ये सारे बैगेजेस जो है ना, केवल एक नींद करने से सारे बैगेजेस को हम विदा कर सकते।
0: नींद इतनी पावरफुल है।
3: एक्जेक्टली, आप सही सुन रहे हैं, केवल एक नींद के ठीक करने, नींद हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों 8 घंटे की नींद का इम्पोर्टेंस है? दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे हम काम करते हैं, बाकी के घंटे हम एंटरटेनमेंट या अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, लेकिन 8 घंटे सबसे लंबा समय नींद को दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिचार्ज होते हैं, रिपेयर होते हैं, और वो रिचार्ज और वो रिपेयर कंपल्सरी, उसका कोई और ऑप्शन या अल्टरनेटिव नहीं।
0: शिंदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: कल्पना जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये जब समझते हैं कि नींद का अभाव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हम ये कहते ही हैं, और शायद हमारे कई युवा साथी इस बात को पहले सुना होगा। श्रोता मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर एक व्यक्ति भोजन नहीं करता है, हमारे साथी शायद इस बात को जान के हैरान होंगे कि अगर एक व्यक्ति भोजन के बिना अगर उसको आप रखना चाहें तो कई लोगों को हम एक हफ्ता 10-15 दिन तक स्टार्विंग पे रख सकते हैं, यानी वो बिना भोजन किए उपवास पे जीवन जी सकते हैं, सिर्फ पानी पे जिया जा सकता है। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दिन बिना भोजन के बिता लिए सिर्फ पानी पर, फिर भी शरीर चलता रहा। अगर उसी के मुकाबले आप भोजन को भी काट दो और पानी को भी काट दो तो भी व्यक्ति बिना पानी के 2-3 दिन तो जी ही सकता है। कोशिश करके, अगर कई कई लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 दिन एक हफ्ता भी बिना पानी के सिर्फ हवा पे जीते रहे, मगर अगर आप एक इंसान को सोने ही न दो, अगर 4 दिन लगातार उसको सोने न दें आप, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई सारे लोग जिंदा नहीं रह सकते। नींद का अभाव मौत का कराता है, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और अनेकों एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात सिद्ध किया हुआ है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग नींद की इस महत्व को नहीं जानते। मैं कल्पना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, रूबरू हूँ, और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, दोनों को ठीक रखने में मदद करता है। और समझ लें, आज आपने बहुत गुस्सा कर लिया, आज आपका मूड बहुत खराब है, आपने कुछ भी कर लिया, आप सो जाइए, सोने के बाद कुछ घंटे की नींद से आप उठते हैं, आप एकदम रिलैक्स उठते हैं, तो एक प्राकृतिक रूप से मिले हुए तोहफे के रूप में आप नींद को देखें, जो आपको हील करने में मदद करता है, आपके वेलबींग को रिस्टोर करने में मदद करता है। अगर हमें वो मौका देना चाहिए, और अगर हम इस मौके को अपने आप को नहीं देते हैं, ये तोहफा जो हमारे पास है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने ही आपको हानि पहुंचा रहे हैं। ये बात सभी बात।
0: ओके, तो नींद का इतना महत्व है ये तो समझ में आया, लेकिन कई बार लोग सोते तो है ही लेकिन बस लेट सो। कई बार हम 1 बजे सोते हैं तो नींद पूरी होती है, 7-8 घंटे भी होती है, क्योंकि हम 10 बजे उठ रहे हैं या 11 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, तो 7-8 घंटे की तो नींद हो रही है, तो क्या वो सेम वर्क कर रही है या यहाँ भी अंतर हो जाता है? क्योंकि लोग बहुत इरिटेट होते हैं कई बार जब पेरेंट्स बोलते हैं अरे टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, तो बहुत कई बार ये चीज इरिटेट करती है एक्चुअली।
2: इससे पहले कि मैं जानता हूँ कल्पना जी इसका उत्तर बेहतर दे सकती हैं, मैं अपने अनुभव से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता था, और क्योंकि आईटी कंपनीज ग्लोबल इंडस्ट्री हैं, वो ग्लोबली काम करती हैं, अलग अलग क्लाइंट्स आपके दुनिया के दूसरे दूसरे कोने में होते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स कैनेडा में, और मुझे उनके टाइमिंग्स के अनुसार काम करने की जरूरत पड़ती थी। कभी कभार मैं शाम को 7:30 बजे काम करना शुरू करता था और रात के 2-3 बजे तक काम करना पड़ता था, और कभी कभार मैं रात को 2:30-3 बजे सवेरे उठकर काम करना शुरू करता था, और दोपहर के 12 बजे तक मुझे वो काम करना पड़ता था। ये टाइम टेबल ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब जब मैं रात को 1-2 बजे तक सोता ही हूँ, वीडियो ही देख रहा हूँ, तो फिर उस समय पर तो मेरे पास मोबाइल फोन कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना नहीं था जब मैं काम करता था। बट आजकल के युवा ये समझ सकते हैं कि आज हम रात को 1-2 बजे तक तो ऐसे भी सोते, 12 बजे तक तो सोना होता ही है, तो 2 घंटा और काम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई ऐसा लग सकता है। अगर वास्तविकता में मैंने ये चीज देखी, जब मैंने ये चीज किया, इस तरीके का शिफ्ट वर्क किया, और क्योंकि मैं सोचता था कि मैं जवान हूँ, मेरा शरीर इन चीजों को मैनेज कर लेगा, और मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं क्योंकि मैं दिन में सो जाऊंगा इस बात, और मैं सोता भी था, तो मैंने ये चीज पाया कि इसकी वजह से मेरे स्वास्थ्य तब्दीली आने लगी, उसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ने लगा। आए दिन मुझे ना कोई प्रकार की बीमारियां, या तो पेट दर्द, या तो बुखार, सर्दी, खांसी, कभी कभार तो इंडाइजेशन, कभी अस्पताल में भर्ती होना, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू, और ये बॉडी के नेचुरल साइकिल को छेड़ने की वजह से होता है। प्रकृति में हर एक जीव अपने अपने समय के अनुसार काम करता है, सबका एक सिस्टम बना हुआ है, और उसी सिस्टम के अनुसार हमें चलने की जरूरत है।
0: लेकिन मतलब जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं भी कई बार रात को पढ़ती थी, बड़ा पीसफुल लगता है, शांति होती है, कोई नहीं होता है डिस्टर्ब करने के लिए, 3-4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा पीसफुल लग रहा है उस टाइम पढ़ना या कुछ और काम करना, तो क्या करें फिर?
3: पढ़ने की जहाँ तक बात है, वो थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए कोई बात, उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में आ जाते हो, रात की नींद आपकी पूरी हो जाती है। इम्पोर्टेंट रात की नींद का, जबकि प्रकृति भी अंधेरा करती है, आप दिन में 10 बजे तक 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आप कोशिश करना, देखना, ट्रायल करना, उसके बाद भी आपको थकावट महसूस होती है, भले आप 10 घंटा सोए फिर भी आपको थकावट महसूस होती है, ऊर्जा नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है, थोड़ा सा काम करके उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से,
0: ये तो हुआ है।
3: तो ये सारी चीजें दिन के सोने में, रात के सोने में आप 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो, ये है राइट टाइम सोने। हमारे पास कहीं प्रॉब्लम लेकर आते हैं, नाइट ड्यूटीज करते, जब हम देखते हैं जो श्री जी ने सिम्टम्स बताए उनके रात की काम करने की आदत की वजह से, वो सारे सिम्टम्स लेकर आते हैं, जब हम उनको पूछते हैं कि आपका काम क्या है, तो मैं सालों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। अब ये इसकी वजह से पूरा मानसिक, शारीरिक और ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता। हम उनकी कंपनी को फिर सलाह देते हैं कि हफ्ते में केवल 3 दिन का नाइट करवाएं और बाकी दिन उनको डे में आने के लिए चांस दें। इसीलिए कई जो क्षेत्र है उसमें ये रूल है, जैसे नर्सिंग में, क्योंकि पेशेंट को अटेंशन देने की जरूरत है, दवाइयाँ ठीक से देने की जरूरत है, उनको 2 नाइट्स के बाद एक छुट्टी मिलती है और उसके बाद उनकी नाइट एक हफ्ते के बाद लगती
0: है, वो बैलेंस
3: बैलेंस। इसलिए रात का सोना मस्ट है, इम्पोर्टेंट।
0: ओके, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो बात चली आती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बातें यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और इसको चेंज करना हमारी हेल्थ के साथ, हम जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी शुरू में कि हीलिंग कर देती है नींद, जो पुराना बैगेज है उसको भी हील कर देती है। श्रीनिधि जी, आप भी कुछ क्या कहना चाहेंगे उस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, हीलिंग नींद कर सकती है, मतलब हम कॉन्शियसली एफर्ट के बिना क्या इतना पॉसिबिलिटी है उस हीलिंग के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आरुषि जी, जब हम बॉडी के रिपेयर की भी बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब गाड़ी अगर खराब हो गई है, या ये समझे कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराने की जरूरत है, ऑयल चेंज करना है उसका, या मरम्मत करनी है, तो आप गाड़ी को गैराज में ले जाते हैं। अब आप गैराज में गाड़ी चलाते नहीं है, गैराज में गाड़ी खड़ी रहती है और उस पर जो काम होना होता है वो होता है। उसी प्रकार शरीर की गाड़ी का भी ऐसा ही है, जो हमारा मस्तिष्क, उसके लिए भी रिलैक्सेशन की जरूरत है, और नींद रिपेयर का काम करता है, रिजुविनेट करने का काम करता है। तो नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने के लिए प्रकृति ने जो समय बनाया है, उस समय के अनुसार हमें अपने क्लॉक को सेट करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि आप करके देखें, जबरदस्ती ही सही, हर दिन आप कोशिश करें कि आप रात को जल्दी सो, 10-11 बजे तक तो सो ही जाए, और फिर 1-2-3 हफ्ता करके फिर बताएं कि आपके स्वास्थ्य में, आपके मनोस्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो लोग जब उस परिवर्तन को देख लेते हैं तो अपने आप वो उस चीज को प्रायोरिटी दे। तो ये अनुभव वाली बात है, करके देखने वाली बात है, विज्ञान भी तो एक्सपेरिमेंट की बात करता है। हम बिना एक्सपेरिमेंट और उसके उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उसके आधार पर विज्ञान को मान। तो यही चीज वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी बता दिया है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, अनेक लोग इस चीज को वाउच कर, तो हमें भी वो चीज करके देखने की जरूरत है। बिल्कुल ये ताकत है प्रकृति, और इसी चीज के लिए लोग कहते हैं जब शरीर में व्याधि भी हो रही होती है तो लोग यही कहते हैं डॉक्टर साहब नींद की गोली दे दो, नींद का इंजेक्शन लगा दो, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और अक्सर ये देखा जाता है व्यक्ति वेल रेस्टेड होता है तो उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है। कुछ ना करना भी अपने आप में हीलिंग प्रोसेस है। हम सोचते हैं कि क्या करें इसके लिए क्या करें उसके लिए क्या करें, कभी कभार रिलैक्स करना, कुछ नहीं करना, वो हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा कारगर उपाय साबित होता है।
0: तो कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। जब पूछते हैं सवाल क्या करें, तो अभी कुछ नहीं करें बहुत जरूरी है, ये समझ में आया। और मुझे लगता है इस एपिसोड में तो हमने बहुत सारी नींद के बारे में बात कर ली है और किस तरह से नींद मदद करती है वो भी हमने समझा, और क्या क्या हीलिंग है, हम कैसे कैसे बैगेज कैरी कर रहे हैं, कैसे उसको हील करने की शुरुआत कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल जाते जाते दीदी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नींद के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो क्या सोने के पहले हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे नींद हमें अच्छी आए?
1: बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से होती है, रिलैक्सेशन से होती है। जब डीप ब्रीदिंग का हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शांति का अनुभव करता है, विचार रुक जाते हैं, हमारी भावनाएं शांत होती हैं। उस रिलैक्स स्टेट में हमें गहरी नींद का आनंद लिया जा सकता है। तो 2 मिनट के इस मेडिटेशन में हम यही देखेंगे कि सोने से पहले हम कौन से ऐसे विचार करें जिससे हमारा मन भी शांत हो और ब्रेन भी रिलैक्स फील करे। तो मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो किसी निश्चित स्थान पर बैठकर गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। गिने अपनी सांसों को, लंबी सांस गहराई तक भीतर ले और लंबा सांस छोड़ें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र करें, अपने संपूर्ण शरीर में रिलैक्सेशन को फील करें, एक एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें, अपने सिर को और मस्तक को फील करें कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन में विचार दोहराएं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बिल्कुल सुरक्षित, मैं प्रेम पाने और प्रेम देने के योग्य हूं। गहरी और लंबी सांस के साथ अपने आप को स्वीकार करें, सुरक्षित महसूस करें। चारों ओर से प्रकृति और परमात्मा के प्रेम से घिरा हुआ महसूस करें। और चलिए 1 मिनट के लिए हम गहरी नींद का अनुभव करें। खुद को ऑर्डर दें, मुझे 1 मिनट आंख बंद करके, सारे दरवाजों को बंद करके केवल गहरी नींद का अनुभव करूं। नींद मेरी फ्रेंड है, नींद मेरी दवाई है, नींद मुझे भीतर और बाहर से पूरी तरह से हील करती है। थैंक यू
0: सो मच दीदी। नींद सबसे बड़ी हीलर है, चाहे शरीर हो चाहे मन, और दोनों की ही हीलिंग आज हमें करनी बहुत जरूरी हो गई है, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन हम सबके लिए है। कोई सुन रहे हैं तो अपने घर वालों से भी ये जरूर शेयर करें और अभ्यास करें, जैसा श्रीनिधि जी ने भी बताया कि एक्सपेरिमेंट करके देखें कुछ हफ्तों तक, फिर आपको उसका असर खुद समझ में आएगा, उसका जीता जागता प्रूफ आप ही बन जाएंगे। और इसी वादे के साथ कि आप इसका प्रयोग करेंगे, इसी आशा के साथ फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने एक्सपर्ट्स को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, गाइड करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: और दोस्तों, मुलाकात होगी लव या जिंदगी के अगली कड़ी में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हों या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाड्डेदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गईं। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी देखो, आज के अखबार में क्या छपा है? मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है? उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
4: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
5: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
4: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
5: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलोसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहां भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
4: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
5: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
6: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
4: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
6: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
4: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
5: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
4: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक न रह जाए।
4: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी शुरू कर देना।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था। तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
3: मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
3: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
3: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, तुम मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
10: दादा,
0: जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीला नाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।

0: उन्हें सूर्य सेन को प्रीति लता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
1: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेशवाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
2: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीति लता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
1: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीति लता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: इसके बाद ही प्रीति लता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरकोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीति लता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
3: पूर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
4: मैं सूर्यदा से बात करता हूँ।
1: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
4: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
3: क्या क्या किया था उन्होंने?
4: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
3: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
0: प्रीति लता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनके कजन के रूप में उनसे मिलने गई ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीति लता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीति लता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
5: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
6: कैसे दादा?
5: प्रीति लता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती, इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
0: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीति लता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदा से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
1: प्रीति लता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
3: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
0: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीति लता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीति लता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीति लता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीति लता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रीति को घर में नजर बंद कर दिया गया।
7: प्रीति लता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
1: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर

0: छोड़ने की तैयारी करें। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
1: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
2: प्रीति लता को सूर्य दा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीति लता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीति लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।
3: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

माना देश के जवानों की तरह हम सरहद पर जाकर लड़ नहीं सकते, पर आपस में यूं पैसे, धर्म और भाषाओं के नाम पर लड़ने की बजाय एक होकर देश का मान तो बढ़ा ही सकते हैं ना। क्यों

सावन आया खुशियाँ लाया, हर डाली मुस्काई, बादल बरसे झूम झूम कर धरती ने हरियाली पाई, मन के आंगन में प्रेम की फुहार बरसती जाए, सावन का ये प्यारा मौसम हर दिल को महकाए, सावन का ये प्यारा मौसम हर दिल को महकाए। सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। तिरंगे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करेंगे। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, बारिश के मौसम में पेड़ की उंगलियों के बीच में जो फंगस हो जाते हैं उसका कैसे हम उपचार करेंगे, घरेलू नुस्खों के द्वारा जरूर आप जानेंगे और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप सभी को सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आप सुनिए आशियाना, जान जाएंगे। और आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर रहेगा, जो आपको अधिक से अधिक 3 बार बोल के सुनाना है, कम से कम 2 बार तो आपको बोलना ही है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, तिरंगे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी स्पष्ट। एक छोटे से गांव में रौनक नाम का बच्चा रहता था। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल में तिरंगा फहराया जाना था। रौनक बहुत ही उत्साहित था। रास्ते में उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज का तिरंगा दिखाई दिया। कुछ बच्चे उसके पास से गुजर गए, लेकिन रौनक ने उसे उठाया, साफ किया और सम्मान से अपने पास रख लिया। उसके शिक्षक ये सब कुछ देख रहे थे। उसके शिक्षक ने पूछा, रौनक तुमने इसे क्यों उठाया? रौनक बोला, सर ये सिर्फ कागज नहीं है, इसमें हमारे देश के वीरों की कुर्बानी, सैनिकों का साहस और करोड़ों भारतीयों का सम्मान है। शिक्षक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों से कहा, देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ना नहीं है, अपने देश, उसकी धरती, उसके झंडे और अपने कर्तव्यों का सम्मान करना भी सच्ची देशभक्ति है। उस दिन रौनक ने सबको एक छोटी सी बात सिखाई। इसीलिए कहा जाता है, तिरंगे का सम्मान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। सिर्फ ये रौनक के ऊपर ही नहीं, हम सभी पर लागू होता है। ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें भी अपने तिरंगे के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए इस तरह का नेक कार्य करना ही चाहिए। तो आइए फिर से सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ। बारिश में उंगलियों के बीच खुजली गलने पर घरेलू देखभाल कैसे करेंगे? देखिए, बारिश में उंगलियों के बीच नमी फंसी रहने से त्वचा सफेद पड़ना, गलना, खुजली या फंगल संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा हो ही नहीं, जरूरी थोड़े ना कि बीमारी होने पर ही इसका उपचार करें। अरे मैं तो कहती हूँ कि उपचार पहले ही कर लीजिए, बीमारी नहीं आएगी। उपचार क्या करना है, सावधानी बरतनी है। तो आप कैसे सावधानी बरतेंगे जान लीजिए। देखिए, पैरों हाथों की उंगलियों के बीच को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाइएगा, खास करके उंगलियों के बीच, ठीक है। फिर अगली बात है, आपका दूसरा पॉइंट आपको सुना रही हूँ, गीले मोजे या दस्ताने लंबे समय तक नहीं पहनना है। सूखे और साफ कपड़े आप पहनिएगा। गीले कपड़े हो गए हैं तो तुरंत ही चेंज करिए, क्योंकि ये भी स्किन एलर्जी कर सकता है, ठीक है। पैर की समस्या हो तो रोज साफ सूखे मोजे पहनिए और जूते भी सूखे रखिएगा। गीले हो रहे हैं, आप कहीं बाहर है तो एक वेस्ट कपड़ा अपने साथ रखिए, ताकि आप समय पर जूतों को पहुंच सको, अपने पैरों को भी पहुंच सको, ठीक है। नींबू, सिरका, बेकिंग सोडा या तेज घरेलू नुस्खे सीधे गली हुई त्वचा पर नहीं लगाए, गली हुई त्वचा पर, ठीक है, क्योंकि जलन बढ़ सकती है। अगर खुजली, लालिमा बढ़ रही हो, त्वचा फट रही हो, बदबू या पानी पी पा रही हो, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर सलाह लीजिएगा। बार बार होने पर चिकित्सीय सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सावधानी इस तरह आप रख सकते हैं, और इस तरह अगर आप सावधानी रखेंगे तो इन समस्याओं से मुक्त रहेंगे। इसीलिए कहते हैं, बारिश में नमी जितनी त्वचा की दोस्त लगती है, उतनी ही कभी कभी परेशानी की वजह भी बन जाती है। इसलिए साफ सफाई के साथ उंगलियों के बीच सूखापन बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो ये हुआ घरेलू उपाय, सावधानियां, और आइए आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, आप ध्यान से सुनिएगा, और अधिक से अधिक तीन बार आपको बोलना है, कम से कम आपको दो बार तो बोल के सुनाना है। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। यह आज का टंग ट्विस्टर है। जवाब देने के लिए, सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुना सकते हैं। आइए अब यहीं पर फिर से कल विराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: तिरंगे की शान में हम अपना शीश झुकाए, भारत माँ के चरणों में दिल से फूल चढ़ाए, वीरों की कुर्बानी को कभी न भूल पाए, आओ मिलकर आजादी का पर्व मनाए, आओ मिलकर आजादी का पर्व मनाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। कल स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या करने वाले हैं आप, जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, कैसे मना रहे हैं, कल का क्या आपका शेड्यूल है, प्रोग्राम है, और अपने स्टूडेंट लाइफ याद कर लीजिएगा कि कैसे आप विद्यार्थी जीवन में इस दिन को मनाते थे। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे, जानना चाहेंगे, ताकि कहते हैं ना कि सभी को एक दूसरे का हम क्या करते आए, कैसे इस त्यौहार को, त्यौहारी है ना 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इस त्यौहार को आप कैसे मनाते आए, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर है, जिसको भी मैं फिर से दोहरा दूंगी, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप जुड़िए और अपनी बात को रखिएगा। आज का टंग ट्विस्टर है, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। यह आज का टंग ट्विस्टर है, जिसको 3 से अधिक बार नहीं बोल के सुनाना है, सिर्फ 3 बार बोल के सुनाना है, और कम से कम आपको 2 बार तो बोलना ही है। तो क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कल की तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, करिए करिए। लेकिन अगर आज समय है तो बता दीजिए, आपके पास समय है तो बता दीजिए, कल की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। कल खास दिन है, कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हम, 79 वर्ष हो चुके हैं देश को आजाद हुए, और ये 80वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। तो जरूर आपने भी कुछ तो प्लान किया ही होगा। मुझे तो आज भी अपने बचपन की सारी बातें याद आती है कि कैसे इस दिन का उमंग उत्साह से मनाते थे, और ये सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं है, ये हमेशा की खुशी है। लेकिन कहते ना कि विद्यार्थी जीवन में इतने समझ नहीं होती है, लेकिन 10-10, 15-15 दिन पहले ही इस दिन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, हेलो
1: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूरज जय बोलता हूँ जताना से।
0: हाँ जी नमस्ते,
1: मित्रों को नमस्ते
0: जी, आपको भी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप
1: जी? और बस बिल्कुल अच्छे हैं, और जैसे बात कर रहे हैं आपसे और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं
0: जी,
1: और कल 15 अगस्त है तो बहुत अच्छा दिन भी है, और बताओ तो आज हमारे बेटे का जन्मदिन भी है।
0: अरे वाह क्या बात है, तो हम आपके बेटे के लिए भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर हमेशा उनको आगे बढ़ाए और उनके श्रेष्ठ संकल्प पूरे करे।
1: जी जी धन्यवाद आपका, क्योंकि दुआएं तो कभी खाली नहीं जाती है, कहते हैं ना कि कभी दुआएं कोई भी हो, दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, और दुआ से तो ये सब कुछ चल रहा है। आज इतना बड़ा जो हम तो खेल खेलते हैं, तो कभी कभी कोई काम नहीं आती दवा, तो दुआ ही काम आती है
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा दीदी लगा, और कल स्वतंत्रता दिन है, 15 अगस्त है, तो पहले तो दीदी मैं बताऊँ तो हम तो हर रोज दीदी 26 जनवरी 15 अगस्त स्कूल में जाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन भी करते हैं, बच्चों को कहीं वहाँ कार्यक्रम होते हैं तो देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ सलामी देने के लिए जाते हैं
0: जी जी जी,
1: जाना ही चाहिए दीदी, वो तो कहते हैं कि भारत देश हमारा
0: बिल्कुल
1: जो हुआ है, तो हम हमारी भी फर्ज है कि हम भी वहाँ जाके कुछ 2 शब्द सुने और भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करते पाए।
0: जी क्या बात है,
1: बस जाना ही जरूरी दीदी, कहाँ कई सारे बच्चे का कार्यक्रम भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, गरबा रास होता है, ये सारे प्रोग्राम हमारे स्कूल में होता है, बड़ी स्कूल में।
0: जी जी जी, और इसे ये बताइए आप जाते हैं तो कौन सा बड़ा फायदा होता है इसमें, बहुत बड़ा फायदा होता है, कौन सा,
1: क्या बोला दीदी?
0: जैसे हम इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं देशभक्ति वाले, ठीक है, स्कूलों के अंदर जाकर देखते हैं, विद्यार्थी जीवन में हम भी करते आए हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ये बताइएगा।
1: फायदा दीदी क्या है कि मैं बताऊँ, फायदा तो बहुत है कि जो हम वहाँ जाते हैं देखते हैं तो हमारे भी अंदर कुछ न कुछ ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि भी हम भी
0: क्या
1: कुछ
0: बात है लिए। जी जी जी
1: और
0: बहुत सुंदर बात कही आपने, इसी जवाब का मुझे इंतजार था।
1: जी जी जी तो बस हम तो सभी को दीदी ऐसे कहते हैं कि कुछ न कुछ आप करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। चलो आप लड़ाई में ना जाए, बॉर्डर भी ना जाए, लेकिन घर बैठे तो हम कुछ न कुछ ऐसा देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक का उपयोग कम करे, एक दूसरे को सहाय करे, एक दूसरे को इसी बात बताए, छोटे छोटे बच्चों को ध्वज हाथ में दे दे, लेकिन बताओ दीदी तो हमारी छोटी गोड़िया है तो कल ध्वज आके हाथ में लेके घूमेगी पूरा दिन।
0: अच्छा।
1: वो हर दम बोलते दीदी हमारे क्या है जो यहाँ बोर्ड लगा होता है गांव में, क्या है एक बोर्ड लगाता है साल इसमें तिरंगा दौड़ते हैं, तो हर दम जो बाहर से निकलती है बोलते ज्यादा वो झंडा ज्यादा वो झंडा, तो ऐसा उसमें एक माइंड में ऐसा अंदर भाव प्रकट हो जाता है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे बच्चों को भी ऐसा ही थोड़ा सा, हम छोटे बच्चे को भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा बताए कि ये तिरंगा है झंडा है।
0: हाँ बिल्कुल, तिरंगे का परिचय कराना चाहिए अपने देश के प्रति, जो भी
1: थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज देना चाहिए।
0: जी जी जी, जिन्होंने भी नेक कार्य किया है, देश के लिए शहीद हुए, उनकी भी जानकारी देनी चाहिए,
1: जानकारी देना जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कई लोगों को दीदी, कई बच्चों को पता नहीं कि हमारे देश किसने आजाद किया था, वो कौन कौन थे, वो फांसी पर चढ़े थे, वो सभी बताना ही चाहिए बच्चे को, तो आगे जाते उसको भी कुछ नॉलेज हो और कुछ पता चले कि नहीं हमारे देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानी ने सब काम किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलो मैं टंग ट्विस्टर भी सुना लो दीदी।
0: हाँ जी हाँ जी, टंग ट्विस्टर भी सुना दीजिए।
1: स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात। बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है कि जैसे कल बहुत सारे कार्यक्रम होंगे स्कूलों के अंदर, तो आप बता रहे थे कि हम देखने जाते हैं, उससे ये फायदा होता है कि हमारे अंदर भी देश प्रेम की भावना जगी रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और बच्चों के अंदर भी इस तरह की बातें उनके अंदर भी भरनी चाहिए और इस तरह की भावनाएं उनके अंदर भी जगानी चाहिए, तिरंगे के प्रति उनके अंदर प्रेम का भाव बढ़ाना चाहिए। उनको परिचय देंगे, समझाएंगे, तभी तो वो समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार। और आप क्या सोच रहे हैं, अरे आप कैसे मना रहे हैं ये तो बता दीजिए, हम किसी को बताने वाले नहीं है। हम भी तो मनाते आए हैं ना, स्टूडेंट लाइफ याद करिएगा, हर एक ने इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया है, जो आज दिन तक मन में उमंग उत्साह पैदा करता है। बचपन की बातें याद आ जाती है, इस तरह के खास दिन आते हैं तब। तो याद आता है जब मैं आपको बता रही थी कि 10 दिन 12 दिन पहले ही उमंग उत्साह शुरू हो जाता है, क्योंकि टीचर लोग पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि अब आपको राष्ट्रीय गीत बोलना है, सामूहिक गीत बोलना है, आपको इस तरह का कार्यक्रम करना है, कविता डांस वगैरह जो भी है, स्टेडियम में ये करना है, वहाँ पर वो करना है। तो तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है ना, और तैयारी के साथ साथ उमंग उत्साह और जोश बढ़ जाता है कि अरे वाह क्या बात है, मेरे देश के आज़ादी का दिन जो आ रहा है। तो वो ही उमंग उत्साह रहता है और बहुत ही खुशी खुशी ये जो 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो टीचर 7 बजे बुलाएंगे लेकिन 6 बजे स्कूल में पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो इतना उमंग उत्साह है कि पैर थमते ही नहीं है कि नहीं समय से पहले पहुंच जाओ, पता नहीं वो मिस हो जाए वो मिस हो जाए, कितने तरह की बातें होती है और समय से पहले पहुंच जाते हैं। टीचर भी आश्चर्य करते हैं कि अच्छा बाकी तो समय पर आते हो, आज जल्दी आ गए, क्या बात है। लेकिन समझते हैं उमंग उत्साह को, टीचर भी महसूस करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका उमंग उत्साह इतना झलकता है कि सामने वाला स्पष्ट देख लेता है कि हाँ इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जुनून है। तो इस तरह उमंग उत्साह से बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं 15 अगस्त पर। जैसे सबसे पहले तो स्कूलों के अंदर पहले राष्ट्रीय गीत बोला जाता है, राष्ट्रगान बोल करके फिर झंडा फहराया जाता है, फिर कविता पाठ भी चलता है, तो सामूहिक गान और भी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्रिंसिपल जैसे स्कूल के HM है या अन्य टीचर है वो भी स्पीच देते हैं देश की आज़ादी के लिए, किन्होंने किस तरह का योगदान दिया वो भी बताते हैं। उसके बाद स्कूल के सारे बच्चों को लेकर टीचर वहाँ जाते हैं जहाँ सारे स्कूल इकट्ठे होते हैं, ऐसा स्थान फिक्स होता है, जैसे कोई बड़ा सा मैदान होता है, स्टेडियम होता है, वहाँ जाते बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं और वहाँ पर फिर सभी का साथ कार्यक्रम होता है। कम से कम 50-60 स्कूल इकट्ठे होते हैं तो वो रौनक की देखने जैसी होती है। वो कभी अगर आपको भी ऐसा अवसर मिले तो कभी मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा स्थान हर कहीं नहीं होता है। बाकी सिंगल सिंगल अपने अपने स्कूलों में सभी मनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब इतने सारे स्कूल मिलकर के इस कार्यक्रम को मनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं, तो वो देखने लायक होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मैं आपको अलका जी काबरा कपासन से जुड़े हैं टंग ट्विस्टर सुनाना चाहते हैं, तो उनके द्वारा टंग ट्विस्टर सुन लेते हैं।
2: स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए, स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए, स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे।
0: चलिए, थोड़ा सा अटक गए हैं बहन और थोड़ा से इनसे गलती भी हुई है, लेकिन फिर भी कहते ना कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी कोशिश की अलका जी, तालियां आपके लिए। हेलो
3: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, नमस्ते, कैसे हो आप?
3: बस दीदी बहुत अच्छे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं दीदी, और बहुत अच्छी अच्छी आप बातें हो रही है तो हम सुन रहे हैं दीदी, और विषय भी बहुत बहुत अच्छा है दीदी। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो हमारे देश को आज़ाद किया स्वतंत्र सेनानियों ने, उन्होंने तो अपना काम किया और कर दिया, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? आज़ाद तो हुआ, हम आज़ादी से जी रहे हैं, जो भी होना है कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी आजाद होने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है दीदी? वो एक तो हमको अपने आप के अंदर चौकर जानना पहचानना जरूरी है दीदी।
0: जी जी,
3: कई लोग ऐसे भी है कि चलो कुछ ध्यान ख्याल नहीं रखते हैं देश के प्रति, कोई साफ सफाई या कोई भी, चलो अपने अपने कार्य में बिजी व्यस्त रहते हैं, और एक दिन के लिए जो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही जो भारत के लिए देशभक्ति दिखाते हैं, ये है वो, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं दीदी।
0: जी जी, जी
3: मैंने देखा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी,
3: तो मैं यही कहूँगा कि एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का सबूत हम खुद दे सकते हैं अपने आप को, किसी को अगर बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ये सब करते हैं और करेंगे ही। हम एक सच्चे भारतीय है, हम जो साफ सफाई का काम करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम एक सच्चे भारतीय है, हम किसी को अपने भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एक सच्चे भारतीय है, अपना भारत के प्रति कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, हम एक सच्चे भारतीय नागरिक।
0: क्या बात है
3: जी। और आपने जो बचपन की बात कही, तो हम भी बहुत, अभी भी आपने कहा कि सुबह सुबह चले जाते, तो बिल्कुल हम सुबह सुबह चले जाते थे, इतने कई दिनों पहले, इतनी उमंग उत्साह से हमारे जो विद्यार्थी के जीवन में इतना भाव रहा था तो हम ये करेंगे वो कच्छ में भी खाते थे और आज भी यही कर रहे हैं। और आज हमारे बच्चे स्कूल में जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो वो देखकर बहुत खुश तो होते ही है, लेकिन वो हमारे स्टूडेंट वाले पुराने लाइफ भी याद आ जाती है, तो ये भी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता था। तो यही कहेंगे कि हम अपने सच्चे भारतीय नागरिक होने का फर्ज बिल्कुल निभाए अच्छी तरह से।
0: जी बहुत सुंदर।
3: और आज के टंग टीचर सुनाओ दीदी।
0: हाँ जी बिल्कुल सुना दीजिए।
3: स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्र संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। जय हिंद।
0: बहुत बहुत अच्छा, लेकिन एक मात्रा सभी ने खाई है। सभी ने बोले तो अलका जी ने भी और आपने भी, धानेरा वाले सुरेश भाई ने। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपने स्वतंत्र बोला है, स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। तो आपने स्वतंत्र भारत बोला और स्वतंत्र सेनानी बोला, तो ये वो कहते हैं ना कि टंग ट्विस्टर में एक मात्रा भी अगर उड़ गई तो टंग ट्विस्टर का थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश हर किसी के बस में नहीं होती, इसलिए इसी तरह आप जुड़ते रहिए और टंग ट्विस्टर पहेली हमेशा कुछ ना कुछ पूछते हैं तो जवाब देते रहिए। अच्छा लगता है, कोशिश करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं जुड़ने से तो अच्छा है कि आप जुड़ते हैं और अपने दिल की बात भी शेयर करते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि स्कूल लाइफ में आप क्या करते थे। तो आइए इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनने के बाद पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: सुप्रभात, हाँ जी। तो कैसे हो आप? बढ़िया।
1: हाँ बहन जी, बस खेती का काम अब चालू है अभी
0: जी।
1: यहाँ एक रेलवे निकली है बहन जी, रेलवे लाइन, तो अभी रेलवे का काम यहाँ चल रहा है। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के खेत में आना पड़ता है अभी।
0: जी जी जी,
1: ये साधन की तरह देखो, आपको देता होगा।
0: जी जी जी, किचड़। हाँ जी, किचड़ बहुत होता है ना अभी बारिश के मौसम में।
1: हाँ
0: जी,
1: रेलवे यहाँ अंबाजी तक आने वाली है, जो तारंगा अंबाजी।
0: जी जी जी जी,
1: तो ये हमारे कुएं के पास ही।
0: जी जी जी,
1: तो ये काम चल रहा है। और क्या है आज का विषय? तो लेट हो गया थोड़ा।
0: जी कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास समय है। मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा ही हमारी पहचान का सितारा है। वीरों ने देकर प्राण हमें आजादी दिलाई, उनके बलिदान से रोशन भारत हमारा है। उनके बलिदान से रोशन भारत हमारा है। क्या कहेंगे आप? कैसे आप स्वतंत्रता दिवस मनाते थे विद्यार्थी जीवन में, और कल आप खास क्या करने वाले हैं?
1: हाँ बहन जी, कल तो हम तो मनाते थे। क्या है कि अगले दिन जो ये था ना ठंडा
0: जी,
1: तो कपड़े करके सुबह में स्नान करके स्कूल में जाते थे
0: जी।
1: और फेरी चौक में झंडा लेके फेरी के हफ्ते थे, एक हफ्ते थे, तो बहुत ये रहता था बहन जी। यह देश के लिए बलिदान जो बड़े बुजुर्ग जो शिक्षक थे, हमारे रिटायर्ड टीचर थे, उन्होंने ये बात करते थे, फिर प्रवचन करते थे। तो जो बलिदान दिया है आगे हमारे देश के लिए, वो बात करते थे, तो हमें भी ये लगता था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए
0: जी।
1: तो अब ये कर रहे हैं बहन जी, हमसे जो हमें कर रहे हैं देश के लिए
0: जी जी जी।
1: और कल हम जाएंगे स्कूल में, सुबह में स्कूल में जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल हमको आता है, माइक्रोफोन और ये सब, तो ये ठीक करके हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कितने रखना चाहिए, कैसे रखना बोलना, ये सब हम।
0: अच्छा,
1: करते।
0: तो कहाँ जाएंगे?
1: स्कूल में।
0: अच्छा, स्कूल में। ओके ओके, आपको स्पीच देना है।
1: हाँ
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। ओनली बेस्ट।
1: लाउड स्पीकर आदि का हमें करते हैं
0: जी,
1: हमें थोड़ा आता है तो ये सब।
0: नहीं, अच्छी बात है ना, आता है तो वो सभी का उसका फल मिलना चाहिए।
1: हाँ, और बच्चों के लिए बिस्किट आदि जो हमसे होता है वो लेके जाएंगे, और ये सब बातें बच्चों की सुनेंगे। बच्चे की बातें तो बहुत अच्छी होती है वैसे।
0: जी जी जी,
1: छोटे छोटे बच्चे जो माइक्रोफोन से बोलते हैं ना
0: जी,
1: तो बहुत बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ा ये करते हैं कि इधर नजदीक रखो तो आवाज क्लीन आएगी, ऐसा थोड़ा ये करते हैं।
0: जी जी जी जी, जी।
1: करेंगे, कल जाएंगे, और हमारे देश के लिए महान पुरुषों ने क्या क्या बलिदान दिए है, ये सब बातें हम।
0: जी जी जी, बिल्कुल। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
1: लिखना पड़ेगा, और अभी तो खेत में हूँ तो ये लाया नहीं हूँ, कोई स्कैन बैन है नहीं हमारे पास।
0: अच्छा,
1: तो हाँ सुनाओ तो सही, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ
0: जी। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों

0: ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। ये आज का टंग ट्विस्टर है।
1: बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करता हूँ
0: जी,
1: बाद में उसका।
0: ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई, आप जुड़े हैं इसके लिए।
1: थैंक यू बहन जी, सभी दोस्तों को आपको स्वतंत्र
0: जी, आप सभी को भी इन एडवांस सभी को ढेर सारी शुभकामना जी जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी अपने बातें बताई है, कैसे आप क्या करने वाले हैं कल स्कूलों के अंदर, वह आपने बताया है। हेलो, तो देखिए हर एक के अंदर उमंग उत्साह है और उमंग उत्साह बरकरार रहना ही चाहिए। हम उमंग उत्साह में रहेंगे तभी तो बच्चे हमें पूछ पाएंगे ना, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं घर में वो भी आश्चर्य करते हैं ना कि अरे आज थोड़े अलग क्यों लग रहे हैं आप, हमेशा तो नॉर्मल रहते हैं, आज इतना उमंग उत्साह, इतनी खुशी किस बात की। तब हम उनको बताएंगे कि देखो कल ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, उनके अंदर भी देश के प्रति प्रेम की भावना जगती है और उनको भी लगता है कि हम भी बड़े होकर के कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, और करते भी है। बच्चे जब ठान लेते हैं तो क्या नहीं करते, सब उनके हाथ में है, सब कुछ करते हैं। देखते हैं ना आज भी हमारे वीर सैनिक बॉर्डर की किस तरह रक्षा करते हैं और कैसे हंसते हंसते अपने प्राण भी दे देते हैं, वो भी तो किसी माँ का लाल है, किसी बहन का भाई है, किसी का पति भी है, लेकिन परिवार से डिटेच रह करके, देश से प्रेम करके, देश के लिए कुर्बान हो जाना हर किसी के बस में नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। और आपको पता है कल हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं? जी हाँ, 80वां। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। ये दिन हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आजादी केवल अधिकार नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक जिम्मेदारी भी है। कैसे? तो देखिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करेंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और भारत को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, शिक्षित और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। कोई तो संकल्प हम कर ही सकते हैं ना, तो कोई भी संकल्प करिए कि भाई ऐसा कार्य हम करेंगे, तो ये भी देश को मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। कितने बार लोग सोचते हैं कि अरे भाई पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था देश, इसलिए लोग आगे बढ़े और अंग्रेजों से देश को आज़ाद करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तो देश आज़ाद है, हम क्या करें। तो इतनी सारी बातें बताई, उनमें से एक आप कर ही सकते हैं। जैसे सुरेश भाई ने भी बताया था कि भाई आप प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ मत करिए, प्लास्टिक मुक्त होइए, तो ये भी देश के विकास के लिए योगदान ही रहेगा। और इससे भी कितनी दुआएं मिलेगी जब गाय, ये जो पशु है वो इन प्लास्टिक को खाएंगे नहीं और मरने से बच जाएंगे, तो वो भी तो दुआएं हुई ना। हम इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, ये भी नियम ले लीजिए। ट्रेनों में देखिए, बसों में देखिए, सरकारी स्थान पर आप कहीं पर भी देख लीजिए, इधर पान खाया, इधर पिचकारी मारी, इधर पड़ी की खाई, इधर थूका, कितनी गंदगी। तो कम से कम इस गंदगी को हम बचा सकते हैं इधर उधर थूके बिना, तो भी ये देश के विकास के लिए सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है। सफर में अक्सर हम देखते हैं मूंगफली खा करके लोग इधर उधर छिलके फेंक देते हैं, क्यों? हमारे घर में हम ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। अधिकार के लिए हम आगे बढ़ते, तोड़फोड़ करने को शुरू हो जाते, हमें ये नहीं मिला, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और सफाई के लिए आगे नहीं बढ़ते। उस समय क्या हमारा अधिकार नहीं है कि स्वच्छता हमारा ही अधिकार है और हमें गंदगी नहीं फैलानी है? अक्सर मूंगफली के छिलके इधर उधर फेंके होंगे, और आजकल तो फिर क्या क्या नहीं चल रहा है, बच्चे ये जो पैकेट की चीज़ें खाते हैं तो वो खा करके भी उस वेपर्स को इधर उधर रेपर्स फेंक देते हैं, वो भी कचरा होता है, उससे भी कितनी बार बड़े बुजुर्ग या बच्चे स्लीप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। और छोड़िए हादसे तो होंगे तब होंगे, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता ना, गंदगी अच्छी लगती है। हमारे घर में हम ऐसा नहीं करते हैं, तो सरकारी साधनों का ध्यान भी रखिए। हेलो
1: हेलो, कैसे हो सब?
0: हाँ जी, अच्छे हैं। दयाराम जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। जी थैंक यू।
1: तो आप सुनाते?
0: हाँ जी सुनाइए।
1: वो सब खुद पता के सफल समझते हैं तो कचरा होते ही नहीं सकते।
0: जी
1: सही बात है आपकी, सही बात है। और आपका कुछ,
0: आप कल की तैयारी कैसे कर रहे हैं? कल स्वतंत्रता दिवस है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: बोलो जी, विष्णु नहीं
0: है। हम कह रहे हैं कल स्वतंत्रता दिवस है, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कल के दिन की?
1: हम तो हमारे काम जाएंगे, अभी झंडा लहरा दिया है तिरंगा घर पे ऊपर।
0: आज?
1: और
0: आज ही लहरा दिया?
1: आज लहराया, दो दिन पहले लहराने थे, वो तो आगे से आदेश था अभी।
0: अच्छा,
1: फिर लहरा दिया है
0: जी
1: घर के ऊपर, और कल जाएंगे वो इधर हमारे गांव में स्कूल में।
0: अच्छा
1: हाँ
0: ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे? आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
1: ना आज भी सुनाया, मैं अभी काम में था बिजी।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार आप जुड़े इसके लिए। तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से, और पूजा जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं टंग ट्विस्टर सुनाने के लिए। तो पूजा जी के द्वारा सुनेंगे।
2: स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए।
0: बहुत सुंदर। तो पूजा के लिए भी ढेर सारी तालियां। एक शब्द के, एक मात्रा के इनसे भी मिस्टेक हुई है, फिर भी अच्छी कोशिश की है। तो बस विषय को यही समाप्त करते हैं, और स्वतंत्रता दिवस की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब यहीं पर एक गीत सुन करके फिर आपसे बात करेंगे, रेसिपी में अच्छे से चीजें सिखाएंगे। तो सुन लेते एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकीगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं बुजुर्गों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो आप फटाफट भी बना सकते हैं और सभी खा सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग आप भी खा सकते हैं, वयस्क भी, ठीक है, लेकिन हेल्दी वाले, ठीक है, क्योंकि बुजुर्गों की देखिए बुजुर्ग अवस्था जब होती है तो खाने की इच्छा थोड़ी खत्म हो जाती है। फिर दूसरी बात यह, दांत नहीं होते हैं तो चबा नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातें होती है, खाने पीने में काफ़ी दिक्कतें आती है, उस समय हमें सोचना पड़ता है कि क्या बनाए या क्या नहीं बनाए। अब भूख तो सभी को लगती है, ऐसा तो नहीं है कि खाना हो तो ये खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, रोटी रख दी, सब्जी रख दी, ऐसा थोड़ा होता है। उनके लिए थोड़े सॉफ्ट चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दांत नहीं होना तो भी वो आराम से खा सके। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट ओट्स के चिल्ले पहले सिखा रही हूँ। अलग अलग प्रकार के चिल्ले आप बना करके बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि खाते एक या आधा चिल्ला, वो भी अगर टेस्टी हो, उनके पसंद का हो, तो मतलब बड़ी रुचि से खाएंगे। और ऐसे ही हम ऐसे ही रख देंगे तो बिना मन से खाना है तो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लेंगे, है ना। तो अच्छे से बनाइए। तो ओट्स का पहले आप पीस लीजिए, मैं सामग्री और विधि दोनों ही साथ में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन चलिए पहले मैं सामग्री बता देती हूँ। ओट्स लेना है आपको, फिर आप लीजिए शिमला मिर्च, गाजर, आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, आप लौकी भी ले सकते हैं, ठीक है, सब्जी आप ले सकते हैं, जैसे पालक है तो थोड़ी सी पालक ले सकते हैं, धनिया ले लीजिए, फिर आप लीजिए सौंफ, जिसको गुजराती में बरियाली कहते हैं, फिर आप लीजिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च ले लीजिए, चाहिए तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी ले लीजिए, और थोड़ा सा हींग, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री। ओट्स लिए, फिर से दोहरा रही हूँ, ओट्स, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, लौकी, हरा धनिया, पालक हो तो पालक भी ले सकते हैं, मेथी की भाजी हो तो थोड़े से पत्ते मेथी की भाजी के भी ले सकते हैं आप, हरी मिर्च, अजवाइन, जीरा, सौंफ और नमक तो लेना ही है स्वाद के अनुसार, और घी, ठीक है। ये हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, ओट्स आप पीस लीजिए, ठीक है, ताकि आटा बन जाए, फिर आप इस आटे को पानी में गला दीजिए, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके इस आटे को गला दीजिए। इसमें अब आप थोड़े से अजवाइन थोड़े थोड़े से डालना है, ठीक है, चपटी चपटी, तो थोड़े से अजवाइन डाल दीजिए, थोड़े सौंफ डाल दीजिए, थोड़ा जीरा डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर बारीक काटते तो बारीक काट के डालिएगा, लाल मिर्च पसंद है तो थोड़ी सी डालिएगा, लेकिन बुजुर्गों के हिसाब से वो ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते, ठीक है, तो उस हिसाब से आप डालिएगा, फिर आपको खाना हो तो बुजुर्गों के बनाने के बाद, बच्चों के बनाने के बाद आपके थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं मसाले, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब इनको गला के आप रख दीजिए, ये गलेगा खीरा, तब तक के लिए आप सब्जियाँ साफ कर लीजिए, सारी सब्जियों की धुलाई करके गाजर कद्दूकस कर लीजिए, शिमला मिर्च कद्दूकस कर लीजिए और लौकी कद्दूकस कर लीजिए, पत्ता गोभी कद्दूकस कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा लेना, ये भी कोई ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े थोड़े से मात्रा में, अगर मेथी की भाजी है तो मेथी के पत्ते कुछ ले लीजिए, 8-10 पत्ते, पालक है तो पालक के 2-4 पत्ते बारीक काट करके ले लीजिए और ये सब इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, फिर हिला दीजिए, थोड़ा सा हम पकौड़े बनाते उससे भी थोड़ा सा ढीला घोल रखना होता है, ठीक है, तो इस तरह घोल तैयार कर लीजिए, फिर आप तवा लीजिए, थोड़ा सा मोटे पेंदे वाला या नॉन स्टिक, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर लोहे का तवा लिया है मोटे पेंदे वाला, तो उसमें पहले आप साफ कर दीजिए, साफ करके घी की पोती लगा दीजिए, फिर इसको गर्म होने दीजिए, अब आप सब्जी वाला चम्मच खीरा से भरिए और चारों तरफ आप डालिए,
चिल्ले पर थोड़ा सा डाल दीजिए पहले तो, चारों तरफ फैला दीजिए चम्मच से, और भी चाहिए तो आप भर लीजिए। बड़े बड़े चिल्ले बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खीरा लीजिए, छोटे छोटे चिल्ले बनाना चाहते हैं तो कम लीजिए खीरा, ठीक है। और फिर इनके किनारों पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए सब तरफ एक एक बूंद, और सिकने दीजिए मध्यम आँच पर। फिर आपको लगे कि अब ये हमारा चिल्ला सिक गया है तो आप खुरपी की मदद से उसको पलटी मार दीजिए और घी की पोती लगा दीजिए एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ सिक जाए तो फिर उसके पलटी लगाकर उधर भी आप घी लगा दीजिए। फिर दोनों तरफ सेक करके दूसरा चिल्ला ऐसे ही बनाना है, तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है। बच्चे क्या है, अक्सर सब्जियां नहीं खाते, माताएं चिंता करती है हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता है, तो इसी बहाने वो सब्जी खाना सीख जाएगा। चिल्ले के अंदर इतनी सारी सब्जियां है उसको पता ही नहीं होगा, और स्वादिष्ट भी लगेगी, फायदा भी करेगा बच्चों को भी, और बुजुर्गों को भी आवश्यकता है सारे प्रोटीन विटामिन्स की, उनके भी तो फायदेमंद तत्व जाने ही चाहिए, और उनके भी जो खाने की रुचि समाप्त हो जाती है, वो खाने के प्रति रुचि उनके फिर से उत्पन्न होगी। तो इस तरह आप अलग अलग चिल्ला बना करके आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बुजुर्गों को भी खिला सकते हैं। तो जैसे और भी आपको सिखाती रहूँगी, आज तो एक ही सिखा पाई हूँ क्योंकि समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग ज़रूर लगाना है, ठीक है। भोग लगाने से भोगनाएँ भागती है, और हम अक्सर कहते हैं ईश्वर भावना का भूखा है न कि खाने का, तो बस वो भासना मिलती है, इसलिए भोग जरूर लगाइएगा। और आइए अब यहाँ पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर आपने गौर किया होगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, कैसे आप बारिश के मौसम में सावधानी रखेंगे अपने पैरों की उंगलियों के बीच जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इन सब का तो सावधानियां जरूर रखिएगा। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको ओट्स का चीला बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामियों ने स्वतंत्र भारत के सपने सजाए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के सितारे बनाए। तो स्वयं के लिए भी ढेर सारी तो ये आज का टंग ट्विस्टर था। सुरेश भाई झोटाना से जुड़े हैं, आपने एकदम परफेक्ट सुनाया है। और अलका जी काबरा कप्पासन से, पूजा जी दहली से, कंचन भाई मंडाली से, दयाराम जी इकबालगढ़ से और दीपा सोमानी कप्पासन से, आप सभी ने भी अच्छी तरह कोशिश की है। कंचन भाई ने नहीं सुनाया, दयाराम जी नहीं सुनाया, बाकी आप सभी ने सुनाया है और सुरेश भाई ने बहुत ही अच्छी तरह सुनाया है। तो पुनः ताली। और सुरेश भाई, कंचन भाई विषय में जुड़े हैं, दयाराम जी, सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी अच्छी कोशिश की है टंग ट्विस्टर सुनाने की। तो आपके लिए भी और विषय के लिए भी ढेर सारी ताली। आज का मीठा मोती है, अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। अब आपको मैं देशभक्ति की प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे। कल क्या है? कल स्वतंत्रता दिवस है, तो कल अंताक्षरी का दिन भी है, तो कल की थीम रहेगी देशभक्ति गीत। ठीक है, तो देशभक्ति गीतों की थीम रहेगी। आज ही आप तैयारी कर लीजिएगा और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और प्यारी सी कविता का आनंद लीजिए आप और मुझे दीजिए अनुमति। आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। पुनः आपको इन एडवांस स्वतंत्रता दिवस की और छोटी तीज की, हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। लहर लहर लहराए तिरंगा, भारत माँ की शान है, केसरिया साहस की गाथा, सफेद शांति की पहचान है। हरा रंग खुशहाली लाए, चक्र प्रगति का ज्ञान है, तीनों रंगों से सजा हुआ मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जिन वीरों ने हंसकर अपने प्राण देश पर वार दिए, उनकी पावन कुर्बानी ने आजादी के दीप जला दिए, उनके सपनों का भारत हो, हर मन में सम्मान रहे, नफरत मिटे, प्रेम बढ़े और भारत सदा महान रहे। आओ मिलकर शपथ ये ले, आओ मिलकर शपथ ये ले, देश का मान बढ़ाएंगे, मेहनत ईमान और एकता से भारत को आगे ले जाएंगे। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, इसके आगे शीश झुके, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान।
1: बहू

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों, पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या है ऐसी बातें जिसे हम कहें जीना इसी का नाम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और उसको हम कैसे सामना करते हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग बन जाते और उनका जीवन एक आदर्श बन जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही अनुभवों से और उदाहरणों से आज हमारे बीच में है आदरणीय गंगाधर बाई जी। आप पिछले 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 4 दशकों से अधिक समय से अब अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में गंगाधर बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन का भी बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
0: शुक्रिया भाई जी। हम सबसे पहले आपकी वो जर्नी जानना चाहेंगे जो आपका बचपन है, कहाँ पे बीता, आपकी मात पिता क्या कर रहे थे, आपकी जो लौकिक जीवन है और फिर वहाँ से अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे आई।
1: मेरा जन्म एक छोटे से गांव गुजरात में भुज कच्छ में नखत्राणा में हुआ और बचपन में हमारे जो घर में एक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे हम सभी, हम गीता पाठी थे और हमारे घर में हमारे पिताजी और हम सभी कुटुंब में बहुत अच्छा एक नियम था कि गीता का पाठ पठन करना है और पाठ पठन करने के बाद ही भोजन मिलता था। तो हमें भी वो नेचुरली वो संस्कार, हमें वर्षे के रूप में भगवान को याद करना और उसके बाद ये भोजन करना, ये बचपन से ही संस्कार। और फिर हमारी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद मैं एसएससी तक, एसएससी मैंने टॉपर किया गुजरात में ही। गुजरात से फिर मैं वहाँ से जाना हुआ, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में फिर अहमदाबाद के पास में एक धनसुरा करके गांव है आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो वहाँ हम रहे और वहाँ टॉपर करके फिर अचानक हम व्यवसाय हमारा नागपुर में था, परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और पहले मेरा कॉमर्स साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स किया क्योंकि व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय का भी काम संभालते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे। ऐसे में भक्ति मार्ग का जो संस्कार था कि हम वहाँ पर एक केंद्र चलता था स्वाध्याय परिवार का, जो पांडुरंग आठवाले जो बॉम्बे में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब हमारे घर में कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन हमारे गांव में ही पूरे ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो अपने जो भी खेती बाड़ी का वो सारा व्यवसाय करते थे, लेकिन मैं ही एक ऐसे, मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ाई में तो मैं फिर वहाँ जाके पढ़ाई भी किया और साथ साथ धंधा भी।
0: उस दौरान आप अकेले थे या आपके और भाई बहने भी थे?
1: हाँ, घर में हम 4 भाई और 3 बहने हमारे पिता के संतान थे और मैं सबसे छोटा था। और हाल ही में हमारे कोरोना काल के दरमियान हमारे 2 साल में 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा। माता पिताजी ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया और व्यवसाय भी चल रहा था तो, और मैं तो यहाँ आ गया था और सभी अच्छे व्यवसायी घराने के अभी एक उसके बच्चे हैं, सभी व्यवसाय करते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई व्यवसाय किसी का नागपुर में और कोई एक में फार्म हाउस है जहाँ गुजरात में,
0: मतलब सभी बिजनेस करते।
1: हाँ, सभी बिजनेस करते हैं। और हम गीता पाठी होने के कारण हम वहाँ फैक्ट्रियों में जहाँ हमारा व्यवसाय था तो बुधवार की छुट्टी रहती थी और वो छुट्टी रहने के कारण हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर में जाते थे। हमारे एक उसको भाई कहते, जो हमारा बड़ा लीडर था तो वो भाई कहते थे उसको, स्वाध्याय परिवार में भाई कहते, तो बहुत अच्छा था। और हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हर बुधवार को वहाँ जाके गीता के बारे में प्रसार प्रसार करना, बताना, ये सब करते थे। लेकिन ऐसे में भक्ति भाव तो थी और हमें समाज में हमारा बहुत नामाचार भी था क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे और भगवान का नाम लेते थे तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं, देखो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में फिर एक समय ये हुआ, अच्छा लगता था लेकिन जब एक दिन में शाम को करीब 6-7 के बजाय होगा, मैं एक ऐसे जा रहा था तो वहाँ एक छोटा सा एक जिसको ब्रह्मा कुमारी इसकी पाठशाला कहते हैं, पाठशाला के रूप में वहाँ था, जहाँ हम रहते थे उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ लिखा था कि अब दुनिया का परिवर्तन होगा और सत्ययुग आएगा, और ऐसे स्वस्तिक का चित्र बना हुआ बाहर में ऐसे बड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ ज्योतिषी वगैरह होंगे, तो मैं 7 बजा था तो जा रहा था, अंदर कुछ लोग बैठे थे, लाल लाइट लगी हुई थी और अंदर 30-40 भाई बहने होंगे और वो योग कर रहे लाल लाइट में, और बड़ा अच्छा। पहले ही जैसे मैं प्रवेश कर, और बहुत पुराना घर था, जैसे जर्जरी भूत के अवस्था में, लेकिन अंदर क्लास अच्छा चल रहा था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। बैठ जाने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और लाल लाइट में से वाइट लाइट हो गई, और सामने एक भाई था जो बैठा था संदली पर, तो उन्होंने उठा तो सब जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। तो संदली पर जो भाई था जिसका नाम गजानन भाई थे, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आप कहाँ से आए हो, जैसे नए कोई आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे भी पूछा कि आप क्या करते हो, किस लिए आए हो, क्या है जो भी है। और मेरे को बोले आपको 5 मिनट थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मैं ये हमारा ये चित्र लगा है वो, मैं क्योंकि दीवारों में चित्र लगे थे जिसको ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में वो चित्र है वो सारा लगे हुए थे, तो बड़े व्यवस्थित लगा हुआ था, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर सर्व आत्माओं का पिता, उसके बाद झाड़, उसके बाद सीढ़ी, और इस तरह से लगा हुआ। तो मुझे वो समझाने लगे, तो पहला तो आत्मा, चलो आत्मा ठीक है, फिर परमात्मा का परिचय दिया, वो भी ठीक है क्योंकि चित्र में स्पष्ट दिखता भी था, और हम भी गीता पाठी होने के कारण वो सारी हमें समझ में आती थी बात। फिर आगे जाके ऐसे चलते चलते झाड़ का, ये सृष्टि का उत्थान पतन की कहानी, सीढ़ी में जो भारत कैसे ऊंचा था, बनता है, नीचा होता है, ये सारी बातें आई। फिर एक बहुत सुंदर चित्र हमारे मेरे मनपसंद का आया, जिसमें एक गीता के बारे में लिखा था, उसमें लिखा था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो जब ये बात आई तो हम गीता पाठी होने का मेरा ध्यान वहाँ गया, और उसमें बहुत सुंदर चित्र बताया हुआ कि एक परमात्मा की किरणें आ रही है, नीचे एक शक्ति दल खड़ा है, और प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ है, और ऐसे सामने में राक्षस जा रहे हैं इस तरह से। तो वो बड़े चाव से बताने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, ये तो हिंसक है। भगवान अगर हिंसक का ज्ञान देता है या समझ देता है तो फिर हिंसा करने वाले को तो कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे अपील की, भाई अहिंसक युद्ध। फिर उन्होंने सारी बातें कही कि जो हम मन से जो सोचते हैं, देखते हैं और जो करते हैं, जो विकृत मानसिकता को लिए हुए चलते हैं, इसको भी हिंसा कहते हैं। ये बात मुझे ज्यादा अपील करी, और मुझे तुरंत याद आया कि हम तो गीता पाठी है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम एक घर चॉइस करते थे और वहाँ गीता ज्ञान करने जाते थे, तो एक तरह से हंसी की बात तो ये हुई कि समझ में आई कि मुख मेरा बगल में छुरी वाला काम हम करते थे, कि मन में हमारी कुछ विकृत भावना, क्योंकि हम यंग थे तो विकृत मानसिकता लेकर भगवान का मुखोटा लेकर हम ज्ञान देने जाते, ताकि लोग समाज में हमारा अच्छा नाम था। ओके, उसके बाद ये बात जैसे ही पकड़ में आई तो फिर मैंने फिर सारा समझा के 5 मिनट में बोले आप आओ 7 दिन का कोर्स करिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बोले कि आप आधा आधा घंटा भी आइए, ये हम सारा समझा देंगे। फिर मेरे को एक किताब दी उसने, उसमें उस टाइम वो 3-4 रुपये की वो किताब दी, पथ प्रदर्शन, जो ब्रह्मा कुमारी का बेसिक कोर्स की समझानी है उसमें, तो वो मुझे दिया। तो मैं फिर लेके गया घर, कि पढ़ाई तो करते थे, तो रात को जैसे ही उस किताब को मैंने लेके पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। अब भूल कहाँ हो रही है, ये बात मन में गूंजती रही, अरे यार ये तो मेरा मन में अंदर एक है, बाहर एक है, ये बात बहुत खटकती रही। भगवान के नाम से मेरा पाप हो, भगवान के नाम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे श्रापित करेंगे। तो ये बात रात को
0: क्यों लगा आपको?
1: मुझे इसलिए लगा क्योंकि भक्ति मार्ग में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थूल रूप में सब करते हैं, और स्थूल रूप में जैसे तिलक लगाया, थोड़ा सा अच्छे मीठा बोल बोला, तो लोगों को लगता है कि भक्तिभाव वाला आदमी है, तो लोगों की श्रद्धा होती है, तो हमें आदर सत्कार से देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही फिर मैंने

0: ये बात आई कि भाई ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये सारा अच्छे से फिर से पढ़ा, ऐसे 2-3 दिन पढ़ा, और पढ़ने में बात समझ निष्कर्ष तक पहुंचा कि नहीं, आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: मतलब इनसाइड आउट होना चाहिए, हाँ, जो अंदर है वही बाहर।
0: अभी
1: एक मुखौटा पहन करके नहीं,
0: मुखौटा पहनकर देने से तो खुद को भी धोखा है और समाज को भी धोखा है, और एक अच्छा कर्तव्य नहीं मानेंगे। तो ये जो बातें आई सामने, उसके बाद मैंने स्टडी करके कोर्स तो करने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारा व्यवसाय था तो सुबह सुबह फैक्ट्री खोलनी है और फिर शाम को लेट होते थे, तो इस तरह से, और दिन में कॉलेज जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं। ये मन में अंदर ही से विचार आया और अंदर दृढ़ किया, नहीं अभी मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये जीना चाहिए। संस्कार थे भक्तिभाव के, तो फिर ये ज्ञान मिला और ज्ञान को फिर उसको श्रवण करने लगे और समझ में आया। तो अब बड़ा एक ये ज्ञान ऐसा रियल में जीना जीवन तो बड़ा चमत्कारिक है, जैसे जीवन एक मृदुभाषी जैसा हो जाता है, बहुत साइलेंटली चलना, अनावश्यक चीजों को अपने आप ही दरकिनार हो जाती है।
1: सो जिस तरीके से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से वही गीता पाठी भक्ति मार्ग में करते हुए भी आपको दोनों में अंतर समझ में आया,
0: हाँ।
1: और प्रैक्टिकली लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली गीता क्या है, वो आपको समझ में आया। तो गए तो आप अकेले, और वो स्वस्तिक ने आपको अट्रैक्ट किया और ज्योतिष समझ करके गए। फिर जब आपके घर में ये पता चला कि आप आश्रम में जाते हैं, तो फिर आपके भाई बहने, आपके परिवार वाले इसको स्वीकृति दी या फिर?
0: ये बड़ी कहानी है, बहुत मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं कहा ना कि जैसे उसमें चलते थे तो समाज में हमारा बड़ा नाम और आदर थे, और लोग हमें बड़े चाव से बड़े प्यार भी करते थे, सम्मान भी मिलता था। कहते हैं ना, जब दुनिया की जिस हवा चलती है उस तरफ चलते हो तो जमाना आपको साफ साथ देता है, लेकिन जब खुद को जानने के खुद से चलने लगे तो जमाना सारा विरोध हो जाता है। बस वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटा। तो हम चलते थे, लेकिन अब उस समय काल में ब्रह्मा कुमारी के सेवाएं इतनी ना होने के कारण मिस भ्रांतियां बहुत थी। तो और हम ये चलने लगे, रेगुलर मुरली सुनने लग गए, तो बाबा की जो मुरलियों बड़ी जादुई है, जादुई इन द सेंस बड़ी स्पष्ट है, जैसे कि दर्पण है, तो वो बहुत खिंचाव होता था। बाबा का क्लास और योग ना करे, वो जैसे कि अंदर से जैसे बेचैनी होती थी, मतलब
1: तो परमात्मा को याद करना और महावाक्यों को
0: महावाक्य सुने बिना मना बेचैनी। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें या तो शाम को क्लास होता है या तो सवेरे अर्ली अर्ली होता है, योग भी अर्ली अर्ली होता है, और हमारा भी समय था, वो भी कारखाना खोलना जो भी है व्यवसाय का, लेकिन बाबा की खींच ऐसी होती थी कि हम मुरली सुने बिना तो रह नहीं सकते थे। तो अब क्या करें, तो और ये जीवन में जब ऐसा धारणा हुई और चलते रह गए और पढ़ाई करते थे, तो मेरे जो दोस्त साथी थे तो उसके साथ भी बैठना उठना होता था, लेकिन वो लोग होटल में खाना फिर वो करना, मैं बोला मुझे भूख नहीं, मेरे पेट में ऐसे मैं अवॉइड करता था। मन में ये था कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि परमात्मा मुरली में ये बताते थे कि अन्न वैसा मन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये बहुत स्पष्ट आता था। और करी करी इसी टॉपिक पर 10-10, 15-15 दिन वही मुरली की धारा चलती, इसलिए आप भगवान की सुने निश्चय हो गया। तो फिर
1: जी, तो अभी भी वो लोग आपको विरोध करते हैं या फिर वो सहयोगी है आपके?
0: विरोध तो बहुत हुआ, ये बात थोड़ी मैं अगर
1: जी
0: तो मैं बता दूं, तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो अभी ये ज्ञान में चलने से ये सारी नकारात्मक जो प्रवृत्ति है जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो कहीं कहीं घर वालों को ऐसा लगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया ऐसे करके। तो हमारा बड़ा भाई के साथ था, हमारे एक पिताजी तो गुजरात में रहते थे, फिर कभी आते थे कभी जाते, तो बड़े भाई ने हमारे पीछे CID लगाई थी।
1: अच्छा,
0: तो CID ये लगा दी कि उनको थोड़ा लगा कि थोड़ा ये हमारे अनुसार तो इनका जीवन नहीं दिख रहा है, बड़ा साइलेंट रहता है, और अपने में मस्त रहता है। तो कहते हैं ना कि इसका स्क्रू ढीला हो गया, तो उसी तरह से एक मान्यता होने के कारण उसका भी अच्छा स्नेह था। स्नेह इसीलिए कि कोई भी बड़ा है जो जहाँ हम गार्डियन है, वो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का इस तरह से कुछ हो जाना। तो उसने तहकीकात करने के लिए ऐसे लगा दिया 4-6 लोगों को और फिर ये सब चीज़ें। लेकिन वो सुबह सुबह मैं जाता था तो पता तो चल जाता था सुबह कहीं जा रहा है, तो पीछे पीछे पता है, वो तो सोए रहते थे, मैं निकल जाता था। 6:30 से 7:30 मुरली चलती, तो 6:30 के पहले 6 बजे योग में जाना होता, आधा घंटा बैठना है। तो मना मैं 4:30-5 बजे स्नान पानी आदि करके, तो ये लोगों को अलग लगता था, वो लोग सोए और मैं तैयार होकर चला जाता, तो वो बदलाव उसको पता चला। तो बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी। तो ये कहते कि ब्रह्मा कुमारी ये कौन सा धर्म है, ये तुम, हम तो लक्ष्मीनारायण के वंशज है, हम लक्ष्मीनारायण की पूजा करते हैं। हमारे घर में अगर आप यहाँ से कच्छ के साइड में जाओगे तो वहाँ हर गांव में लक्ष्मीनारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, तो लक्ष्मीनारायण का ही हम वंशज है, तो लक्ष्मीनारायण की पूजा करना चाहिए देवी देवताओं। तो उस तरह से चलता था। तो फिर ये तो बदलाव आ गया, तो उन्होंने फिर मेरे को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन बाबा की ये बात मैंने वो जो हमें मुरली सुनाते थे उस भाई को बताई कि हमें ऐसा विरोध करते हैं और इस तरह से बात है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, मारपीट भी करते, छोटा थे और वो उसका, तो हमें जब वो मारते थे हमें बाबा की महावाक्य याद आता कि किसी का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पिताजी आपको बंधन है, तो उनका चश्मा जिस परंपरा से जिए उससे थोड़ा अलग दिखते हैं, तो उनको वो भाव से कि भाई इनका कल्याण ना हो, बड़ा हो कि भाई इनका जीवन खराब ना हो, तो उस भाव से करते। तो हमारे मन में वो मारते थे थोड़ा बहुत, तो हमें बुरा नहीं लगता था, कुछ बोल दिया, थोड़ा अपशब्द कह दिया, वो कर दिया, तो मतलब वो तकलीफ नहीं होती थी। तो हमें वो बाबा कहते वो राम की भावना रखो, इनको पता नहीं हमें कौन मिला है, वो ज्ञान ऐसा जैसे कि हमें तो भगवान मिला है, हम भगवान को जान गए, ये तो अभी तक ये भक्ति मार, इस तरह से मन में आ जाता था और गुस्सा रिएक्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये बढ़ता गया। फिर हम जो हमारी समाज है जो पटेल कास्ट, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो घर में उठ के तो विघन बढ़ते गए, वो मारपीट तक आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सारे समाज में हमारी वॉच रखने की कि भाई ये तीनों को मिलने नहीं देना। तीन भाई थे, तो आपको मेरे पूर्व में आपको आप जानते होंगे कि हम वसंत भाई करके थे जो संगम भवन में, वो भी नागपुर से थे, और ऐसे एक रामजी भाई करके थे, हम तीन कुमार निकले और बड़ा नशा था बाबा के ज्ञान के लिए। तो अब क्या करें, तो हमारे बीच में सबको एक अनाउंसमेंट कर दिया कि ये तीनों अगर मिलते हैं पढ़ाई के नाम से, हम घर में नहीं सोने के बदले हम बाहर सोने लगे, मना फैक्ट्रियों में एक रूम होता था तो हम वहाँ सोते थे, क्योंकि हमने बहाना बनाया कि हमें पढ़ाई करना है तो हम रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम वहाँ सोएंगे फिर सुबह आएंगे नाश्ता पानी। लेकिन हुआ क्या, बहुत वंडरफुल बात ये हुई कि हम पढ़ाई के नाम से जो भाई ने हमें गाइडेंस दिया था, तो कि जो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको 2 से 5 योग कर, तो तुम्हारा विघ्न सारे भगवान खत्म कर देंगे। ये भाई हमने गीता पाठशाला जो चलाते थे उन्होंने बताया। अब 2 से 5 योग करना है तो हमने ये बहाना बनाया कि हम घर में नहीं रहेंगे पढ़ाई के अर्थ, वो उनकी फैक्ट्री में रहता था, वो उनकी फैक्ट्री में ना मैं मेरी फैक्ट्री, ऐसे करके सुबह 2 से 5 योग स्टार्ट किया। और कहाँ करते थे, गीता पाठशाला, हम करीब 25 कुमार थे, तो ऐसा उन्होंने 25 हाँ इसका विघ्न है तो योग करे, तो हम करते थे। हमने लगातार 3 साल विदाउट फेल 2 से 5 योग। उस दौरान की बहुत अच्छी एक घटना घटी प्रत्यक्षता की, तो फैक्ट्री में जहाँ हमारा माल आता है जो वुड प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री थी, तो रात को गाड़ियाँ आती थी तो उसका कागज लेना होता है और सारा, और वहाँ चौकीदार भी होते हैं, तो मैं 2 बजे गाड़ी आई होंगी, 2-3 बजे हम तो चले गए योग करने, तो पीछे से जो गाड़ी आई तो मैंने कागज लिए नहीं, तो सुबह जब हमारा बड़ा भाई जब ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में, तो कह के वो कहाँ थे, जो मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है तो वो तो रात में पढ़ाई करने जाता है।

0: हम जाते थे फिर एक दिन सुबह क्लास कर रहे तो मेरा पिता भाई आया, बड़े भाई, और बड़ी लकड़ी एक लेके आया और मैं पीछे थोड़ा लेट गया था। मैं हमेशा फर्स्ट जाता था लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो पीछे बैठा था और 35-40 भाई बहन और मुरली चल रही थी। उन्होंने आते ही पहले मैं बस बैठा था पीछे से थोड़ी सी लकड़ी लगाई और सामने भाई मुरली चला रहा था, वो चौकन हो गया तो सभी शांत हो गए, मुरली चलाना बंद हो गया, मेरे को मार रहा है और फिर घसीटते लेके जा रहा है, घसीट घसीट खून निकल रहा है हाथ में से। मैंने थोड़ा सा उनको कि भाई ये चंगुल में फंस गया है, उनका ये प्यार उनको तो ये पता नहीं ना, तो फिर भी मतलब ठीक है। फिर हम
1: उन्होंने कभी आपसे ज्ञान सुनने समझने की कोशिश
0: उस टाइम नहीं की क्योंकि उनको तो वही परंपरा से जिए थे तो वो उसे। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, फिर मैं चला गया लेकिन फिर से हमें योग मिस नहीं करना, ये विघन अभी जाएगा क्योंकि भगवान ने बोला 2 से 5 योग करते विघन चला। तो वो जो क्लास में जो भाई बहने थे वो कुछ नहीं बोले, योग में बैठ गए सब, वो मार रहे कर रहे छुड़ा रहे कोई छुड़ा नहीं, और जैसे कि मुझे ठीक है नहीं आओ। तो इस तरह से मेरा आना हुआ और फिर बाबा से योग लगा के हम ऊंच पद पाएंगे ये मन में नशा रहता था। तो 3 साल हमने योग किया, उसका परिणाम ये हुआ करीब हम 81 से 83-84 तक हमने ये योग किया। फिर ये सब प्रत्यक्षता होने लगी समाज में, फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, बाबा के बिना तो हम रह नहीं सकते। बाबा की पड़ी खींच, शाम को 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे तो कशिश होती थी कि नहीं सेंटर पे जाना चाहिए। सेंटर एक ही था नागपुर में और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हम एक सीट पूर्व में रहते थे, सेंटर पश्चिम में था तो पूरी सिटी क्रॉस करके जाना होता था, तो गुरुवार को जाते थे। एनी हाउ तो हम कहते हैं ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी की भाषा में ये कहते कि बंधेले कुमार मना इसको विघन है तो माँ बाप से छुट्टी नहीं है।
1: दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहानी बीच में क्यों रुक गई है, आगे क्या हुआ है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल है मन में जानने को लिए लेकिन समय की सीमा है कि यहीं पर हम रुकना होगा और आगे की कड़ी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या जिद था और क्यों उन्होंने इसी जीवन को जीने का ठान लिया है। जो जीवन आमतौर पर सोचते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता है, सांसारिक जीवन को त्यागना, सुख सुविधाओं को त्यागना और सिर्फ एक परमात्मा के प्यार में लीन होना, देश के लिए जीना या मानवता के लिए जीना कितना कठिन काम है, लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान लग रहा था और उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज को सहन करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जो अभी तक आपने सुना है गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन की कहानी को, कहाँ से उनको वो प्रेरणा मिली समर्पित होने का और जब उन्होंने वो संकल्प लिया और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगे किस प्रकार की बाधाएं उनको सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मुझे नहीं जाना 15 अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी लगता है क्योंकि कार्यक्रम का नाम जैसे मेरा गांव मेरा अंचल, जिस गांव और अंचल में हम रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे, वो गांव और अंचल को हम कभी नहीं भूल पाते हैं क्योंकि अपना गांव स्वर्ग जैसे लगता है। तो सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो प्रतिभा है, जो कार्यक्रम चलता है वो जन जन तक पहुँचे, इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आज हमें खुशी है, आज हम आबरोड ब्लॉक से सुदूर रेबदर ब्लॉक में पहुँचे। कोई उल्हा ना दे जे रेडियो मधुबन हमारा पास आए नहीं और हमारा प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए कोशिश नहीं किए। इस उद्देश्य को लेकर आज हम रेबदर ब्लॉक जवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे। तो बहुत खुशी लगता है क्योंकि सभी को रेडियो मधुबन का साथ लगावे जुड़ावे, और जब अपना आवाज़ को सुनते हैं कार्यक्रम का माध्यम से कहीं पर भी तो वो खुशी जाहिर करते हैं और उनका आवाज़ ही उनका पहचान होता है। तो हमें बहुत खुशी। तो बच्चों का बारी बारी आपको प्रस्तुतियाँ सुनने को मिलेगा, एक का बाद एक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत होकर आए हैं बच्चे। तो देर किस बात की, उनका आवाज़ सुनिए।

0: कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
1: मेरा नाम है भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
2: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव का नाम है जावल।
3: मेरा नाम है काजल कुमारी, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरा गांव का नाम जावल है।

मरना वतन पर जाफिदा होना, प्रभु हम को सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।

0: कहानी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर इस तरह कार्यक्रम में दूर से जवाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का बच्चों को आप सुन पा रहे थे, उनको धन्यवाद देते हैं। सभी को नाम का साथ, जैसे अपना अपना नाम, कौन सा क्लास और कहाँ पढ़ते और किस तरह आगे बढ़कर नाम रोशन करेंगे, बढ़ाकर क्या लक्ष्य रखे वो सब बताए। तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अगला कार्यक्रम के लिए बच्चे हमारे रेडियो गीत का पहला सुने हैं और एक गीत। और बच्चे तो सच्चे होते हैं, महात्मा होते हैं और अपना बात को रखते हैं। और छोटे छोटे बच्चे कम नहीं है, मासूम होते हैं। परियां इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं। इतना दूरस्थ जगह से आए तो बच्चे अपना टैलेंट को, प्रतिभा को भी पूरा जी जान लगा कर देते हैं। कोई सूचना नहीं था, कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं, लेकिन अचानक में जब पहुँचे तो अचानक का पार्ट भी एवर रेडी का पार्ट देखने को मिल रहा है। तो पुनः उन सभी बच्चों को स्वागत करते हैं, नाम का साथ अपना अपना परिचय देंगे और विद्यालय का नाम भी बताएंगे। तो लीजिए उन सभी से पुनः और एक प्रस्तुति।
3: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
4: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
5: मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।
6: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।

कोई समझना पाए क्या के सताए जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने कहाँ दिल खो गया न जाने कहाँ दिल खो गया मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए जाए जाए वहाँ ढूंढ के लाए न जाने कहाँ दिल खो गया।

0: हर मौसम में कैसे भी हालातों में हमारे देश की पुलिस हमारी रक्षा करती है उन जैसा बलिदान हम कभी दे नहीं सकते पर हमारे संविधान लॉ एंड ऑर्डर और हमारी पुलिस का सम्मान करके उनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना
1: इतना

एक के बाद एक प्रस्तुति आपको सुनने को मिल रहा है और आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर विद्यार्थी विकास और बच्चों का टैलेंट जब प्रतिभा खोज है उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और शिक्षकगण भी बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सभी अपना अपना आवाज़ को बुलंद से जितना हो सके, ना ज़्यादा ना कम, अपना आवाज़ को दे रहे हैं। तो और एक प्रस्तुति के लिए रेडी सही बच्चे? ओके, शुरू करिए बच्चे, रेडी। आपका नाम का साथ सभी अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में, तब तक पता चलेगा हमारा बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं और क्या बोलने जा रहे हैं। तो वो सबको भी पता होना चाहिए और जो लिसनर हमारा सुन रहे इस कार्यक्रम को वो भी ध्यान से सुन रहे हैं अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए। तो लीजिए अगला प्रस्तुति।

जवाब जब मैं कबूतर निकली असली कलो रे ली असली कलो रे, मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है, मांगया सिंपल वाटर है लाया अनपट टमाटर है, लव यू के तू दबकावे लव यू के तू दबकावे, जर कमाया ली कर से उम्र को लिया मर जाना डड्डी।

रे उमर को लिया मर जान, डैडी में काली कर रहा से मांगे सिंपल वाटर है, लाया अनपट्टा मटर है, लव यू के तू दबगावे, लव यू के तू दबगावे, जरी खम्मा याली कर रहा से उमर को लिया मर जान, डैडी में काली कर रहा से।

0: गुड लेवर।
1: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति दिए। और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर नाम रोशन करते हैं, तो धन्यवाद देते हुए और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे, बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: तो ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। और बच्चे तो पहले मैंने बताया सच्चे होते हैं, महात्मा होते हैं, और इस तरह कार्यक्रम कोई मोबाइल से सीखते हैं, कोई बड़ों को देखकर सीखते हैं, कभी कोई कोई स्कूल में आकर, विद्यालय में आकर भी अपना आवाज़ को रोक नहीं पाते, बड़ों को देखकर छोटे बच्चे सीख जाते हैं, छोटों को देखकर भी बड़े बच्चे सीख जाते हैं, ये उनका जादूगरी है। तो लीजिए और एक प्रस्तुति।
1: बोरनो लगा के चुनर ओडे चुनर जी, बल्लम लायो मेरो भोर चुनर जी, बल्लम लायो मेरो यो मेरो भोर चुनर जी। अरे मेरी चट्टिया लेगी, अरे मेरी चट्टिया लेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी नुए चलेगी। अरे मेरी चट्टिया लेगी, मेरी चट्टिया लेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी नुए चलेगी, जयपुर से अजमेर गाड़ी दुए चलेगी।

कौन नथड़ी कानो जी हारू मोलवो रे कौन जी नथड़ी रानो जी हारू मोलवो रे कौन जी नथड़ी राधा जी हारू मोलवो रे कौन जी सोटा मोटा मरुआ केड़ा कौन डारे कौन जी सोटा मोटा मरुआ केड़ा कौन डारे कौन जी ला कर्ण जी हारू मोलवो रे कौन जी सुडला कर्ण जी हारू मोलवो रे कौन जी सुडला राधा जी हारू मोलवो रे कौन जी सुडला राधा जी हारू मोलवो रे कौन जी सोटा मोटा मरुआ गेड़ा कौन डारे कौन जी सोटा मोटा मरुआ गेड़ा कौन डारे कौन जी सुनड़ी कर्ण जी हारू मोलवो रे कौन जी सुनड़ी कर्ण जी हारू मोलवो रे कौन जी सुनड़ी राधा जी हारू मोलवो रे कौन जी सुनड़ी राधा जी हारू मोलवो रे कौन जी सोटा मोटा मरुआ केड़ा कौन डारे कौन जी सोटा मोटा मरुआ केड़ा कौन डारे कौन जी।

0: उदर राम नारायणम जानकी वल्लयम।
1: बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। और सही में बच्चे तो है ही शरारत परियां हैं, और कम उम्र में ही इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी में जब आते हैं, रेडियो पे उनका आवाज़ जब सुनते हैं, तब तो तुतला आवाज़ में हमें खुशी लगता है। और हमारे श्रोता मित्र भी इसके ऊपर लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414151415। ये रेडियो मधुबन का नंबर है, मेरा गांव मेरा अंचल का नंबर है। इसमें आपका भाव को भावना को भी, आपका विद्यालय में हो चाहे आपका गांव हो, अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है उसको जानकारी देना चाहते तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो ये होगी अंतिम प्रस्तुति, और सभी बच्चों को तो अंतिम में ही बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए तैयार है, क्योंकि अंतिम तो उनके लिए नहीं है कि हमारा जो समय को देखते हुए अंतिम प्रस्तुति की और हम चल रहे हैं। सभी को पुनः स्वागत करते हैं। नाम और क्लास का साथ साथ कौन सा फले, कौन सा ढाने में, कौन सा गांव से आते वो भी बताएंगे, तो लीजिए उनसे सुनिए।
3: मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
4: मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल है। मेरे गांव का नाम जावल है।
5: मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल।
6: मेरा नाम है विष्णा कुमारी, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जावल। मेरे गांव

0: रे गड़ा, ओ बंसा बारे गड़ा, चार चार झूलला रे, पड़िया बनी सर अट जीव, बनी सर अट जीव।
1: वाह वाह वाह वाह, तालियों का साथ सभी बच्चों को उमंग उत्साह दे रहे हो, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा का योग्य है। इसे कार्यक्रम का माध्यम से बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस सब का श्रेय विद्यालय को जाता है, स्वयं को जाता है और माता पिता परिवार को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह भराते हैं और जिसका चलते बच्चे भी भाग ले पाते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खासकर आज दूरस्थ जगह रेबदर ब्लॉक में पहुँचे, जो कि जवाल गांव में पहुँचे और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये आवाज़ है। तो सभी को नाम का सा धन्यवाद देते हैं, पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल की छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में, कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस्ड रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्शी जी।
0: थैंक यू।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
0: जी, थैंक यू। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का ज़माना भी है, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: जी,
1: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियां आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा होता है, और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
0: जी।
1: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज़्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
0: जी,
1: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
0: जी,
1: फोकस नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, लेकिन हमको उसको यूज करना है, जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
0: जी,
1: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
0: जी,
1: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके, पर आज ऐसा हो गया है
0: जी। तो ये सब यूज करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
1: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं. तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को. लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी
0: जी.
1: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहाँ पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती है,
0: एक केंद्र पे,
1: एक केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको
0: जी,
1: उसको फोकस कहते हैं. ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो.
0: ओके, तो
1: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना,
0: हाँ हाँ.
1: टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है.
0: जी जी राइट.
1: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है. वही सिस्टम हमारे अंदर है. तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए हैं
0: जी.
1: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया. पर ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज ने को जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है
0: जी.
1: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे
0: जी,
1: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाए कुछ सेकंड्स के लिए और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाए. और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे
0: जी. कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह पाते,
1: नहीं कर पाते.
0: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते.
1: ये चीज करना जरूरी है जब भी मेडिटेशन में भी बैठो. ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग. आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा. और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे.
0: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
1: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ. अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूं, मैं सब से फ्री हो गई हूं.
0: मन को हम ऐसे समझाएं
1: उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं कि ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
0: तो प्रेजेंट में आ जाओगे.
1: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे. जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना
0: जी.
1: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे
0: जी.
1: में तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
0: जी.
1: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
0: जी.
1: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं. ऐसे ही हर बात को जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है। अब मैं प्रेजेंट में कहाँ पर हूँ और मुझे इसी के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूँ
0: जी,
1: हम अपने आप में ही फोकस है। मैं पॉइंट हूँ, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
0: जी।
1: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
0: जी,
1: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: अभी एक ही कार्य होना है तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है।
0: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं।
1: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का, तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो, नामुमकिन नहीं है।
0: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
1: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले,
0: ओके,
1: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले भी जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
0: जी,
1: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
0: जी।
1: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
0: ओके,
1: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है, ये हम भूल गए हैं। भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है, बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
0: जी,
1: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए। फिजिकली जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है, कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
0: जी,
1: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
0: जी।
1: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
0: स्पार्क से शुरू होती है,
1: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
0: राइट जी, तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आए
1: जी? तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
0: जी,
1: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
0: जी,
1: या माई इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
0: जी,
1: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में, लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
0: जी, पढ़ाई के बीच में 10
1: बार। इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है,
0: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
1: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस, और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली

0: डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं, मेरी बुद्धि अभी ग्रास करने के लिए तैयार है, तो वो बुद्धि कैच कर लेती है और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है, कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वो ही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
1: जी,
0: वो ही डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं
1: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो, ये आप बार बार प्रैक्टिस करो तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग। मान लीजिए किसने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं, लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवरथिंकिंग करने लगता है
0: जी। और ओवरथिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
1: जी।
0: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
1: जी।
0: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
1: जी।
0: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे। चेक करो क्या मेरे ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
1: जी,
0: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
1: जी। तो ये
0: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
1: जी,
0: है ना
1: जी,
0: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
1: जी।
0: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते है ना
1: जी,
0: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके है एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवरथिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है
1: जी, तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
0: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीजन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
1: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है साथ साथ में दो चार चीजें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकता है?
0: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा है,
1: तो बैलेंस करके चल।
0: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ, दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, वो अलग बात है। माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हो टू मेक द एटमोस्फियर लाइट और व्हाटएवर।
1: जी,
0: है ना, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है वो मन में नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है।
1: जी जी,
0: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्क।
1: ओके,
0: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी। बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है
1: एंड ही फाइंड्स टाइम, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज कर रहा है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम
0: depends,
1: है।
0: डिपेंड्स, अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट।
1: ओके,
0: आपके टैलेंट पर है।
1: जी, तो ये चेक करना है कि आप कैसे कर रहे हो।
0: पोटेंशियल तो हर एक में होता है, आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में।
1: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
0: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है।
1: ओके,
0: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज। बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
1: वो अनुभव
0: बना रहता है। हाँ, फिर अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है, परिस्थिति परिस्थिति है
1: जी,
0: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है।
1: जी दीदी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
0: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है, लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं।
1: जी,
0: और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे।
1: जी,
0: फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, कईयों के कई मेथड्स होते हैं, तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं। तो ये लाइट होने के समय में वो ओवरथिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवरथिंकिंग नहीं होता है, देखा हुआ है, उसका अनुभव है, इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा।
1: जी,
0: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए। माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है। वो कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है, और कोई क्लास के लिए आता है, तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला, जाना तो है, क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें

0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान के फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जाकर के अपनी बात कह के जा सकते हैं। जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना।
2: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
1: जी।
2: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया पर आपने अपना एक नेचर बना दिया। फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना तो आपका नहीं। तो वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना।
1: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे चेंज,
2: नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
1: जी, राइट,
2: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है। तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा। तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
1: फ्लेक्सिबिलिटी
2: भी लाता है और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी और देखता है कि कितना फोकस रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है।
2: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
1: जी।
2: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की, कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
1: जी।
2: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज और छोटे छोटे बनाते हैं। क्यों छोटे छोटे, अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का है
1: जी।
2: जितना हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता है ना तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
1: ओके, तो मूल कारण ओवर थिंकिंग।
2: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट। आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
1: जी।
2: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है।
1: हाँ, क्योंकि आजकल लोग
2: यू कैन एंजॉय बोथ, पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते।
1: ये सबके लिए लागू नहीं होता।
2: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता। बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें।
1: राइट जी,
2: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
1: जी,
2: है ना। जो भी है आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
1: जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है।
2: हाँ,
1: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते
2: करते केवल नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं हो।
1: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको। हाँ,
2: ओवर थिंकिंग जिसमें कम होगा ना वो दोनों एंजॉय करेगा
1: जी।
2: जिसमें ओवर थिंकिंग ज्यादा है ना तो पेशेंस कम है।
1: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
2: जी।
1: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है,
2: धीरज कम हो रहा है,
1: धीरज कम हो रहा है तो,
2: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है। बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए कोई गोल गोल बात

0: भी करेगा ना वो भी नहीं पसंद करता है. डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं.
1: डायरेक्ट बात करो, घुमा फिरा के मत करो,
0: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की.
1: जी
0: अभी कोई कह रहा था
1: जी
0: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है लेकिन स्लो है, माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है फिर उसकी असर होती है तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर. ऐसे होता है,
1: होता है. तो अब हम शारीरिक बात करते हैं, क्या हमारी जो दिनचर्या है, स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
0: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो. तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं. पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते. अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है, उसमें आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो या आप बर्डन फील करते हो.
1: तो जितना
0: तो
1: हो सके
0: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो.
1: जी, तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
0: हाँ खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड. माना जो खाना खाएंगे, जहाँ खाएंगे, जितना खाएंगे, जैसा खाएंगे, जिस रीति से खाएंगे, तो उसका असर मन पर पड़ता है. तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है.
1: जी,
0: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
1: टाइम पर
0: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए, ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर.
1: जी हाँ. और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
0: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है. पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे. पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना कितने घंटे, 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
1: जी.
0: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी. ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
1: जी.
0: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए, या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो. मीन्स यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी.
1: जो
0: अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा. बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है.
1: तो बीच बीच में आपको उठ के
0: या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो, या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा.
1: जी, जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
0: जी.
1: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
0: जी.
1: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की जरूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
0: जी.
1: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
0: जी.
1: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
0: है. हाँ हाँ.
1: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें?
0: राइट. इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं। इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है, अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है, कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा कम होगा ना, कम होगा। ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग द ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदले कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं। नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवर सेल्व्स मोर इफेक्टिव।
1: जी, है ना? तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
0: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो एक्सेप्ट करना
0: तो बहुत जरूरी है। भाई एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल,
1: भले वो
0: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती
1: हूँ। और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरा नेचर
0: हाँ,
1: अगर कि मैं, मुझे बात करने नहीं आती है,
0: जी जी कोई बात नहीं,
1: वो
0: कंपेयर किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना है।
1: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
0: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है, बैलेंस करने के लिए।
1: अगर बाकी आप करने...
0: कि अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो ना कस्टमर पर इफेक्टिव होगा ना आपको अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
0: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना? अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें?
0: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
1: ओके जी।
0: कोई चुप हो जाते हैं
1: लेकिन अंदर चलता रहता है जी सर।
0: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं। ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना? तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूं और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे? नेगेटिव, है ना? तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे
1: जी। ओके।
0: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी, नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो
1: जी,
0: है ना? तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है। इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है। मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं।
1: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
0: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है,
1: धीरे धीरे
0: स्टार्ट होता है। कोई भी चीज ABCD से ही होता है, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है।
1: जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
0: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना, तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
1: जी,
0: है ना?
1: और
0: कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है। आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
1: जी।
0: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया, नहीं, अलग अलग रीति से।
1: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं,
0: अपनी
1: मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए।
0: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
1: घर के लिए भी किया।
0: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा। उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा। पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
1: जी,
0: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा। इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
1: तो
0: माना अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है। और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं, नहीं। पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। समझे ना?
1: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना।
0: जी जी,
1: ओके। तो कई बार हम गलत जगह पर भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
0: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना? तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह। आप ऐसा ऑप्शन दो
1: जी,
0: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा। कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
1: जी।
0: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
1: जी।
0: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है।
1: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
0: गलत बात बिल्कुल नहीं है, तब कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता।
1: राइट। और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
0: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
1: हम
0: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
1: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए, अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए?
0: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
1: जी,
0: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो। पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
1: पॉज होना
0: जरूरी है।
1: ओके।
0: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: जैसे कोई समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए, तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
1: जी।
0: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
1: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
0: और अपने को एनर्जाइज कर सको। बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया, ब्रेक नहीं ली लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
1: जी।
0: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना, ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको
1: जी,
0: तो ब्रेक अच्छे है
1: जी। बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
0: देखिए, उधर आता है मोबाइल में, डू यू वॉन्ट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट? तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं
1: जी?
0: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं
1: जी?
0: तो इतना तो पहला डिसीशन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना,
1: नहीं करना है।
0: तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
1: यस, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
0: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
1: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
0: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे, एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए, आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है? क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
1: जी।
0: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा। तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजिशन पे पहुंच जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्राफ्स करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर
1: सो। लाइफ भी ऐसी है,
0: लाइफ भी ऐसी, अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
1: जी।
0: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
1: राइट? तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
0: एक तो गॉसिप,
1: ओके,
0: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
1: और डिलीट क्या करना चाहिए?
0: ना यही यही जो है,
1: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट
0: भी करना
1: है, पास्ट के हैं तो मैसेजेस।
0: हाँ, फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है? तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो, पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे, या तो डिलीट करते जाए,
1: वो एप्लीकेशन ही ना रहे।
0: हाँ हाँ, क्योंकि वो हाँ, तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में। और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वो ही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
1: जी,
0: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
1: जी।
0: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा। तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे, उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
1: क्या करना है क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था, कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा। और एंड में जब वो 60 साल का हुआ तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
1: जी।
0: तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना। तो ऐसे कई लोग फोकस्ड है और उन्होंने हमें सिखाया है। ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
1: जी।
0: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे।
1: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है कि
0: करना चाहिए।
1: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ।
0: हाँ,
1: मुझे क्या करना है,
0: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए। कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है। फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा। और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
1: जी,
0: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
1: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है।
0: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माय ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
1: ओके,
0: आई एम हियर टू रीच माय डेस्टिनेशन व्हिच इज क्रिएटेड फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
1: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को।
0: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ। और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक कुछ अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे। और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है। तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो जितनी भी नहीं काम की चीजें होती है वो निकाल देता है, एंड एट द एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है। तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या रहेगा, आपका प्योर फोकस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
1: थैंक यू सो मच दीदी आज हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जब जब आप शांतिवन आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।
0: थैंक यू। धन्यवाद आपको।
1: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। नमस्ते।

0: मधुबन 90.4 FM का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम।
0: मैं तिरंगा हूं, केसरिया सफेद हरा रंग और अशोक चक्र मेरी पहचान है। मुझे गर्व है कि मैं भारत का राष्ट्रध्वज हूं, उस भारत का जहां गुरु नानक, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया। मेरा गौरव और बढ़ जाता है जब मुझे किसी शहीद सैनिक के शरीर से लपेटा जाता है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि इतने रंग, रूप, जातियां, भाषाएं होते हुए भी हर हिंदुस्तानी मिलजुल कर रहता है। पर मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का खून, फिरंगी सरकार का हम पर वो जुल्म, मुझे हाथ में पकड़े हुए वंदे मातरम की वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पर धीरे धीरे सब बदला। मैं भी, जी हां, जैसा मैं आज दिखता हूं पहले वैसा नहीं था। मेरे बदलते स्वरूप को जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: अगस्त के दिन स्कूल।
1: अरे क्यों बेटा, क्या हुआ?
0: मुझे टीचर ने डांस में भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मुझे भी नहीं जाना माँ। क्या बस वही लड्डू मिलेंगे? बैठे रहो धूप में पूरा दिन।
3: बच्चों, पता है भारत को सुरक्षित रखने के लिए कितने वीर सीमा पर तैनात हैं? पता है भारत को आजादी दिलाने में कितने वीर जेल गए, कितनों ने लाठी खाई और न जाने कितनों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये आजादी फ्री की नहीं है और ये दिन छुट्टी का नहीं। आओ मिलकर अपने देश को करें प्रणाम।
0: सॉरी माँ, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे
2: और अपने देश के लिए जरूर कुछ करेंगे।
0: जय हिंद।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: ओम शांति। आज है 15 अगस्त 2026 और सभी भाई बहनों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। आज का दिवस

हम सब के लिए राष्ट्रीय त्यौहार है और सभी इस राष्ट्रीय त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हुए स्वयं को भी अनेक प्रकार के बंधनों से आजाद करें और सच्ची स्वतंत्रता मनाएं। यही दिल की दुआएं हैं, शुभ भावना, शुभकामना है। आज की मुरली बाबा की हम सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष सब बच्चों को प्रेरणा दी है कि तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है। तो फॉलो फादर किसमें करना है? साथी देह सहित देह के सब धर्म को भूल स्वयं को आत्म समझो तो अनेक प्रकार के दुख अशांति से हम स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्म समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बन करके रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। यहां वास्तविक रूप से बाबा एक बहुत सूक्ष्म कर्म की गुह्य गति समझाना चाहते हैं कि जब हम अपने धन को भी किसी पाप आत्मा के साथ आदान प्रदान करते हैं तो हमारा भी उस पाप कर्म में बहुत गहरा हिसाब बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें कोई भी ऐसा उल्टा सुल्टा खर्चा नहीं करना है और पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भावार्थीय श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो उसका पुण्य जमा होने लगे। पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहां से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले, ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। ये ड्रामा हमें कानों में समझा दीजिए, कहां से आए कहां जाना है। गीत की आगे की लाइन है, कौन देश से आया और कहां जाना है हमें, यह राह हम भूल गए हैं। हम कौन हैं, कहां से आए, फिर कहां चले गए, एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना, परमात्मा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहां की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहां दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। गीत के लाइनों के हिसाब से बाबा समझा रहे हैं कि इतनी गहरी बातें जो बाबा ने हम बच्चों को बताई है, जैसे कानों में ये राज सारे समझा दिए। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं, आदि में कहां से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए, फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ,
भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ, यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्य को जरूर जानना है। ड्रामा का ज्ञान तो जरूर मनुष्य को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्टर्स है, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है। यहां टॉकी धाम में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ज्ञान का सागर मनुष्य नहीं है, परमपिता परमात्मा को ही कहा जा सकता है। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश गाले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मां में कम याद करो। मैं मुसलमान हूं, हिंदू हूं, बौद्धी हूं, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते इस देह को भी भूलो, ये सब के लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो, मैं आत्मा हूं। हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। द्वापर के बाद जैसे ही विकृत मार्ग पर चले अर्थात वाम मार्ग में गए तो फिर और धर्म भी शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या, सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहां रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन, हमको वापस ले चल, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए, साथ ले जाएंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसीलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि, सतयुग आदि कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे, हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं, इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं।
बाप कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ, सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खेवैया बागबान भी कहते हैं, अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुखी देते रहते हैं, देवता कभी किसी को दुख नहीं देते। वहां तो सुख ही सुख है, वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहां प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहां से भूले, हम राह कहां से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है, भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। बाबा कहते तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि रावण राज्य अभी गया की गया, खत्म हुआ। पांच भूतों का सिर काटा जाता है, पहले पहले काम के सिर को काटते हो, काम ही महाशत्रु है। बाप कहते इन पांच भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। काम जीत, क्रोध जीत, मोह जीत, बाबा कहते इन पांचों भूतों के ऊपर जब जीत पाएंगे तो जैसे जगत जीत बन जाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसीलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे बाबा खेवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं, कैसे आता हूं ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसको भी पता ही नहीं है। ईश्वर के बारे में किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो क्या गीता के ज्ञान से सृष्टि और भी पतित बनती गई? तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पुजारी बने हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर द्वापर के बाद पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्यंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते मैं आकर क्या करता हूं, बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा कहते मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूं। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बनना यहां है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर,
तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। कौन सा पार्ट बजाएंगे? अनेक दुखी असहाय आत्माओं को, असहाय आत्माओं को उस समय शुद्ध वाइब्रेशन दे करके, शांति के वाइब्रेशंस दे करके उनके मन को अनेक प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त करना। ये प्रैक्टिकल अपना पार्ट बजाना है। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं, न ज्ञान न योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान और योग से अपने आप को परिपक्व बनाओ, मजबूत करो, अपने विकर्म विनाश करो। बाकी ध्यान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहां तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है। सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। यह भी हूबहू ऐसे बाबा भी हमारे अंदर देवत्व के संस्कार भरते हैं। कहते हैं तुम देवता थे तो कैसे थे। और इस तरह से अच्छी अच्छी बातें सुना करके हम सबको उस राह पर चलने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं। बाप कहते हैं तुमको सर्व गुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण यहां बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव, सतयुग में है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार है हिंसा, विकार भी एक प्रकार की हिंसा है। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं, यह तो ठिक्कर बित्तर है। यहां तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी बल पहनो। बाबा कोई मना नहीं करता है, रहना है इस दुनिया में, तोड़ निभाना है तो जरूर है। वैसे प्रसंग अनुसार अपने आप को ढालना भी है, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहां भी ये मंत्र याद रखो। कौन सा मंत्र? मन मना भव मत्याजी भव का मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। बार बार स्वयं की चेकिंग करो कि क्या हम याद में रह रहे हैं। यहां हम जाते हैं बाप के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हाथ कार दे दिल यार दे तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना,
गुरु ने वैश्या पास भेज दिया।

सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएंगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो। कोई भी विकर्म न हो, यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण कर ले। सबसे बड़ा है काम का कांटा, सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है, एकदम ही फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया। क्या होता है, भागंती हो जाते हैं। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। जब ईश्वर का दिया हुआ है उसको संभालना है तो ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनके श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बाबा ने तो 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके सब कुछ लिखत में समर्पित कर दिया और बहनों को आगे किया और स्वयं बैकबोन बन गया, खुद ट्रस्टी बना। उसके बाद बाबा ने कभी भी अपनेपन का अधिकार नहीं जमाया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। बाबा को जब समर्पण होना था, बाबा ने पूरे परिवार वालों को इकट्ठा करके कहा कि अब ये सारी संपत्ति ईश्वर के कार्य में अर्पित करने जा रहा हूं, इसमें किसी को कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए? पाकिस्तान में सीखे फिर यहां आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते योग बल में रह, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घुसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासियां बनेंगे। राजधानी सारी यहां ही स्थापन हो रही है। बाबा कहते राजधानी सारी यहीं स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बात में रखनी है। दूसरी पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का यानी आवागमन का चक्कर चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। आज का स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना, आत्मा रूपी डायमंड पर दाग लगाना। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे ही अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। अच्छा, ओम शांति।